0: RM2 रेडियो मस्ती। Late night grooves.
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: म्यूजिक लवर्स को प्यार भरा प्रणाम, नमस्कार और रात के सुहाने सफर में आपका स्वागत है। 3 घंटे ढेर सारे बॉलीवुड के गाने और दिल से निकली हुई कुछ बातें, इन सबको साथ लेकर मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ। मैं विकास और आज का सफर भी होगा बहुत ही खास, लेट नाइट ग्रूव्स, जहाँ पर वक्त मिलता है इन गानों के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने जज्बातों के लिए। तो फिर देर किस बात की, थोड़ा आगे चलते हैं, गानों के बाद एक बार फिर से मिलते हैं।
0: लेट नाइट ग्रूव्स
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कभी वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: आजकल तो कितना साथ है टेक्नोलॉजी का, और जो भी आप कहना चाहते हैं अलग अंदाज में अलग अलग ऑप्शंस के साथ कह सकते हैं, आपको सारी ऑप्शंस मिल ही जाती है नहीं। लेकिन कभी कभी एक गाना वही कह देता है जो हम सालों से किसी को कह नहीं पा रहे थे। आज रात दिल की जुबान को सुरों में पिरोते हुए आपके साथ जुड़ गया हूँ इस लंबे सफर में। दिन कैसा था अभी तो वक्त ऐसा है कि हाल चाल पूछने के बाद मूड भी बनाएंगे, आपके लिए आपके फेवरेट गाने भी चलाएंगे।
2: Late night grooves.
1: RM2 Radio Musti.

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: अच्छा, काफी लोग होते हैं जो कि अब लेट नाइट शिफ्ट में चल चुके हैं, या फिर कई लोग जो अपना काम खत्म करके वापस घर की ओर जा रहे हैं। हाँ, थोड़ा लेट ही सही, लेकिन पूरा एक सेटिस्फैक्शन जरूर है। और वो ये कि आज का काम खत्म हुआ और आज इसने मेहनत कर ली, कल थोड़ा आराम कर सकता है। वैसे आराम करना इन गानों के साथ एक अलग ही जज्बात पैदा करता है। सभी के लिए म्यूजिकल कंपनी बिल्कुल तैयार है।
0: लेट नाइट ग्रूव्स
2: RM2 रेडियो मस्ती।
0: You're listening to RM2 रेडियो मस्ती।

0: इतने सारे हमारे दोस्त हैं जो कि आज का चैलेंज पूरा करके निकल पड़े हैं अपने घर की ओर थोड़ा सा आराम विश्राम करने के लिए, और एक बार फिर से जिंदगी एक और चैलेंज लेकर आएगी। हर दिन कुछ नया, वैसे हर रात एक नई उम्मीद भी तो लाती है, जहां पे लगता है कि आज जितना काम हुआ कल उसे दोगुना करेंगे, और कुछ रह भी गया अगर तो जिंदगी मौका देगी ना। बस अपने ऊपर से विश्वास कभी कम मत कीजिएगा।
1: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
2: लड़की बड़ी अनजानी है।
3: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
4: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
3: रेडियो मस्ती, the latest news and the greatest mix of music.

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।
2: लेट नाइट ग्रूव्स
0: RM2 रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: गुरुवार 11 जून की सुबह हो चुकी है और इस वक्त ठीक 5 बजे हैं।
4: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
0: Radio Musti.

0: and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: बात कल की हो, आज की हो या फिर आने वाले कल की, मोहब्बत की कहानियां हमेशा जवां थी, हैं और रहेंगे ही. 5:07. Good morning everyone. नीतू की आवाज़ थोड़ी सी ख़राब तो नहीं हुई, लेकिन हाँ क्या करें, मौसम का कुछ असर ही है. तो आप ही अपना ख्याल रखिएगा, और आप सबका ख्याल रखने के लिए ये प्यारे प्यारे कल के एवरग्रीन सॉन्ग्स आपके नाम. सो हमारा प्यार भरा नमस्कार प्रणाम स्वीकार करें. वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन. आप सब ठीक ठाक हो यही आशा करती हूँ. तो आइए इस गुरुवार की सुबह को मोहब्बत के साथ शुरुआत करते हैं. एंड ऑफकोर्स आपका प्यार आपका साथ मिल रहा है ऑन 5499-1294. सुबह के 7 बजे तक विद द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक आपके नाम, आपके अपनों के नाम.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 5499-1294 पर आपके मैसेजेस का स्वागत करते हैं. प्रणाम आपको यहाँ पर. बाय सूरज सजादा एंड पूरे परिवार. गुड मॉर्निंग आपको भी. एंड कुमार एंड जॉग डिविजन फैमिली, मानी कि आप एंजॉय भी कर रहे हैं, जॉगिंग भी साथ साथ. वाह क्या बात है. धीरज, आयुष, विदिशा, ज्योति, अश्विन, साथ में हरक परिवार, मौदार बैसे, नीतू एंड आर एम टू टीम. गुड मॉर्निंग आपको भी. भाई जीतन एंड भाभी प्रीति, इशिका, कालीचरण परिवार पिछगाफे से, आपके नाम कविता एंड बर्टन फैमिली पोस्टिफ्लैक से.

पांच बजकर 18 मिनट हो रहे हैं और ये तो सच्ची बात है कि दिल उन्हें दो जो जान आपको दे, लेकिन जान आपसे मांग नहीं रहे हैं, बस आपका साथ थोड़ा सा वक्त। 5499-1294 पर हैप्पी 40th एनिवर्सरी टू दीदी एंड जीजू धरम एंड गीता दुलम सभी।

0: rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: पांच बजकर 28 मिनट बस हल्की हवाओं का झोंका बह रही है एंड आप ही हवाओं के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चली जा रही है. गुड मॉर्निंग RM2, गुड मॉर्निंग यहाँ पर आप साथ देने के लिए थैंक यू सो मच. मैं देख रही हूँ कौन यहाँ पर ओके 6 बजे तक साथ निभा रही है. थैंक यू एंड ज्योति फ्रॉम शातु बिनागर सब पूरे परिवार के नाम ओम श्री वेंकटेशाय नमः. ओम ये है आपके लिए आपादू फैमिली और प्रणाम जी हरे कृष्णा. गाना आपके नाम मिला राम जी कल एंड फैमिली फ्रॉम मोता ब्लॉन्श. कमलदीप आपके लिए आपके सभी डियर वंस के नाम एज वेल.

0: Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: अगर कोई सुन पाए ना कि जिंदगी कैसे खूबसूरती से गाती है तो आपका जीवन भी एकदम खूबसूरत बन जाता है. थैंक यू सो मच. सो गाते रहो, जियो, जीने दो भाई, सबको जीने दो. सोनम भोला आपके नाम, आपकी मॉमी एंजल, अश्विनी, आविशा, प्रिया, साथ में है वंदना, सीमा, जसप्रीत एंड कौन है यहाँ पर, संजिनी एंड योर डियर वंस. विशिंग यू अ वेरी गुड मॉर्निंग. धीरज, आयुष, विदिशा और हरक परिवार, ये तो हमने पढ़ लिया था. अब्दुल सारावानु, गुड डे आपको. एंड लेस्पेरेंस ट्रिबिशे से है शीला जी, आपको वेरी गुड मॉर्निंग प्रणाम. साथ में है कल्याणी जी फ्रॉम कॉन्टुरेल, गाना सुनते सुनते आप ही जॉगिंग कर रही हैं, वेरी गुड. अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड बेस्ट विशेज टू प्यारी सी प्रिंसेस छवि ऑफ 6 इयर्स ओल्ड, ग्रेड 1. तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं. चलिए अभी तो इट्स नॉट फरमाइशी प्रोग्राम, मैं देखती हूँ अगर लिस्ट में है तो डेफिनेटली उनको हम प्लीज करें.

Inge from Papa Kamal Dasini Dasani and have a good day ahead, my dear friend. And aapke pure parivar ke naam as well. Good morning and aap hai Mr. Tuni from Rochebois. Aaj aap kehte ki karma says, if you focus on hurt, you'll continue to suffer. If you focus on the lesson, you'll continue to grow. Ji haan, achhe thoughts jo hai followed by good actions. Good thoughts, good action. Ye achha karma hai. Aur aapke liye good fortune bring karte hai. That's it. There's no other funda. Achha karo, achha pao. Hello Neetu, hello Indiraji, Reshma, Vimal, Anju, Krisha, Keshav, Neel, Masha, Tanya, Mota, Blanche se aapke pure parivar ke naam. Oh, bahut sare aur messages hain. बदवा गबी देसी एनी रोमांटिक गाना आपके नाम अनुषा फ्रॉम मोताबा एंड वेरी कूल मॉर्निंग ऑलराइट आपके लिए साधना मुकेश लालमाची से हैं एंड गुड मॉर्निंग आपको भी पॉइंट साबला से अमृता जी पूरे परिवार के नाम एंड प्यारी सी श्वेता हुकुम फ्रॉम बोनाकय आज आप सेलिब्रेट कर रही हैं फूड डे एट SSS लालमाची बो कुराज टू यू यानी कि कॉलेज में है सो एन्जॉय आप ही मस्ती कीजिए और ये जो पल है बहुत ही खास है

0: टू। आइए जानते हैं एमबीसी प्ले पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका। स्टेप वन, सब्सक्राइबर को पहले एमबीसी प्ले ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर मिप्स पेमेंट पोर्टल। स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं तो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि ओटीपी एसएमएस या ईमेल द्वारा। ये ओटीपी आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या ओटीपी के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द एमबीसी प्ले एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा एमबीसी प्ले होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800।
1: RM2 Radio Musti.
2: पांच बजकर 41 मिनट, बस थोड़ी देर में आपका हॉरोस्कोप। प्यारी सी दूतिका, विशिंग बेटा योगी एंड बहू क्रिस्टीना हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी एंड हैप्पी बर्थडे टू दोस्त प्रिसिला। ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड हमारी ओर से भी रेडियो मास्टी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग और एम2 नीतू, गुड मॉर्निंग हेमलता भजन पुएतुपी मौसे। गाना आपके लिए आपके पूरे परिवार, विश यू टू अ ग्रेट डे अहेड माय डियर।

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: ज्यादा मत पूछिएगा, ये दिल का रिश्ता है ना, that's why. Let's start with
2: Aries, मेष राशि.
1: Alright, आज आपके अंदर गजब की ऊर्जा और उत्साह देखने को मिलेगा. मन में कुछ नया करने की प्रेरणा जागेगी और उसका असर आपके काम और बिजनेस दोनों में साफ नजर आएंगे. अधूरे काम तेजी से पूरे होंगे, कारोबार में भी रफ्तार आएगी. अगर किसी नई पार्टनरशिप का विचार चल रहा है तो थोड़ा ठहर कर फैसला लें.
2: टॉरस वृषभ राशि.
1: ऑलराइट, आज मन थोड़ा उलझा उलझा रह सकता है. किसी काम को लेकर डर या असमंजस आपको बेचैन करेगा, लेकिन धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे. बिना यानी कि किसी की बातों में आकर जल्दबाजी में फैसला ना ले. प्रॉपर्टी से जुड़ा मामला आपके पक्ष में

0: जा सकता है और पानी से जुड़े जगहों पर सावधानी रखें।
1: जेमिनी मिथुन राशि,
0: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आय बढ़ाने के मौके आपको मिलेंगे, साथ ही भविष्य को लेकर आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि परिवार की बातों को घर तक ही सीमित रखें, वरना छोटी बात कब बड़ी हो जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। बड़ों का आशीर्वाद रुके हुए काम पर आपको पूरे करवाएंगे।
1: कैंसर कर्क राशि,
0: आज का दिन प्रगति और सहयोग से भरा रहेगा। वरिष्ठ लोगों का साथ मिलने से काम तेजी से पूरे होंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के प्रयास सफल रहेंगे। कोई पुराना दोस्त अचानक मिल सकता है जिससे पुरानी यादें ताजा होंगी। संतान से किया हुआ वादा निभाना जरूरी होगा और सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों को कोई अच्छी खबर मिलने के योग है।
1: लियो सिंह राशि,
0: वेल आज भाग्य आपका साथ देगा और अटके हुए काम आगे बढ़ते नजर आएंगे। अगर किसी काम में रुकावटें थी तो अब रास्ता साफ होगा। और दूसरों के मामलों में वैसे ज्यादा दखल देने से बचे। किसी दूर के रिश्तेदार से थोड़ी निराशाजनक खबर भी आपको मिल सकती है। वैसे आसपास के लोगों को पहचान कर चलें, क्योंकि कुछ लोग आपकी तरक्की से जल भी सकती है। ओहो,
1: वर्गो कन्या राशि,
0: आज आपको संतुलन और सावधानी दोनों की जरूरत होगी। संतान की संगति पर नजर रखें, वाहन चलाते समय भी पूरी सतर्कता बरतें। पुराने लेन देन का बोझ कम होने से आपको राहत महसूस होगी। शौक और पसंद की चीजों पर खर्च करने का मन करेगा। लव लाइफ में मिठास बनी रहेगी और साथी के साथ बाहर घूमने का मौका आपको मिल सकता है।
1: लिब्रा तुला राशि,
0: आज दिन सुकून और अपनापन लेकर आएगा। जीवन साथी का साथ आपको मानसिक मजबूती देगा। रिश्तों में प्यार बढ़ेगा। संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेंगी और छोटे बच्चों के लिए कुछ खास खरीदने का मन भी बनेगा। वैसे बड़ों द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाना जरूरी होगा। दोस्तों के साथ बिताया समय आपके तनाव को भी कम करेगा।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
0: राइट, आज का दिन मिला जुला लेकिन प्रगति देने वाला रहेगा। विरोधियों पर आपकी पकड़ मजबूती रहेगी और नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर भी मिल सकती है। बिजनेस से जुड़ा कोई काम आपको यात्रा पर ले जा सकता है। वैसे गुस्से पर नियंत्रण रखना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, किसी सामाजिक कार्यक्रम में प्रभावशाली लोगों से मुलाकात भविष्य में फायदा दिला सकती है।
1: सजिटेरियस धनुराशि,
0: आज व्यापार और करियर दोनों के लिए अच्छा दिन रहेगा। सेहत में सुधार महसूस होगा लेकिन धन उधार लेने से बचना बेहतर रहेगा। कार्यस्थल पर अपनी बात साफ रखें। घूमने फिरने का प्लान बन सकता है और बड़ों का आशीर्वाद आपके लिए शुभ रहेंगी।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: आज सेहत के मामले में राहत मिलेगी। माता पिता का आशीर्वाद आपके लिए सौभाग्य लेकर आएगा। रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है। जिम्मेदारियों को टालने से बचें। संतान की भावनाओं को समझने की कोशिश करें, इससे रिश्ते मजबूत होंगे। पुराने कर्ज से छुटकारा मिलने के संकेत हैं और आसपास के लोगों की नियत पहचान कर चलना इज वेरी इंपॉर्टेंट।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: मेहनत का फल साफ नजर आएगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी जिससे बड़े फैसले लेने में आपको आसानी होगी। नौकरी में पदोन्नति या फिर नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। पार्टनरशिप से जुड़े कामों में कागजी प्रक्रिया जो है ध्यान से पूरी करें और नया घर या फिर नई संपत्ति खरीदने का विचार भी मन में आ सकता है।
1: पाइसेस मीन राशि,
0: फाइनली आज का दिन सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा। समझदारी से किया गया निवेश अच्छा फायदा दे सकता है। बिजनेस में सफलता के संकेत हैं और रुका हुआ धन वापस मिलने से भी आपको राहत मिलेगी। लव लाइफ में नई खुशियां आएंगी। साथी का साथ मन को सुकून देगा। आपकी मीठी वाणी लोगों को आकर्षित करेंगी लेकिन विरोधियों से थोड़ा सतर्क रहना बहुत ही जरूरी है। स्टे ब्लेस्ड, हैव अ नाइस डे अहेड एंड बेस्ट ऑफ लक।
2: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती।

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2.
0: Radio Masti.
4: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Masti.
4: Feel the Masti.
5: 6 बजे है। आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे पूजा। नमस्कार आपको।
6: नमस्कार नीतूषा, सभी को मेरा नमस्कार। जिन परिवारों व घरों को माओवा को जलाशय से पानी की आपूर्ति होती है, अगले सप्ताह से उन्हें कई घंटों तक पानी की कटौती जैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। इस समय बुबा से रोजहिल कैटोबोन वाकवा क्यूपिप मोका सैंपिया और रिविया नुआ जैसे इलाके शामिल हैं। ये जलाशय पिछले कुछ महीनों में हुई कम बारिश से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। देश का सबसे बड़ा जल भंडार आज सबसे कम भरा हुआ है। इसका जल स्तर अब केवल 45% से थोड़ा अधिक है, जबकि पूरे मॉरिशस में औसतन भराव स्तर 64% है। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी में पंजीकृत 4,15,000 घरों में से लगभग 1,50,000 घर इससे प्रभावित होंगे। यूरोपीय संघ और दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के चार देशों मॉरिशस, मेडागास्कर, सेशल और कोमोरो के बीच कायम इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के सिलसिले में चली बातचीत के निष्कर्षों पर बालाक्लावा में हस्ताक्षर किए गए व्यापार, निवेश और सस्टेनेबल विकास को बढ़ावा देने की दिशा में दोनों संगठनों के बीच 6 सालों तक बातचीत के सकारात्मक नतीजे के रूप में ये हस्ताक्षर किए गए। और दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन आज गुरुवार से शुरू हो रहा है। जी हां, फीफा विश्व कप 2026 मेक्सिको, अमेरिका और कनाडा द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित फीफा विश्व कप में पहली बार 48 राष्ट्रीय टीमें भाग लेंगी। उद्घाटन मैच मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच मेक्सिको सिटी के प्रतिष्ठित अजटेका स्टेडियम में खेला जाएगा। उद्घाटन समारोह के बाद ये मुकाबला मौसम समयानुसार रात के 11 बजे से शुरू होगा। और अब मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की और गर्म हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, सुबह के समय बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर वर्षा भी होगी। शाम को देश के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और सेंट्रल प्लेटू पर बादल कुछ छाए रहेंगे और बारिश भी होगी। रात को भी बादल छाए रहेंगे। हवा उत्तर पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। समंदर में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम तापमान 17 से 19, अधिकतम 22 से 24। शहरी इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 23, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय आज सुबह 6:41 पर, सूर्यास्त शाम 5:37 पर होगा। तो मौसम की इस खबर के साथ ही ये बुलेटिन यहाँ पर समाप्त हो चला। हम मिलेंगे 6:30।
0: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
7: Avec NBC Play, tout ban 104 matchs Coupe du Monde FIFA 2026, avec ou pas tout. Et oui, l'intégralité compétition là pour en direct l'Oban Sen Premium New World TV, qui peut disponible au NBC Play à partir des 16 ans, pour 10-300 roupies. Et coupé pour sa package là, 6 ans c'est le fort. Ou pour capable suivre tout ban match directement l'eau mobile, tablette, ordinateur ou soit télévision. Download NBC Play, l'eau App Store, Google Play,

0: et App Gallery avec Android TV. MBC Play avec ou pas tout.
1: आइए जानते हैं MBC Play पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका। स्टेप वन, सब्सक्राइबर को पहले MBC Play ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर MIPS पेमेंट पोर्टल। स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं, सो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि OTP SMS या ईमेल द्वारा। ये OTP आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या OTP के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द MBC Play एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा MBC Play होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800।
2: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
3: Radio.

0: दीवाने हुए हम
1: सब दीवाने हैं आप भी हम भी सब दीवाने हैं और दिल पर किसी का जोर तो चलता नहीं है है ना चलिए 6:11 वेलकम बैक विशिंग यू ऑल वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग ओके नीतू नेक्स्ट गाना आप सभी के नाम टू हस्बैंड संजय स्पेशली आपके लिए आपके बर्थडे के मौके पर फ्रॉम देवी शिक्षा और सब की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार
2: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
3: Radio Musti.
1: कैसी है प्रेमिला जी नमस्कार आपको फ्रॉम प्लेन दी पपाई बहुत पूरे परिवार के लिए के लिए पति रंजीत ओके शोभा दी गुड डे टू यू गेट वेल सून यहाँ पर हैं वाइफ के नाम एंड बेटी और बाबा चलिए करण जी आप ब्रेकफास्ट तैयार कर रही है लेट्स होप क्योंकि अभी मौसम का ही कुछ असर है कभी ठंड कभी गर्मी बप आप अपना ख्याल रखिएगा ठीक है एंड कंग्रेचुलेशंस टू निश्चय एंड ग्रेसी ऑफ घोंबे और घर में न्यू बेबी गर्ल आई है सो ब्लेसिंग्स टू लक्ष्मी एंड पूरे परिवार दिनेश आरती रविश प्रिशा लवशा एंड पूरे परिवार नमस्कार जी सरवानन आमुगम 19 ईयर्स हुए ब्लेसिंग्स फ्रॉम मामा तिरुवादी पापाज अगेन कमलम एंड आमुगम एंड सभी फैमिलीज की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार स्वीटी माय डियर फ्रॉम पॉजिटिव लक नेक्स्ट गाना आपके नाम आपके सभी डियर वंस के लिए इक्वली गुजार टू होम यहाँ पर गुड मॉर्निंग आपको कविता ऑलराइट रेडियो मस्ती टीम नमस्कार मिस्टर धनेश्वर फ्रॉम बॉम्बू पत्नी सुनीता देव रेखा संजीव निशा फ्रॉम दावेदोस परिवार कह रही है बोको हाश थैंक यू सो मच एंड प्यारी सी ललिता जीतन फैमिली को भी प्यार भरना नमस्कार

तक दिल धड़कता है तब तक प्यार करते रहें। 623, थैंक यू सो मच प्यार से हमारे हम सफर बनने के लिए। 6:30 बजे आप सुन पाएंगे पूरा समाचार बुलेटिन, उसके बाद वेदिता आपके साथ जुड़ जाएंगी इन मॉर्निंग बीट। बस ये दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। Wherever you might be, stay well tuned. Going to work, bon courage. रास्ते पर है, please drive carefully. बस इस सफर को आप enjoy करते रहें।

सभी को मेरा नमस्कार। समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आज की सुर्खियां। जिन परिवारों व घरों को मौवाकवा जलाशय से पानी की आपूर्ति होती है, अगले सप्ताह से उन्हें कई घंटों तक पानी की कटौती जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। ये जलाशय पिछले कुछ महीनों में हुई कम बारिश से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। इसका जल स्तर करीब 45% है। आज 11 जून से फीफा विश्व कप 2026 शुरू हो रहा है, जिसमें पहली बार 48 राष्ट्रीय टीमें भाग लेंगी। उद्घाटन मैच मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैक्सिको सिटी के प्रतिष्ठित एस्टेका स्टेडियम में खेला जाएगा। मौसम समय अनुसार ये रात के 11 बजे से शुरू होगा। विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा। एमबीसी प्ले पर फीफा विश्व कप 2026 का प्रसारण। फुटबॉल प्रेमी फीफा विश्व कप 2026 के सभी मैच एमबीसी प्ले पर देख पाएंगे। अधिक जानकारी या सहायता के लिए उपयोगकर्ता एमबीसी हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं। और कोलन कैंसर मौसम समय सबसे आम प्रकार के कैंसरों में से एक है। यदि इसका समय रहते पता चल जाए तो इसके सफल उपचार और ठीक होने की संभावना काफ़ी अधिक होती है। पापिम तथा स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञ लोगों को रोकथाम और प्रारंभिक जांच के महत्व की याद दिला रहे हैं। जिन परिवारों व घरों को मौवाकवा जलाशय से पानी की आपूर्ति होती है, अगले सप्ताह से उन्हें कई घंटों तक पानी की कटौती जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इसमें बुबा सैन रोजेल, कैट्रबोन, वाकवा, क्यूपी, पमोका, सैंपिया और रिबिया नो जैसे इलाके शामिल हैं। ये जलाशय पिछले कुछ महीनों में हुई कम बारिश से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। देश का सबसे बड़ा जल भंडार आज सबसे कम भरा हुआ है। इसका जलस्तर अब केवल 45% से थोड़ा अधिक है, जबकि पूरे मौसम समय औसत भराव स्तर 64% है। 2026 की इसी अवधि की तुलना में ये 20% अंक कम है। अधिकारियों के अनुसार इन जल उपयोग प्रतिबंधों को लागू करना आवश्यक बन गया है, ताकि स्थिति को ज़्यादा खराब होने से रोका जा सके। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी में पंजीकृत 4,15,000 घरों में से लेकर 4 घंटे तक या उससे भी अधिक समय तक चल सकती है। इस संबंध में अंतिम निर्णय बहुत जल्द लिया जाएगा। यूरोपीय संघ और दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के 4 देशों मॉरिशस, मेडागास्कर, सेशल और कोमोरो के बीच कायम इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के सिलसिले में चली बातचीत के निष्कर्षों पर

0: बालाक्लावा में हस्ताक्षर किए गए व्यापार निवेश और सस्टेनेबल विकास को बढ़ावा देने की दिशा में दोनों संगठनों के बीच 6 सालों तक बातचीत के सकारात्मक नतीजे के रूप में ये हस्ताक्षर किए गए हैं। अब्दुल्ला की करुणा लालू।
1: 6 वर्षों की बातचीत के बाद एक महत्वपूर्ण समझौते को अंतिम रूप दिया गया। 10 जून 2026 को बालाक्लावा में यूरोपीय संघ तथा पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका के 4 देशों मॉरिशस, मडागास्कर, सेशेल्स और यूनियन ऑफ कोमोरो के प्रतिनिधियों ने एक उन्नत आर्थिक साझेदारी समझौते यानी इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर वार्ताओं के सफल समापन की घोषणा की। इस समझौते का उद्देश्य व्यापार को सुगम बनाना, निवेश को आकर्षित करना और साझेदारी को और भी मजबूत बनाना है। मॉरिशस के लिए ये समझौता निर्यातकों, निवेशकों और सेवा प्रदाताओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा। साथ ही 450 मिलियन उपभोक्ता वाले यूरोपीय बाजार तक उसकी विशेष पहुंच को और मजबूत करेगा। ब्रसेल्स की ओर से समझौते को यूरोपीय संघ और सब सहारा अफ्रीका के बीच संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया गया। यूरोपीय आयोग का मानना है कि ये समझौता साझेदार देशों में रोजगार सृजन, नवाचार और आर्थिक विविधीकरण को बढ़ावा देगा। व्यापार के अलावा ये समझौता सार्वजनिक खरीद, डिजिटल व्यापार, बौद्धिक संपदा और सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी शामिल करता है। क्षेत्र के कई मंत्रियों की उपस्थिति इस साझेदारी के महत्व को दर्शाती है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को मजबूत करना और अर्थव्यवस्थाओं को अधिक लचीला बनाना है। मॉरिशस का निजी क्षेत्र भी इस विकास पर करीबी से नजर रखे हुए हैं। आर्थिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों का मानना है कि ये समझौता नए बाजारों तक पहुँच बनाने और अधिक मूल्य वर्धित क्षेत्रों में विस्तार का महत्वपूर्ण साधन साबित होगा। ये उन्नत समझौता भविष्य में यूरोपीय संघ और सब सहारा अफ्रीका के बीच आर्थिक संबंधों के लिए एक नए मानक के रूप में देखा जा रहा है। हस्ताक्षर और अनुमोदन की कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद यूरोपीय आयोग के अनुसार इसके 2027 के अंत तक लागू होने की संभावना है।
0: हर विश्व कप के दौरान जहां फुटबॉल प्रेमियों में अपनी पसंदीदा टीमों के लिए उत्साह होता है, वहीं कुछ लोग स्टिकर्स जमा करने विश्व कप का आनंद जीते हैं। आज 11 जून से फुटबॉल का महोत्सव शुरू हो रहा है। टेलीविजन पर मैचों के इंतजार के साथ साथ बड़े छोटे सभी फैंस खिलाड़ियों के स्टिकर्स जमा करके अपने एल्बम भरने में लगे हुए हैं। मिगान पुनापनाय कैन विधिमा सिबुरन।
2: एक तरफ स्टिकर्स हैं तो दूसरी तरफ गायब नंबरों की जांच करने के लिए एक कागज या एक एप्लीकेशन। यहाँ अदला बदली बहुत ही व्यवस्थित तरीके से किया जाता है। आशनी अपने बच्चों के शौक को साझा करने के लिए इन स्टिकर्स को इकट्ठा करती हैं।
3: Oui, les garçons, quand depuis j'ai commencé en plus à vivre là, je suis vraiment excitée tous les soirs. Maman, est-ce que tu as eu les cartes? Maman, qu'est-ce qu'on manque? Et c'est vraiment vraiment un joli plaisir.
2: सोशल मीडिया पर बने इस ग्रुप का मुख्य उद्देश्य हर किसी को अपना एल्बम पूरा करने की सुविधा देना है।
4: Fini bout 2026 là, mais on peut continuer une zone pour mes camarades, soit là le Ben Swapping Zone. Il y a une nouvelle de mes camarades pour compléter notre album petit à petit.
5: Longtemps ici comme ça, batch tout ça là, c'est comme ça 5 pour 1, 10 pour 1, mais non, aujourd'hui non. Mais il y a un gars, son team, il peut marquer Ronaldo. Pour terminer ce livre, il existe des stickers duplicate.
2: मॉरिशस में वर्ल्ड कप के इन एल्बम्स के लिए क्रेज 1982 से चली आ रही है, जब स्पेन में विश्व कप हुआ था।
6: Espagne 1982,
2: तब से ये उत्साह पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। जब भी हम इन किताबों को खोलते हैं, पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं।
7: Le fameux dinosaure. Ça vaut Glaikman, goalkeeper éternel, ça. Par contre, pour combien World Cup, une barre, est-ce qu'il est passable?
8: À part pour Coupe du Monde, est-ce qu'il y a un petit réfait avant le magazine?
7: Quelquefois, oui, mon Féli. Ramène mon souvenir, Zénith, façon de dire. Assez souvent, mon Féli. Je me garde bien dans ma bibliothèque. pour remarquer, il y a un bon

0: कोशिशों से जाफिया।
1: इस बड़े खेल आयोजन के आगाज में अब बस कुछ ही घंटे बाकी हैं। कुछ लोग अभी भी सभी स्टिकर्स इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं।
2: नामो मोक दे सन कोड पू फिनिली बिलानो पे रोडे 111 पास मेने 302 पोल लेला इसी आज आज दिमो 100 एपे लेला मो रेरन प्लेस मो गेटे ça veut dire nous pour remplir livre là de madame et moi।
1: वहीं कुछ लोग इस लक्ष्य को पहले ही हासिल कर चुके हैं।
3: फॉर दिस सेमेंट पू कंप्लीटली एक वजह फोटो सेते अन सो गाना जॉर्डन आर यू
4: कि सा सेंटीमेंट की एनिम टो ला कोट इन फिनी सा लिव
5: ला एन सुलाजमेंट ए एन कंटेंटमेंट aussi।
1: करीब 9000 रुपए की लागत के बावजूद विश्व कप शुरू होने से ठीक पहले इस कलेक्शन को पूरा करना प्रशंसकों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि और गर्व का क्षण बना हुआ है।
6: दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन आज गुरुवार से शुरू हो रहा है। जी हां, विश्व कप 2026 मेक्सिको, अमेरिका और कनाडा द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित फीफा विश्व कप 2026 में पहली बार 48 राष्ट्रीय टीमें भाग लेंगी। उद्घाटन मैच मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच मेक्सिको सिटी के प्रतिष्ठित अज़टेका स्टेडियम में खेला जाएगा। उद्घाटन समारोह के बाद ये मुकाबला मौसम समय अनुसार रात के 11 बजे से शुरू होगा। 83,000 दर्शकों की क्षमता वाले अज़टेका स्टेडियम ने एक नया इतिहास रच दिया है। ये दुनिया का पहला स्टेडियम बन गया है जहां 3 फीफा विश्व कप के मैच आयोजित किए गए हैं। इससे पहले यहां 1970 और 1986 के विश्व कप मुकाबले भी खेले जा चुके हैं। अमेरिका और कनाडा अपने अभियान की शुरुआत अगले दिन करेंगे। कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्ज़ेगोविना से टोरंटो में होगा। वहीं अमेरिका की टीम लॉस एंजलिस में पराग्वे का सामना करेगी। विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा। और एमबीसी प्ले पर फीफा विश्व कप 2026 का प्रसारण। फुटबॉल प्रेमी फीफा विश्व कप 2026 के सभी मैच एमबीसी प्ले पर देख पाएंगे। सब्सक्रिप्शन यानी सदस्यता लेने के लिए उपयोगकर्ता को ऐप खोलना होगा, टीवी सेक्शन में जाना होगा और न्यू वर्ल्ड टीवी चैनलों में से किसी एक का चयन करना होगा। इसके बाद एक संदेश दिखाई देगा, एक मैसेज जिसमें खाते को रिचार्ज करने के लिए कहा जाएगा। फिर 60 दिनों वाला पैकेज चुने, प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करें और सुरक्षित भुगतान प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी पसंद का भुगतान तरीका चुनकर भुगतान पूरा करें। भुगतान सफलतापूर्वक हो जाने के बाद यानी पेमेंट किए जाने के बाद न्यू वर्ल्ड टीवी चैनल ऐप में उपलब्ध हो जाएंगे। इसके बाद ग्राहक प्रतियोगिता की सभी 104 मैचों का सीधा प्रसारण अपने मोबाइल फोन, टैबलेट, कंप्यूटर या स्मार्ट टीवी पर देख सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए उपयोगकर्ता एमबीसी हेल्प डेस्क से इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, 4333-3135, 4332-05, 4333-3145 या फिर 5944-6800। इस प्रकार दर्शक विश्व कप 2026 के सभी मैचों का आनंद कहीं भी और किसी भी समय लाइव देख सकेंगे। और अब कुछ अन्य स्थानीय खबरें। सामाजिक निधियों के सुशासन यानी गवर्नेंस को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में सोशल इंटीग्रेशन मंत्री अशोक सुब्रो ने राष्ट्रीय सभा में इस विषय पर अपनी बात रखी थी। नेशनल सोशल इंक्लूजन फाउंडेशन ने लाभार्थी गैर सरकारी संगठनों के चयन की अपनी प्रक्रिया का बचाव किया है। इसकी अध्यक्षा कैरोलिन फिट्ज जिबों के अनुसार प्रत्येक आवेदन पहले प्रशासनिक जांच से गुजरता है, उसके बाद परियोजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन किया जाता है, फिर इन प्रस्तावों की समीक्षा संबंधित शासन निकायों द्वारा की जाती है और अंततः निदेशक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्वीकृति के बाद ही उन्हें मंजूरी दी जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि पारदर्शिता को और मजबूत किया गया है, विशेष रूप से वित्तीय सहायता की राशि और लाभ

0: भारतीयों के नाम सार्वजनिक करने के माध्यम से। इसके अलावा वित्त पोषण प्रदान किए जाने के बाद यानी फाइनेंसिंग किए जाने के बाद निगरानी और मॉनिटरिंग मेकानिज्म की व्यवस्था भी लागू की गई है। चलिए नेशनल सोशल इंक्लूजन फाउंडेशन की अध्यक्षा कैरोलिन फिट्ज़जिबों को सुनते हैं। उनसे बात की अंजलि सिरतन फुलचंद ने। विवरण आस्था गोबिन चितामन का।
1: Les ONG ne sont pas toutes évaluées dans une même catégorie. Une petite organisation communautaire qui sollicite un financement sous le cadre FT.
2: सब NGOs का मूल्यांकन एक ही श्रेणी में नहीं किया जाता। जो संस्थाएं छोटी परियोजनाएं साकार करती हैं, उनकी फंडिंग बड़े संगठनों की तुलना में कम होती है जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं चला रही हैं। संगठनों के उद्देश्यों को परख कर फाइनेंसिंग की जाती है। पारदर्शिता, जवाबदेही, पैसों के सही इस्तेमाल के सबूत, टेक्निकल रिपोर्ट, इन सब पर नजर रखी जाती है। कॉन्ट्रैक्ट का पालन हुआ है या नहीं और जमीनी स्तर पर संगठन की भूमिका अच्छी है या नहीं, इस पर अगली परियोजनाओं की फाइनेंसिंग निर्भर करती है। हमारी टीमें कार्यों का जायजा लेती है, क्षमताएं बढ़ाने पर सहयोग प्रदान करती है और ये बात सुनिश्चित की जाती है कि सुप्रशासन का सही पालन हो। बोर्ड में अलग अलग सेक्टरों के सदस्य शामिल होते हैं।
1: Issus de différents horizons, notamment le secteur privé, le secteur public, la société civile et le monde académique.
0: CSR, Corporate Social Responsibility, योगदान पर आधारित ये फाइनेंसिंग प्रणाली सामाजिक और गैर सरकारी संगठनों के क्षेत्र में विभिन्न प्रतिक्रियाएं उत्पन्न कर रही है। मैकुस के अध्यक्ष सूरज राय के अनुसार NGOs के लिए निर्धारित CSR निधियों के प्रबंधन में अभी भी सुधारों की आवश्यकता है। उन्होंने अधिक स्पष्ट और बेहतर विनियमित ढांचे की मांग की है ताकि इस प्रणाली में विश्वास, पारदर्शिता और विश्वसनीयता को और मजबूत किया जा सके। चलिए माकुस के अध्यक्ष सूरज राय को सुनते हैं। उनसे बातें की अंजलि सिरतन फूलचंद ने। एक बार फिर विवरण आस्था गोबिन चितामन का।
3: Donc, ce qui nous fait attendre, c'est qu'il faut un changement dans la formule contribution CSR.
2: CSR contribution में हम बदलाव की अपेक्षा कर रहे हैं। 2% की जो दर है उसे एक ही राशि में आ जाना चाहिए। ये बात सुनिश्चित करनी होगी कि बड़े फाउंडेशंस को ये सहयोग नहीं मिले क्योंकि अन्य स्रोतों से उन्हें सहयोग प्राप्त होता है। तीसरी बात ये देखनी होगी कि छोटे छोटे NGOs को समय पर पैसे मिल जाएं ताकि वे अपना काम जारी रख सकें और अपनी परियोजनाएं साकार कर सकें।
0: कोलन कैंसर मॉशेस में सबसे आम प्रकार के कैंसरों में से एक है। हालांकि यदि इसका समय रहते पता चल जाए तो इसके सफल उपचार और ठीक होने की संभावना काफ़ी अधिक होती है। पापिम तथा स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञ लोगों को रोकथाम, प्रिवेंशन और प्रारंभिक जांच के महत्व की याद दिला रहे हैं। अर्ली स्क्रीनिंग पर भी महत्व दिया जा रहा है। चलिए निर्मा नारायण रेड्डी की रिपोर्ट पर अशिता रघु को सुनते हैं।
4: मॉरिशस में कॉलन कैंसर कैंसर से होने वाली मौतों का तीसरा प्रमुख कारण है। हर वर्ष इस बीमारी के लगभग 350 से 450 नए मामले दर्ज किए जाते हैं। डॉक्टर तिनुष्का इसौ सिंह के अनुसार कई मरीजों में बीमारी का पता देर से चलता है क्योंकि शुरुआती चरण में इसके लक्षण दिखाई नहीं देते। उन्होंने जोर देकर कहा कि समय पर जांच से बीमारी का शीघ्र पता लगाया जा सकता है जिससे मरीज के पूरी तरह स्वस्थ होने की संभावना काफी बढ़ जाती है।
5: C'est un cancer qui se développe dans le gros intestin et qui commence presque toujours par un simple polype.
4: Une petite ये एक ऐसा कैंसर है जो बड़े आंत यानी बड़े इंटेस्टाइन में होता है और एक छोटे पॉलिप्स के साथ इसका आरंभ होता है जिसका एहसास भी नहीं कर सकती। यानी इस पर ध्यान न दिया जाए तो ये पॉलिप 10 से 15 सालों के अंतराल में बिना लक्षण के ये कैंसर में परिवर्तित हो सकता है। मॉरिशस में स्थिति को ध्यान में रखते हुए लक्षणों में शुरुआती स्टेज पर कोई लक्षण नहीं मिलता, इसके बाद निरंतर समस्या, मल में खून, पेट में बहुत दर्द, बिना कारण की थकान या वजन का घटना, ये सब होता है। पर अच्छी खबर ये है कि यदि इस कैंसर का पता चल जाए तो इसका इलाज भी हो सकता है। बड़ी आंख का कैंसर आज भी एक गंभीर जन स्वास्थ्य समस्या बना

0: करना हुआ है। पापीएम के उपाध्यक्ष हांस लेलुदो के अनुसार स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर इस बीमारी के कई मामलों को रोका जा सकता है। उन्होंने लोगों से नियमित शारीरिक गतिविधि करने, संतुलित आहार अपनाने और शराब के सेवन को सीमित रखने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि समय पर जांच यानी स्क्रीनिंग से बीमारी का जल्द पता लगाया जा सकता है, जिससे ठीक होने की संभावना बढ़ सकती है। इसी उद्देश्य से पापीएम कॉलन कैंसर की रोकथाम और जांच के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अपने अभियान जारी रखे हुए हैं।
1: Au niveau mondial et au niveau Maurice, nous remarquons qu'il y a un chiffre
0: मॉरिशस और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं और इसके साथ इससे मरने वालों की संख्या भी। कैंसर हर किसी को प्रभावित कर सकता है, नर नारी छोटे बड़े हर किसी को, इसलिए कैंसर से बचने के लिए जीवन शैली का बदलना अनिवार्य है।
2: विदेश में अमरीकी सेना की ओर से नए हमलों के जवाब में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों पर हमला किया है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को का कहना है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज़ों को निशाना बनाया है। अमरीका के ताज़ा हमले ऐसे समय में हुए हैं जब अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान पर सख्ती से हमला किया जाएगा और तेहरान ने जंग खत्म करने के लिए समझौता करने में बहुत देर कर दी है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उसने बुधवार को आत्मरक्षा में हमले शुरू किए जो ईरान की बेवजह और लगातार जारी आक्रामकता के जवाब में किए गए हैं। और अब आखिर में स्थानीय मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की और कुछ गर्म हवाएं बह रही हैं। पूर्व की ओर से कम दबाव वाली हवाएं हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ेगा आज रात को। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, सुबह के समय बादल घिरे रहेंगे, रह रहकर वर्षा भी होगी। शाम को देश के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और सेंट्रल प्लाटू पर बादल कुछ घिर आएंगे और रात को भी बादल छाए रहेंगे। हवा उत्तर पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। समंदर में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 17 से 19, अधिकतम 22 से 24, शहरी इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 23 और अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय आज सुबह 6:41 पर हुआ, सूर्यास्त शाम 5:37 पर होगा।

0: 6:53 हुए हैं। देश विदेश तथा मौसम के हाल के साथ ही ये बुलेटिन यहाँ पर समाप्त हो चला। हम तकनीकी सहायक कादिर को धन्यवाद देते हैं, साथ में पूरा समाचार और फ्रेंच विभाग को भी। कुछ ही समय में हम बढ़ेंगे शोक समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

Sok szavacsár szűnyi. Muszki rút gudlenc mély. Muszki rút gudlenc mély. Chialis szállaki, 46 years old. Janab Mirza Ralib Suku. Janab Mirza Ralib Suku. इंतकाल कर गई है इनका जनाजा आज दिन के 11 बजे आज दिन के 11 बजे इनके रिश्तेदार इनुश तुराबाली के मकान मुस्की रोड गुडलैंड से उठाकर दफनाने के लिए बेलमो गुडलैंड का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा फ्यूनरल टुडे एट 11 AM रिवरसाइड स्ट्रीट सेंट जूलियन विलेज में रिवरसाइड स्ट्रीट सेंट जूलियन विलेज में 50 साल के 50 ईयर्स ओल्ड श्री राधेश राम सिंह जिन्हें लोग बैम और

रुपेश नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 12 बजे इनकी माँ गीता राम सिंह के मकान रिवरसाइड स्ट्रीट सेंट जुलियन विलाज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौदमास कृष्णशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट नून। साइडिंग रोड न्यू ग्रोव में 75 साल की 75 ईयर्स ओल्डर श्री रत्नाजी बालू जिन्हें लोग राजन नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे इनकी पत्नी ललिता बालू के मकान साइडिंग रोड न्यू ग्रोव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मारी जानी रोजबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 2:30 PM। रॉयल रोड मिडलैंड्स में 74 साल की 74 ईयर्स ओल्ड श्रीधरम लक्सिमो जिन्हें लोग गास नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनके अर्थ है आज सुपहर के तीन बजे इनके मकान रॉयल रोड मिडलैंड्स से उठाकर मिडलैंड्स ही किश्मशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। ब्रांच रोड बोनाकई में 62 साल के 62 ईयर्स ओल्ड श्री तिलकराज सीताराम जिन्हें लोग सिवन मोन्टो नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनके अर्थ है आज सुबह नौ बजे इनके मकान ब्रांच रोड बोनाकई से उठाकर मेजिन कौदमास की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9 AM। रॉयल रोड कैथ कोको में 50 साल के 50 ईयर्स ओल्ड श्री अजय लोबिन जिन्हें लोग जान नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 12 बजे इनके ससुर सुरुज देव हीरालाल के मकान रॉयल रोड कैथ कोको से उठाकर भूषण की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट नून। कॉलेव्यू ओकुले में 71 साल की 71 ईयर्स ओल्ड श्रीमती धनवंती मोगन पैदाशी नाम कुंजल और जिन्हें लोग प्रेमिला नाम से भी जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनके अर्थ है आज सुबह साढ़े दस बजे इनके मकान कॉलेव्यू ओकुले से उठाकर एलिब्रियन की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10:30 AM। एवेन्यू कुसियाल पलमा कैटोबोन में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड श्री राम जी तुकाराम जिन्हें लोग कृष्णा नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। वे पहले CNT बस में कंडक्टर का काम करते थे। इनकी अर्थी आज सुबह 10 बजे इनके मकान एवेन्यू कुसियाल पलमा कैटोबोन से उठाकर फिनिक्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। रॉयल रोड पंचवती रिविया जुरांपाओ में 70 साल के 70 ईयर्स ओल्ड श्री राज जी बोसिया जिन्हें लोग सुरेश नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सुबह साढ़े दस बजे इनकी पत्नी सरोदा जी बोसिया के मकान रॉयल रोड पंचवती रिविया जुरांपा से उठाकर पुएर्टो डेल अलास्का की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10:30 AM। डॉक्टर लोकनाथ लेन सेजिया मिल फॉरेस्ट साइड में 60 साल के 60 ईयर्स ओल्ड श्री सुमिन दत्त रामदास जिन्हें लोग सुमिन दत्त नाम से अधिक जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज इनके मकान डॉक्टर लोकनाथ लेन सेजिया मिल फॉरेस्ट साइड से उठाई जाएगी। समय के बारे में बाद में सूचित किया जाएगा। और इंग्लैंड में 79 ईयर्स ओल्ड श्रीमती देवी एरामा अपादू पैदाशी नाम शनिगादू और जिन्हें लोग देवी नाम से अधिक जानते थे कि मृत्यु हो गई है।

0: इनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे, आज दिन के 2 बजे इंग्लैंड में ही उठाई जाएगी और इनका अंतिम संस्कार इंग्लैंड में ही किया जाएगा। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: Welcome to RM2
2: Radio Musti.
1: North, South,
2: 103.5,
1: East, West,
2: 96.4,
1: Center,
2: 99.4.
1: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Time check 7 baje hai.
2: A good beat for your morning show. Morning Beat, RM2.
1: Radio Musti.

0: Good Beat for your morning show. Come on. Morning Beat. RM2.
1: Radio Musty.
2: वो नहीं आने वाली.
3: No, वो आ रही है. वो भी अपना जलवा बिखेरने आ रही है. 7:07.

0: नचने दे, कुड़ी नू नचने दे। आप रेडी हैं डांस करने के लिए?
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: Yes guys, morning में आप लोग भी अभी घर से निकल रहे होंगे काम पर जाने के लिए। कुछ लोग अभी हमारे जो बच्चे हैं वो तैयार हो रहे हैं।

0: होंगे कहाँ जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए. हाँ, कुछ लोग आउटिंग के लिए भी निकल रहे हैं आज. सो ऑल द बेस्ट, एंजॉय करें. ये भी दिन क्या दिन थे जब हम स्कूल में जाते थे, फिर हमें एक दिन मिलता था जहाँ पर हम छुट्टी मनाते थे, हम लोग घूमने जाया करते थे. वाओ, काश हम फिर से बच्चे हो जाते. चलो कोई बात नहीं, अभी जितने भी बच्चे हमारे साथ हैं, हमें सुन रहे हैं, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू बच्चा पार्टी. एंड मेक श्योर कि आज का दिन आपके लिए स्पेशल हो, खास हो. एंड स्कूल जा रहे हो तो किसी मकसद से ही जाते हो ना, पढ़ने लिखने के लिए. सो ध्यान देना. एंड चलिए इसी के साथ जो हमारे हाउस वाइफ्स हैं उनसे यही कहूँगी कि भाई इतना भागना ज़रूरी नहीं होता, आपको भी थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए. तो अगर सब लोग निकल जाते हैं काम पर जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, तो कम से कम एक कप चाय और आपका नाश्ता बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कम से कम बैठ के ये थोड़ा सा नाश्ता आराम से कर लिया करो. अभी तो फिलहाल के लिए जब हमने बोल ही दिया है कि सबको डांस करने का मन है, तो यहाँ पर डांस का भूत हर जगह चढ़ा हुआ है. मॉर्निंग मॉर्निंग में डांस करते हुए अपना काम करना, इसमें कुछ और ही मज़ा होता है ना. तो बर्थडे के लिए भी आप लोग भूलना नहीं, हमें नंबर जरूर भेजिएगा. मेक श्योर कि बर्थडे आज ही है. थैंक यू.
1: A good beat for your morning show. Morning Beat, RM2 Radio.

0: Good Beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: A very good morning once again. सुबह के 7:25 हुए हैं. You are listening to Morning Beat. और यहाँ पर आपकी मॉर्निंग को जबरदस्त तो हमारे गाने बनाते ही हैं. लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ों पे ध्यान भी तो चलना चाहिए. अब देखो, आप घर से निकल रहे हो ऑफिस पे जाने के लिए, तो कभी कभी जल्दी जल्दी में हम छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं, जैसे कि अपने कार को एक क्विक चेक देना. बस 2 मिनट लगेगा एंड टायर्स प्रॉपरली इन्फ्लेटेड है, फ्यूल या बैटरी चार्ज इनफ है, मिरर्स क्लीन और करेक्टली एडजस्टेड हैं, हेडलाइट्स और इंडिकेटर्स काम कर रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपका सीट बेल्ट, हाँ वो लगाना मत भूलिएगा जब आप निकल रहे हैं. छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी जर्नी को और भी स्मूथ बनाते हैं. बाकी आप सेफली अपने काम पर पहुँचे, घर पर पहुँचे. अगर आप काम से निकल कर घर पे जा रहे हैं, कुछ लोग हाँ बिल्कुल नाइट शिफ्ट भी करते हैं, तो मेक श्योर कि आपको नींद नहीं आ रही. अगर आपको नींद भी आ रही है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप गाड़ी में कहीं शीशे को थोड़ा सा नीचे करके कॉर्नर में आप लगा के कम से कम एक पावर नैप होता है 15 मिनट का, वो ज़रूर ले रहे, फिर उसके बाद निकले. ऐसा नहीं कि नींद आ रही और गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है. सो यू बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग. गीतों के साथ हम आगे बढ़ेंगे एंड डोंट फॉरगेट, हम अभी भी वेट करें आपका. अगर आप भी किसी को बर्थडे सरप्राइज करना चाहते हैं तो उनका नाम और उनका फ़ोन नंबर ज़रूर भेजें.
0: Morning Beat. A good beat for your morning show. James.
1: RM2 Radio Musty in the mix.

0: A good beat for your morning show. Come on. RM2.
1: Radio Musty.
2: Hello. सुबह के 7:30 तो बज गए हैं. आज है 11 जून. 11 जून को किसका बर्थडे है अगर आप मुझे बता दें तो बड़ी मेहरबानी होगी. अब बता ही रहे हैं तो उनका फोन नंबर भी दे दीजिए ताकि हम उनको ट्रिंग ट्रिंग फोन कर ले. यस, लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से अब समय हो गया है कि हम उनको विश करें हैप्पी बर्थडे टू यू. उनसे कुछ बातें होती हैं. हाँ, इधर उधर की बातें हो ही जाती है. कभी पहचान लेते हैं और कभी नहीं पहचानते तो मजा आता है. तो आप लोग भी अगर लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से ये वाउचर उनको दिलाना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, जिनका भी बर्थडे है प्लीज मेक श्योर कि बर्थडे आज ही है. ओके, फिर उसके बाद आपको मुझे उनका फोन नंबर भेजना होता है एंड उनका नाम और बस बाकी का जो काम है वो हम कर लेते हैं. तो चलिए इसी के साथ वेट करते हैं, देखते हैं कि कौन है आज हमारा क्या कहते हैं बर्थडे बॉय या बर्थडे गर्ल जिनको ये वाउचर मिलेगा लुलु हाइपर मार्केट की तरफ से.
0: मॉर्निंग बीट, अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो.
1: RM2, Radio Musty, in the mix.

0: Frosty.
1: Allez!
2: Coach, trop beaucoup pression.
1: Pression, c'est quand tu fight ou dans l'équipe qualifiée. Des man mané, c'est mieux ça là.
3: The pressure can wait. Watch all 104 games live on Supersport FIFA World Cup Central and FIFA World Cup Extra in the DStv English Plus add-on with Canal Plus. Until the 21st of June, subscribe to Canal Plus Sport Pack and DStv English Plus add-on at only 500 rupees per month for 6 months, then 900 rupees per month. Contractual period for 24 months plus current month. Offer subject to conditions, valid in Mauritius, VAT included. More info on Canal Plus stores and shops and canalplus.com.
4: Aujourd'hui, Internet font partie quotidien Bandimoun. Dans la case, bureau, métro, l'eau, la place, partout. L'important qui nous continue à améliorer nos qualités services Internet et pour améliorer, bisous tester. ICTA lance plateforme qualité net et que pour capable tester vitesse download, l'expérience streaming, browsing dans Maurice, Rodrigue et Agalega. Qualité net disponible au qualitenet.icta.mu et dans App Store, Play Store et App Gallery. Qui qualité ou Internet? Fais-nous connaître le qualité net pour améliorer. C'est une initiative ICTA.
0: RM2 Radio Musti.
5: Hello, good morning. Shayad, yahin pe honge na? Hello, good morning. Hello.
6: Hello.
5: Yes, good morning. Hi, is
6: good
5: it
6: morning.
5: Akshay?
6: Yes.
5: Hi, Akshay, how are you?
6: I'm good, and you?
5: I'm fine, thank you. So, Akshay, kahan pe rehte ho?
6: Sorry?
5: Aap kahan pe rehte ho? Where you live?
6: Nouvelle-France.
5: Nouvelle-France. Okay, we're just checking the weather. We're looking for different people, you know, and we're just checking how the weather. So, how is the weather at your place?
6: It's good.
5: Okay, can you just give me a few details about the weather in Nouvelle-France, like you're doing some kind of animation, you know? जैसे आप जैसे आप जैसे आप रेडियो पे सुनते हो आपको वैसे ही बोलना पड़ेगा नमस्कार चलिए जानते हैं मौसम का हाल कैन यू डू दैट फॉर मी
6: ओके द वेदर इज गुड और सम डेज इट्स रेनिंग
5: ओके एंड यहां का मौसम आपको पता है कैसा है मुका में आपको पता है मुका में मौसम कैसा है रुकिए मैं बताती हूँ आपको
6: I don't hear you.
5: Okay, मैं बताती हूँ आपको कि मोका में मौसम कैसा है
6: okay.

0: रेडियो मस्ती।
1: ओके तो यहाँ मोका में एमबीसी में मौसम ऐसा है कि हम आपका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड कहीं आपको आपको डाउट तो हुआ था, डाउट हुआ था है ना, जब मैंने बोला कि आपको आपको थोड़ा एनिमेशन करना पड़ेगा तो आपको पता चल गया हाँ ये मेरे साथ कोई प्रैंक कर रहा है। अब क्या करें, अब हमारी आदत ही ऐसी है मॉर्निंग में हमें प्रैंक करना अच्छा लगता है। कभी कभी तो लोग कहते हैं या कभी कभी हम लोगों से प्रैंक करते हैं, कभी कभी वो मुझे शॉक देते थे, वेदिता है ठीक है ओके फाइन। सो अक्षय बलराम विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। लेट मी टेल यू कि आपको क्या मिल रहा है। आपको मिल रहा है लोलो हाइपरमार्केट की तरफ से एक वाउचर विच यू हैव टू कम टू एमबीसी एंड कलेक्ट। आईडी कार्ड मत भूलना All right, and आज नहीं तो कल, you have only 2 days, आज नहीं तो कल, you come and collect your voucher, and once again wishing you a very very happy birthday, and wishing you lots of surprises, बहुत सारी खुशियाँ, and I hope we try to make it special for you, I hope we were successful, so have this smile, have this smile on your face, and enjoy your whole day, thank you so much, bye bye,
2: thank you very much, bye bye.
3: Morning Beat, a good beat for your morning show. James.
4: RM2 Radio Musty in the mix.

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Decor, the floor expert.
1: Sports news, latest updates.
2: Sports news.
3: Radio Musti in the mix.
4: जी हाँ, इंतजार कर रहे थे हम कि कब आएगी वो घड़ी, और वो घड़ी बस ऑलमोस्ट यहीं पर है। चलिए भाई, आप देखते हैं कि फुटबॉल के इतिहास में कौन अपना छाप छोड़ेगा। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप। इसके बारे में कुछ और डिटेल्स तो हमें अरविंद देंगे ही, लेकिन अभी समय हो गया है हमारे इस गुरु से मिलने का। चलिए जानते हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड में और क्या क्या चल रहा है। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अरविंद।
5: गुड मॉर्निंग आपको, गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स, द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। इंतजार खत्म हुआ, मैदान सज चुका है, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप 2026 शुरू हो रहा है। मेला फुटबॉल का आता है, आके जाता है, पर जाते जाते फुटबॉल के इतिहास में अपना छाप छोड़ जाता है। 48 टीमें, एक अल्टीमेट ड्रीम्स। दिलों की धड़कन तेज कर लीजिए, नॉर्थ अमेरिका के मैदानों में आग उगलने के लिए तैयार हैं, सज हैं, तैनात हैं फुटबॉल के एक से एक दिग्गज। कहीं कनाडा की ठंड में जोश उबलेगा, कहीं यूएसए और मेक्सिको की गर्मी में आग उगलेंगी। ना कोई भाषा का बंधन, ना कोई दीवार, सिर्फ फुटबॉल का जुनून और जीत की पुकार। वेलकम फीफा वर्ल्ड कप 2026। 23वां फीफा वर्ल्ड कप आज से शुरू। मोस्ट आइकॉनिक ट्रॉफी इन द वर्ल्ड, फुटबॉल की सबसे बड़ी टूर्नामेंट जिसे जीतना हर एक टीम, हर एक खिलाड़ी का सपना होता है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 खास है, ज्यादा टीमें, ज्यादा मैच, और पहली बार के लिए 3 होस्ट नेशन। पहला मैच मेक्सिको सिटी के आइकॉनिक अज़्टेका स्टेडियम में होने वाला है। फीफा के प्रेसिडेंट इन्फांटिनो ने कहा कि ये स्टेडियम कैथेड्रल ऑफ फुटबॉल है। इसी स्टेडियम में आज पहला मैच खेला जाएगा मेक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच। वर्ल्ड कप 2026 का कर्टन रेजर, ये मैच 2010 वर्ल्ड कप के पहले मैच की याद दिलाती है। योहानेसबर्ग में मैच ड्रॉ गया था 1-1। इस बार मेक्सिको होम टीम है, इस ग्रुप का हैवी फेवरेट। मेक्सिको की टीम इंजुरी फ्री है, गोलकीपर राउल रेंगेल होगा, मिडफील्ड लीडर है एडसन अल्वारेज, जबकि स्ट्राइकर फुलहाम का राउल यिमेनेज। साउथ अफ्रीका में ज्यादातर लोकल लीग के खिलाड़ी हैं, आफकॉन स्टार रोनवेल विलियम्स और लाइल फोस्टर डेंजर होंगे। मेक्सिको अपने 80,000 फैंस के सामने खेलेगा, और मेक्सिको सिटी के आल्टीट्यूड से मेक्सिको फेवरेट है। ओप्टा सुपर कंप्यूटर के अनुसार मेक्सिको 66.3% विन चांस, 2-0 या 2-1 प्रेडिक्शन है मेक्सिको के हक में। तीसरी बार के लिए मेक्सिको में वर्ल्ड कप लग रहा है, इससे पहले 1970 और 1986 में पहला देश जो वर्ल्ड कप हैट्रिक पूरा कर रहा है। मेक्सिको कोंकाकाफ नेशंस लीग और गोल्ड कप विनर है, पर 2025 में 6 मैचों में 4 ड्रॉ, 2 हार, पर इस साल एल्ट्री मेक्सिको की टीम पोर्टुगल और बेल्जियम के खिलाफ ड्रॉ कर पाए, फिर 3 मैचों में जीत, गाना, ऑस्ट्रेलिया और सर्बिया।

0: के खिलाफ। साउथ अफ्रीका के लिए चौथा वर्ल्ड कप, 16 साल बाद दी बाफाना बाफाना वर्ल्ड कप में खेलेंगे। अफ्रीका में रैंक्ड नंबर 11, फीफा में रैंक्ड 60। दूसरा मैच कल सुबह 6 बजे साउथ कोरिया और चेक रिपब्लिक के बीच, और कल रात 11 बजे ग्रुप बी मैच कनाडा वर्सेस बोस्निया। लासिलेसाओ ब्राजील की एंट्री होगी मोरक्को के खिलाफ संडे सुबह 2 बजे। जर्मनी संडे को रात के 9 बजे, फ्रांस सेनेगल मंगलवार 16 जून 11 बजे, अर्जेंटीना अल्जीरिया 17 जून को, इंग्लैंड की ग्रैंड एंट्री क्रोएशिया के खिलाफ है 17 जून को बुधवार का मैच। इंग्लैंड की टीम में दम है और इस वर्ल्ड कप में इस टीम से डरना होगा। कोस्टा रिका के खिलाफ इंग्लैंड ने अपने वर्ल्ड कप से पहले के आखिरी तैयारी मैच कमाल का परफॉर्मेंस दिया। 3-0 की इंप्रेसिव जीत, डेक्लन राइस ने पहला गोल स्कोर किया। इसके बाद सेकंड हाफ में पेनाल्टी पर एंटोनी गोर्डन का गोल और गोल फिएस्टा पूरा किया ओली वाटकिंस ने। जूड बेलिंगम का बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस रहा नंबर 10 पोजीशन पर। पोर्टुगल की टीम की भी जीत हुई 2-1 से नाइजीरिया पर, पेड्रो नेटो और फ्रांसिस्को कंसेसाओ का 1-1 गोल। आज सुबह अल्जीरिया ने बोलीविया को हराया। क्रिकेट, श्रीलंका में चल रहे ए टीम ट्री सीरीज में आज टीम इंडिया का मुकाबला अफगान की ए टीम से है। इससे पहले इस मैच में इंडिया की जीत हुई थी, इससे पहले पहले मैच में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ, और मीरपुर में बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दूसरा वन डे मैच। सो गेट रेडी, वर्ल्ड कप 2026 इज हियर, 4 साल बाद आता है, खूब मजा लेंगे और आपको समय समय पर अपडेट्स देते रहेंगे। कीप ऑन लिसनिंग एमबीसी रेडियो और एमबीसी टीवी के साथ जुड़े रहिए, खास कार्यक्रम लेकर आएंगे। अभी हमारी मुलाकात फिर से होगी RM2 पर 8:30 बजे विद द स्पेशल वर्ल्ड कप मैगजीन। टिल देन हैव ए फुटबॉलिंग फिएस्टा एमबीसी टीवी के साथ, एमबीसी रेडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।
1: थैंक यू अरविंद, थैंक यू सो मच, सी यू, बहुत जल्द मिलते हैं 8:30 बजे।
2: मेगा प्रोमो को क्वालिटी देखो, टाइल्स 30x30, मेगा डील लो टाइल्स 60x60, सीपीएसएल लो ग्रानिट क्वार्ट्ज, प्री कासे लो लावो, ला लिनिया मॉडर्न प्री सॉक।

0: A good beat for your morning show. RM2.
1: Radio Musti.
2: This is your Radio Musti. आप सुन रहे हैं मॉर्निंग बीट वेदिता के साथ. अ वेरी गुड मॉर्निंग. सो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? गाड़ी वाड़ी चेक कर लिया ना, घर से निकल गए? अच्छा ठीक है. अभी बताओ कहाँ तक पहुँचे? जानती हूँ अभी आप लोग ट्रैफिक में ही फंसे होंगे, लेकिन अब आदत पड़ गई है ना. अभी हम स्ट्रेस नहीं लेते ना, स्ट्रेस देते हैं. बगल वाले को देखते हैं, स्माइल करते हैं और कहते हैं होता है भाई, होता है, चलो ऐसे करते हैं. अभी क्या है ना कि जो लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको भी तो हैप्पी बर्थडे बोलना चाहिए ना. तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने हमें बर्थडे विशेज भेजा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली में नाम भी नहीं है. तो नेक्स्ट गाना हम किसके नाम डेडिकेट करते हैं? नेक्स्ट गाना जाएगा आपके लिए. वेरी गुड मॉर्निंग. नेक्स्ट गाना फॉर मी अनुशिता एंड चलिए भाई लाल माटी में जितने भी लोग अभी बैंक में काम कर रहे हैं उन सब के लिए, मैडम श्वेता, मैडम प्रियंका, न्यूरेजा, करिश्मा, अक्षन, इन सबको डेडिकेट करते हैं हमारे इस प्रोग्राम का नेक्स्ट गाना. एंड यहाँ पर नेक्स्ट गाना जाएगा फॉर माई फ्रेंड अभिषेक, आज उनका बर्थडे है. यहाँ पर हमारे साथ राजीव रामफल है चित्रकूट से, फ्रॉम वालिदेपखत. ओके. उनकी मामा रीता, उनके पापा रंजीत, उनके भाई राजीव, भाई मंदा, और कहते हैं वेडिंग एनिवर्सरी है. किसकी वेडिंग एनिवर्सरी है? मम्मी पापा की. बेस्ट विशेज आरती, शांत, सुदेश, लक्ष्मण, दिवेशा और सभी फैमिली की तरफ से. चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं. विशिंग माय वाइफ अ वेरी हैप्पी बर्थडे. ये है करिश्मा बुद्राम फ्रॉम थ्री यूर ले. कहते हैं अभी गाड़ी में हम उनको ड्रॉप करने जा रहे हैं. सो सभी बुद्राम फैमिली की ओर से करिश्मा को विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे. मिलते हैं थोड़ी देर में 8 बजे के समाचारों के बाद.
0: मॉर्निंग बीट. One more remix. A good beat for your morning show.
1: RM2, Radio Musti, in the mix.

सबको एक नमस्ते भोजपुरी के समाचार में हम आप सबको एक स्वागत कर रहे थे जा जन परिवार के या घर के माओवाकवा जलाशय से पानी की आपूर्ति होला आवत हफ्ता से उ लोग के कयंग घंटा ले पानी की कटौती जैसन स्थिति के सामना करे के पड़ी एक में बुबा से रोजहिल काठबून वकवा क्यूपिप मुका से प्यार रिवियानो जैसन इलाका शामिल बाते जलाशय या गल कुछ महीना में कयन मतलब कम पानी से बरसात से सबसे अधिक प्रभावित होल बाते देश के सबसे बड़का जल भंडार आज सबसे कम भरल बा एकर जल स्तर अब खाली 45% बनल बा आर अधिकारी लोग के अनुसार ई जल उपयोग प्रतिबंध के लागू करे के आवश्यक हो गल बा जिमें स्थिति के जस्ती खराब हो से रोकल जा सकी। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी में पंजीकृत 415,000 घर में से करीब 150,000 घर एकर से प्रभावित होयन सा CWA के निदेशक श्याम तानू के मुताबिक पानी की कटौती 1 घंटा से लेके 4 घंटा ले या एकर से भी जस्ती समय ले चले सकी एकर संबंध में अंतिम निर्णय बहुते हाली लेवल जाए। दुनिया के सबसे बड़का खेल आयोजन आज फीफे से शुरू होता फीफा विश्व कप 2026 मैक्सिको अमेरिका और कनाडा द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित फीफा विश्व कप 2026 में पहला हला 48 राष्ट्रीय टीम भाग लियन सा उद्घाटन मैच मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैक्सिको सिटी के प्रतिष्ठित अस्टेका स्टेडियम में खेलल जाए। उद्घाटन समारोह के बाद ई मैच मौसम समय अनुसार रात के 11 बजे से शुरू हुई और ई भी जानल कि 83,000 दर्शक की क्षमता होला अस्टेका स्टेडियम में मतलब अस्टेका स्टेडियम एगो नवा इतिहास रचले बा। अस्टेका दुनिया के पहला स्टेडियम बन गल बा जहाँ 3 फीफा विश्व कप के मैच आयोजित करल गल बा। और MBC प्ले पर फीफा विश्व कप 2026 के प्रसारण हो या फुटबॉल प्रेमी फीफा विश्व कप 2026 के सब मैच MBC प्ले पर देख सकें। सब्सक्रिप्शन यानी सदस्यता ले खातिर उपयोगकर्ता के ऐप खुले के हो या TV सेक्शन में जाए के और न्यू वर्ल्ड TV चैनल में से कोनो एक के चयन करे के पड़ी। एक बाद एगो संदेश दिखी एगो मैसेज मिली जेकर में खाता के रिचार्ज करे खातिर बोलल जाए फिर 60 दिन होला पैकेज चुने के पड़ी। प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करे के पड़ी और सुरक्षित भुगतान यानी पेमेंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपन पसंद के भुगतान तरीका चुन के भुगतान पूरा करे के पड़ी। और जे पे मैट हो जाए तो न्यू वर्ल्ड TV चैनल ऐप में उपलब्ध हो जाए। एक बाद ग्राहक प्रतियोगिता के मतलब ई फुटबॉल मैच के सब 104 मैच के सीधा प्रसारण अपन मोबाइल फोन टैबलेट कंप्यूटर या स्मार्ट TV पर देख सकें। जस्ती जानकारी खातिर जनता MBC हेल्प डेस्क से ई नंबर पर फोन कर सकें। 4333135 4332905 4333145 या फिर 5944680000। दर्शक लोग विश्व कप 2026 के सब मैच के आनंद ले सकें। ई खातिर उ लोग ई ऐप के डाउनलोड करे के पड़े या फिर MBC हेल्प डेस्क पर जस्ती जानकारी

0: लिवेसक यांचा. कोलन कैंसर मॉर्शस में सबसे आम प्रकार की कैंसर में से एक कहा या जे एकर समय या पर उपचार करल जाए तो काफी मतलब उपचार खातिर लोग कर सकें स पापिम आर स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञ लोग जनता के रोकथाम आर प्रारंभिक जांच यानी अर्ली स्क्रीनिंग के महत्व पर भी जस्ती जानकारी दे सकें स. दूसर देश के खबर में ईरान खाड़ी क्षेत्र में स्थित अमेरिका ठिकाना पर हमला कर ले बाई कदम अमेरिका द्वारा करल गल ताज़ा हमला के जवाब में उठावल गल बा जो न उ बखत होल बा जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले बा कि उ देश पर कड़ा प्रहार करी. अमरीकी सेंट्रल कमांड बोले बा कि उ अपन लगातार दूसर का दिन के आत्मरक्षा कार्रवाई यानी सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक पूरा कर ले बा. ये हमला रात के करल गर और ई उ बयान के बाद आलबा जब जिकर में डोनाल्ड ट्रंप बोले रहल कि तेहरान युद्ध समाप्त करे खातिर समझौता करे में बहुते देर कर दे बा. तैकरी संगे भोजपुरी के समाचार समाप्त होल. तुह लोग के ध्यान खातिर धन्यवाद. नमस्ते और शुभ दिन.
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: आइए जानते हैं NBC Play पर New World Sports Pack में सब्सक्राइब करने का तरीका. स्टेप वन, सब्सक्राइबर को पहले NBC Play ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में. अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर MIPS पेमेंट पोर्टल. स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस. एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप. सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप. अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा. ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी. यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे. और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं तो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड यानी कि OTP SMS या ईमेल द्वारा. ये OTP आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन. तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या OTP के द्वारा तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द NBC Play एप्लीकेशन. अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा NBC Play होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स. ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800.
3: RM2, Radio Musty, in the mix.

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: मॉर्निंग मॉर्निंग में थोड़ा सा झूम लेना अच्छा होता है। ये जो हम भोजपुरी का तड़का लगाते हैं, आई नो इससे तो आपकी टेंशन दूर हो ही जाती है। सुबह के 8:13 हुए हैं, तेरा क्या होगा कालिया? अरे वही होगा सरदार, हमने आपका नमक खाया है इसीलिए बीपी इतना हाई रहता है। चलिए यहाँ पर अब हम आपका इलाज करते हैं हमारे गीतों के साथ, जो आपके बीपी को एकदम कंट्रोल में ले आएगा और आपके शुगर को भी। हाँ, यहाँ पर स्वीटनेस कुछ ज़्यादा ही है, खुशियाँ बहुत सारा बांटते हैं, लेकिन साथ में आपके भी तो मैसेज आते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। फिलहाल आज अगर आपका कोई प्लान है, जानना चाहते हैं दिन भर में मौसम कैसा रहेगा, चलिए मिलते हैं पूजा के साथ।
0: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स,
3: ओनली टू स्विनर्स।
4: हमारे इलाके पर हल्की और गर्म हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, सुबह के समय बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर वर्षा भी होगी। शाम को देश के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और सेंट्रल प्लाटू पर बादल कुछ छाए रहेंगे और बारिश भी होगी। रात को भी बादल छाए रहेंगे। हवा उत्तर पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। समंदर में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 17 से 19, अधिकतम 22 से 24, शहरी इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 23, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय आज सुबह 6:41 पर, सूर्यास्त शाम 5:37 पर होगा।
0: Your weather forecast on RM2.
1: Radio Musti.
5: C'est le moment que tout le monde attendait. La fièvre du foot débarque chez Winners avec des offres à ne pas manquer. Profitez d'offres exceptionnelles sur vos produits préférés. Les 250 grammes de croquettes samoussa, spring rose, poulet ou poisson, Mariga Jack à 84 roupies 95 et toute la gamme de déodorants Axe 24 heures à 138 roupies 95 et à l'achat de 400 roupies de la gamme Axe, recevez un déo Axe FIFA en cadeau. Le coup d'envoi est lancé. Rendez-vous dès maintenant dans votre magasin Winners pour profiter des offres et animations du moment.
6: On est tous winners!

0: avant tes défis de long shift. Commence par une bonne décision. Nescafé.
1: चले जो लोग अभी ये सोच रहे हैं कि भाई हमारे ज़िंदगी में क्या हो गया, क्या होगा, टेंशन लेने का नहीं है किसी का दिन आज है, किसी का कल आएगा। ज़िंदगी हर किसी को उसका वक्त ज़रूर देती है, इसलिए ना किसी की कामयाबी से जलना, ना अपनी मुश्किलों से घबराना, बस अपने कर्म अच्छे रखो, क्योंकि कर्म कभी हिसाब बोलता नहीं। हर इंसान का टाइम अलग होता है। आज जो स्ट्रगल कर रहे हैं, कल वो शाइन कर सकता है। दूसरों को नीचा दिखाकर आगे बढ़ने की कोशिश मत करो, अच्छे कर्म करो, क्योंकि फल भले देर से मिलता है लेकिन मिलता ज़रूर है, और बुरे कर्म का भी एक दिन

0: वापस लौट कर ही आता है वक्त सबका आता है लेकिन इज्जत और सुकून सिर्फ उसका रहता है जिनके कर्म साफ होते हैं इसलिए अगर काम अच्छे कर रहे हो तो घबराना नहीं एक दिन इसका फल आपको जरूर मिलेगा तो चलिए गिव मी योर बेस्ट स्माइल टुडे एंड होता है एक दिन अपना भी दिन आएगा
1: Avant de défi, de long shift, de premier pas qui capable sens tous audi, il a toujours une pause, un souffle, un moment. Nescafé, first. Après

0: खाली नहीं जाएगा भाई, अभी समय हो गया है, भरना है हमें कहीं।
1: Get ready for the biggest World Cup ever!
2: 2026 FIFA World Cup.
1: पहली बार होंगी 48 teams, 104 matches. रेडियो मस्ती की टीम के साथ चलिए यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको।
2: रेडियो मस्ती के साथ
1: वर्ल्ड कप मैगजीन।
0: Let's go. आ गए हैं अरविंद हमारे साथ। अरविंद चलिए जानते हैं अभी सब कुछ रेडी है ना?
3: इंतजार खत्म हुआ, मैदान सज चुका है क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप 2026 शुरू हो रहा है। मेला फुटबॉल का आता है, आके जाता है, पर जाते जाते फुटबॉल के इतिहास में अपना छाप छोड़ जाता है। 48 टीमें, एक अल्टीमेट ड्रीम्स। दिलों की धड़कन तेज कर लीजिए, नॉर्थ अमेरिका के मैदानों में आग उगलने के लिए तैयार है, सज है, तैनात है फुटबॉल के एक से एक दिग्गज। कहीं कनाडा की ठंड में जोश उबलेगा, कहीं यूएसए और मेक्सिको की गर्मी में आग उगलेंगे। ना कोई भाषा का बंधन, ना कोई दीवार, सिर्फ फुटबॉल का जुनून और जीत की पुकार। वेलकम फीफा वर्ल्ड कप 2026। 23वां फीफा वर्ल्ड कप आज से शुरू। मोस्ट आइकॉनिक ट्रॉफी इन द वर्ल्ड, फुटबॉल की सबसे बड़ी टूर्नामेंट जिसे जीतना हर एक टीम, हर एक खिलाड़ी का सपना होता है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 खास है, ज्यादा टीमें, ज्यादा मैच और पहली बार के लिए तीन होस्ट नेशन। पहला मैच मेक्सिको सिटी के आइकॉन

0: म्यूनिक अस्टेका स्टेडियम में होने वाला है। फीफा के प्रेसिडेंट इन्फांटिनो ने कहा कि ये स्टेडियम कैथेड्रल ऑफ फुटबॉल है। इसी स्टेडियम में आज पहला मैच खेला जाएगा मेक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच। वर्ल्ड कप 2026 का कर्टन रेजर, ये मैच 2010 वर्ल्ड कप के पहले मैच की याद दिलाती है। योहानेसबर्ग में मैच ड्रॉ गया था 1-1। इस बार मेक्सिको होम टीम है, इस ग्रुप का हैवी फेवरेट। मेक्सिको की टीम इंजुरी फ्री है, गोलकीपर राउल रेंगेल होगा, मिडफील्ड लीडर है एडसन अल्वारेज, जबकि स्ट्राइकर फुलहाम का राउल यिमेनेज। साउथ अफ्रीका में ज्यादातर लोकल लीग के खिलाड़ी हैं, आफकॉन स्टार रोनवेल विलियम्स और लाइल फोस्टर डेंजर होंगे। मेक्सिको अपने 80,000 फैंस के सामने खेलेगा और मेक्सिको सिटी के आल्टीट्यूड से मेक्सिको फेवरेट है। ओप्टा सुपर कंप्यूटर के अनुसार मेक्सिको 66.3% विन चांस, 2-0 या 2-1 प्रेडिक्शन है मेक्सिको के हक में। तीसरी बार के लिए मेक्सिको में वर्ल्ड कप लग रहा है, इससे पहले 1970 और 1986 में पहला देश जो वर्ल्ड कप हैट्रिक पूरा कर रहा है। मेक्सिको कोंकाकाफ नेशंस लीग और गोल्ड कप विनर है, पर 2025 में 6 मैचों में 4 ड्रॉ 2 हार पर इस साल एल्ट्री मेक्सिको की टीम पोर्टुगल और बेल्जियम के खिलाफ ड्रॉ कर पाए, फिर 3 मैचों में जीत गाना ऑस्ट्रेलिया और सर्बिया के खिलाफ। साउथ अफ्रीका के लिए चौथा वर्ल्ड कप, 16 साल बाद दी बाफाना बाफाना वर्ल्ड कप में खेलेंगे। अफ्रीका में रैंक्ड नंबर 11, फीफा में रैंक्ड 60। वर्ल्ड कप 2026 कौन जीतेगा, प्रेडिक्शंस चारों तरफ हैं। बीबीसी स्पोर्ट्स के फुटबॉल पंडित के प्रेडिक्शंस पर नजर डालते हैं। अलन शीरर ने फ्रांस को चुना है, पर इस शर्त पर कि टीम में हाउस फाइटिंग न हो। डैनी मर्फी ने भी फ्रांस को अपना फेवरेट बनाया, हार्ड टू लुक पास्ट फ्रांस विद द फायर पावर दे हैव। ओलिविये जीरू के अनुसार वर्ल्ड कप फ्रांस या स्पेन के बीच, पर वो चाहता है उसकी टीम फ्रांस की जीत हो। वेन रूने ने प्रेडिक्ट किया है फाइनल इंग्लैंड और स्पेन के बीच, और इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीतेगा। टोमास फ्रैंक के लिए फ्रांस क्लियर फेवरेट है, पर पीछे स्पेन भी है। मिका रिचर्ड्स के लिए एक साउथ अमेरिकन टीम वर्ल्ड कप जीतेगी। गैल क्लिशी के लिए फ्रांस, स्पेन या इंग्लैंड, पर फ्रांस का है, फ्रांस को चुनेगा। जो हार्ट के लिए इंग्लैंड, मार्टिन क्यून ने भी इंग्लैंड को चुना है। पॉल रॉबिन्सन ने फ्रांस को फेवरेट बनाया है, क्रिस सटन के लिए फ्रांस। टोटल 9 वोट फ्रांस के लिए, 7 वोट इंग्लैंड के लिए, स्पेन के लिए 1 वोट। ह्यूमन एक्सपर्ट्स की राय तो ले ली, अब एआई के ओप्टा सुपर कंप्यूटर के अनुसार स्पेन 16.1%, फ्रांस 13%, इंग्लैंड 11.2%, अर्जेंटीना 10.4%। एआई को पायलट ने भी स्पेन को अपना फेवरेट बनाया है। अलान शीरर ने फ्रांस की टीम को उसमें हाउस फाइटिंग की बात की। फ्रांस की टीम में किलियान एम्बापे को लेकर कुछ गड़बड़ है। नॉर्दर्न आयरलैंड वाली फ्रेंडली मैच के बाद कप्तान एम्बापे नेशनल कैंप छोड़ गया। अप्रूवल ली थी पर पर्सनल रीजन पर बाद में उसे मैड्रिड में अपने पार्टनर के साथ देखा गया। इसको लेकर लिब्लू के फैंस नाराज हैं, कह रहे हैं एम्बापे नेशनल टीम से ज्यादा अपने पर्सनल कमिटमेंट की ओर ध्यान दे रहा है। अफेयर आस्वीव। सो सभी लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं। विदिता आप भी चुन लीजिए किसको सपोर्ट करेंगे।
1: हा हा हा।
0: अगर हमसे पूछे तो फेसबुक पर मैंने पोस्ट भी डाला सुबह सुबह,
1: okay.
0: दिल कहता है ब्राजील या इंग्लैंड
1: मेबी,
0: और दिमाग कहता है फ्रांस या स्पेन। डार्क होर्स नॉर्वे।
1: कंफ्यूज कर रहे हो।
0: लेट्स सी व्हाट विल हैपन। एंजॉय द वर्ल्ड कप आज से शुरू हो रहा है विद मेक्सिको वर्सेस साउथ अफ्रीका। हैव ए वंडरफुल वर्ल्ड कप 2026 अहेड।
1: थैंक यू अरविंद, थैंक यू। लेकिन जाते जाते आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया। ब्राजील तो आपको पता है हमेशा से मेरा फेवरेट ही रहा है, लेकिन अभी जब आपने फ्रांस बोला ना तो कुछ भी हो सकता है। वेल यू नेवर नो। थैंक यू अरविंद।
2: फीफा वर्ल्ड कप 2026 11 जून से 19 जुलाई। कैच ऑल द न्यूज़, व्यूज, प्रीव्यूज एंड लेटेस्ट अपडेट्स।

0: गाना तो वही है पुराना, लेकिन आया है एक नए अंदाज में. होप यू आर हैविंग अ गुड टाइम हमारे साथ. मॉर्निंग बीट रेडियो मस्ती पर विदिता का साथ है. आपकी डेडिकेशंस थोड़ी देर में पहले बात कर ली कुछ हमारी हेल्थ की.
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: देखो भाई, अभी विंटर का सीजन आ ही गया है. कितने सारे लोग हैं, सर्दी खांसी जुकाम सबको हो रहा है, फीवर हो रहा है, और ऐसे में आपको अपने हेल्थ के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है. और जब ठंड का मौसम आता है तो अपने साथ साथ कितने सारे हेल्थ इश्यूज भी बढ़ सकते हैं. तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा अगर अपने आप पर ध्यान दें तो हो सकता है कि इस विंटर के इन बीमारियों से आप थोड़े अपने आप को दूर रख सके. पहली बात तो यह है कि ठंड में प्यास कम लगती है, लेकिन बॉडी को पानी की उतनी ही ज़रूरत होती है जितना हमें समर में होती है. सो 8 से 10 ग्लास पानी कम से कम आप ज़रूर पिए, हो सके तो वार्म पानी जो है उसको पिए आप. साथ में आपको चाहिए कि आप जो इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स हैं अपने डाइट में विटामिन सी रिच फ्रूट्स ग्रीन वेजिटेबल्स नट्स सीजनल फूड्स शामिल करें. ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है. तीसरी चीज़ ये है कि यू हैव टू कीप ऑन मूविंग. कोल्ड वेदर की वजह से एक्टिव रहना मुश्किल लग सकता है, लेकिन डेली 20-15 मिनट कम से कम 15 मिनट के लिए अगर आप थोड़ा सा वॉक करें तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत फायदेमंद होगा. एंड साथ में आपको चाहिए कि यू हैव टू प्रोटेक्ट योर स्किन. विंटर में स्किन ड्राई हो सकती हैं तो मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाएं और जेंटल सोप से यूज़ करें और बहुत गर्म पानी से नहाने से बचें. ठीक है, कुछ लोग कहते हैं सर्दी का मौसम है पानी गर्म बहुत गर्म, नहीं, यही तो प्रॉब्लम होता है. तभी तो आपको चाहिए कि आप ज़्यादा गर्म पानी को अवॉइड करें.

0: और हाँ, रात को सोना भी ज़रूरी होता है। ये जो आप लोग पता नहीं घंटों अपने मोबाइल के साथ रहते हो, ये बहुत गलत चीज़ है। रात को आपको अच्छे से सोना चाहिए। कम से कम 7-8 घंटे की नींद अगर आपको मिल जाता है तो कमाल हो जाता है। तो हमारी बातों पे ध्यान दीजिएगा ज़रूर। एंड आई होप यू हैविंग अ गुड गुड गुड मॉर्निंग।
1: मॉर्निंग बीट RM2 Radio Musti in the mix.
2: He's a very...

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: अब मैं भी तो वही बोल रही हूँ किथे चले इत्थे आ बैठो चाय वाय पियो हमारे साथ हमारे गाने एंजॉय करो देखो भाग के भी आ गया
3: गुड मॉर्निंग लेकिन ये गलत बात है खाली चाय देखो तेरे संग एक सिंपल सी कॉफी भी केक देती है तो चाय की थोड़ी सी कॉफी हो जाए तो मजा आएगा ना
2: तो चाय के साथ बिस्किट भी चाहिए
3: नहीं देखो इतना आगे मत जाओ एक लड़की को कॉफी का पिला दी अब चाय बिस्किट केक नहीं
2: ये ब्रेकफास्ट का टाइम होता है
3: हाँ ठीक है तो मैं करके आया हूँ ना तुम्हारी बारी अब लंच आगे करो
2: मैं लंच क्यों करूं मैं तो ब्रेकफास्ट करूं
3: ये कल का ब्रेकफास्ट ये जो छूटा हुआ आज खा लो
2: मैं मारूंगी इसको ये तो आज पीटेगा मेरे साथ
3: देखो आज पीटने पीटने की बात नहीं है ऐसा है कि जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर अभी खाली वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं नॉट टू फॉरगेट एमबीसी प्ले

0: को डाउनलोड करना है, जितनी भी जानकारी आपको चाहिए यहाँ पर हमारी हेल्पलाइन डेस्क है और आपको बता रहे हैं हम कैसे उसको डाउनलोड करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं सारे मैचेस वर्ल्ड कप के, सारी जानकारी तुम सुबह से दे रही हो वर्ल्ड कप मैगजीन।
1: एक्चुअली अरविंद को पता है कि मुझे ना ब्राजील ज्यादा पसंद है, आई मीन मेरा फेवरेट है, तो उन्होंने बोला हाँ विदिता क्या पसंद है आपको, हाँ ब्राजील, फिर उसके बाद उन्होंने फ्रांस मेरे दिमाग में डाल दिया ना। देखो पसंद तो मुझे ब्राजील ही है लेकिन जीतेगा कौन?
0: हाँ मैंने पूछा था कौन जीतेगा, निलमनी सिंपली जर्मनी।

0: होती है फीलिंग्स फीलिंग्स बोला
1: हाँ
0: फीलिंग्स होता है ना
1: वो फील होनी चाहिए ना तभी उसके बाद फीलिंग्स आती है। अरे दीदी तुम अभी चाय वाय की बात करती है लेकिन बताओ वो कहते हैं कि हर कोई अलग अलग पसंद करता है कोई दूध के साथ कोई ऐसी काली चाय कोई इन्फ्यूजन।
0: मैं तो अभी भी ताना मारती हूँ नीतू को।
1: क्या
0: मैं वो चाय पीती थी पहले तो फिर उसके बाद उसने शक्कर निकाल दिया उसके बाद दूध निकाल दिया अब सिर्फ वो डिप करती है तो मैंने बोला तू ना टी बैग अपने मुँह में रख और टाइम टू टाइम गर्म पानी पिया कर तो हो जाएगा।
1: लेकिन लेकिन ये सब करना सुरक्षित नहीं है। अच्छा सबसे सुरक्षित चाय क्या है तुम्हें पता है सबसे सुरक्षित?
0: आई डोंट नो ग्रीन टी
1: सेफ्टी।
0: मैं जा रही हूँ इससे पहले कि मेरा दिमाग और
1: इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं सीधा बोल नहीं सकता तुम जाओ देखो थोड़ा खा पी के आओ और मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में 9 से 12 के बीच में जहाँ पर राशि होगी कुछ मस्ती होगी ढेर सारी कंटिन्यू टिल 12।
0: ऑलराइट गाइस अब से मुलाकात करूंगी मंडे मॉर्निंग 7 बजे ख्याल रखिएगा बाय बाय टेक केयर।
2: Morning beat.
3: Oh God! One more remix.
2: A good beat for your morning show.
4: RM2 Radio Musti in the mix.

चलिए चलते चलते हैप्पी बर्थडे तो हमें विश करना था और ये है दनिष्ठा हरेल, उनको हैप्पी हैप्पी बर्थडे विशेस कमिंग फ्रॉम मामा रोशनी, पापा कोंते, साथ में सिस्टर हनप्रिया, संगीता, दामन, वर्षना और बुदारू और हरेल फैमिली की ओर से विशिंग दनिष्ठा वेरी हैप्पी बर्थडे। इसको विकास को लगता है ताली बजाने से उसको केक मिलेगा। चलो ठीक है, खिलाते हैं केक।

0: अरब लीजिए पूजा सुकालू से समाचार सुनिए। नमस्कार शुभ पूजा।
1: नमस्कार आप सभी को। समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। जिन परिवारों व घरों को माओवाकवा जलाशय से पानी की आपूर्ति होती है, अगले सप्ताह से उन्हें कई घंटों तक पानी की कटौती जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। ये जलाशय पिछले कुछ महीनों में हुई कम बारिश से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। इसका जल स्तर करीब 45% है। दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन आज

0: गुरुवार से शुरू हो रहा है फीफा विश्व कप 2026। मेक्सिको, अमेरिका और कनाडा द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित फीफा विश्व कप 2026 में पहली बार 48 राष्ट्रीय टीमें भाग लेंगी। उद्घाटन मैच मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच मेक्सिको सिटी के प्रतिष्ठित आज़टेका स्टेडियम में खेला जाएगा। उद्घाटन समारोह के बाद ये मैच मौसम समय अनुसार रात के 11 बजे से शुरू होगा। और एमबीसी प्ले पर फीफा विश्व कप 2026 का प्रसारण। फुटबॉल प्रेमी फीफा विश्व कप 2026 के सभी मैच एमबीसी प्ले पर देख सकेंगे। सब्सक्रिप्शन यानी सदस्यता लेने के लिए उपयोगकर्ता को ऐप खोलना होगा, टीवी सेक्शन में जाना होगा और न्यू वर्ल्ड टीवी चैनलों में से किसी एक का चयन करना होगा। इसके बाद एक मैसेज दिखाई देगा जिसमें खाते को रिचार्ज करने के लिए कहा जाएगा। फिर 60 दिनों वाला पैकेज चुने, प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करें और सुरक्षित पेमेंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी पसंद का भुगतान तरीका चुनकर पेमेंट पूरा करें। पेमेंट सफलतापूर्वक हो जाने के बाद न्यू वर्ल्ड टीवी चैनल ऐप में उपलब्ध हो जाएंगे। इसके बाद ग्राहक प्रतियोगिता के सभी 104 मैचों का सीधा प्रसारण अपने मोबाइल फोन, टैबलेट, कंप्यूटर या स्मार्ट टीवी पर देख सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप एमबीसी हेल्प डेस्क से इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 4333135, 4333295, 4333145 या फिर 5944680000। सामाजिक फंड्स के सुशासन यानी गवर्नेंस के बारे में पूछे जाने पर सोशल इंटीग्रेशन मंत्री अशोक सुभो ने राष्ट्रीय सभा में इस विषय पर अपनी बात रखी थी। नेशनल सोशल इंक्लूजन फाउंडेशन ने लाभार्थी गैर सरकारी संगठनों के चयन की अपनी प्रक्रिया का बचाव किया है। इसकी अध्यक्षा कैरोलिन फिट्ज जिबों के अनुसार प्रत्येक आवेदन पहले प्रशासनिक जांच से गुजरता है, उसके बाद परियोजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन किया जाता है, फिर इन प्रस्तावों की समीक्षा संबंधित शासन निकायों द्वारा की जाती है और अंततः बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्वीकृति के बाद ही उन्हें मंजूरी दी जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि पारदर्शिता को और मजबूत किया गया है, विशेष रूप से वित्तीय सहायता की राशि और लाभार्थियों के नाम सार्वजनिक करने के माध्यम से। विदेश में ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में स्थित अमरीकी ठिकानों पर हमला किया है। ये कदम अमरीका द्वारा किए गए ताज़ा हमलों के जवाब में उठाया गया है जो उस समय हुए जब अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वे देश पर कड़ा प्रहार करेंगे। तो इन्हीं खबरों के साथ है समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार और शुभ दिन।
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: ओए इस दिल में बजी गिटार, लेकिन सुबह सुबह होना तैयार, जैसे चढ़ जाता है बुखार ऐसे मौसम के अंदर। थोड़ी थोड़ी ठंड है और आंखें अभी भी बंद है, हालांकि काफी लोग हैं जो निकल पड़े हैं और अपनी मंजिल पर पहुंचने ही वाले हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, सभी का स्वागत है। वॉल्यूम आगे बढ़ाने का, ऊपर चढ़ाने का वक्त आ चुका है, बिकॉज वी राइट हियर बॉलीवुड स्टेशन, जो आपकी जिंदगी में स्पार्कल ऐड करने के लिए बिल्कुल तैयार। हर दिन कोशिश कि आपका दिन स्पेशल हो और साथ साथ में ऐसे कुछ लम्हे हो जो आपको यादगार लगे। राइट, सो टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ साथ बॉलीवुड की मस्ती के साथ, वो लोग जो लेट हो गए और सुबह सुबह ये गाना गा रहे हैं कि कहाँ पे जाते जाते काफ़ी हो गई,

और वहीं पर अंतिश साथ देने हमारा स्विट्जरलैंड से और ये कह रहे हैं कि ठीक है सारी टीम्स के बीच में स्विट्जरलैंड को मत भूलो, ये कुछ भी हो सकता है ना, कमाल की टीम्स है। और सारी जानकारी सारी अपडेट्स आपको मिलेंगे यहीं पर। जाना है कहां, ये है संगीत का जहां। लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑल हैपनिंग ऑन आरएम2 रेडियो मस्त मॉर्निंग शो।

0: It's like the way it goes. Hi.
1: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
0: छह साहब जान लेते सितारों की चाल और शुरुआत करते हैं विद
2: एरीज मेष राशि।
0: आज अंदर एक गजब की ऊर्जा और उत्साह देखने को मिलेगा। मन में कुछ नया करने की प्रेरणा जागेगी। उसका असर आपके काम या बिजनेस हो दोनों में साफ नजर आने वाले हैं। अधूरे काम तेजी से पूरे होंगे और कारोबार में रफ्तार आएगी। अगर किसी नई पार्टनरशिप का विचार चल रहा है तो थोड़ा ठहर कर फैसला लें, फिर डिसीजन लें।
2: टॉरस वृषभ राशि।
0: आज मन थोड़ा उलझा उलझा रह सकता है, कभी कभी हो जाता है डिस्ट्रैक्शन वाला काम। किसी काम को लेकर या डर हो, असमंजस हो, कोई बेचैनी हो, लेकिन धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। किसी भी बात को आकर आप जल्दबाजी में ना समझ लें। भाई होता ना कभी कभी कुछ देखा कुछ सुना लेकिन वो सच है कि नहीं। और प्रॉपर्टी के मामले में आपके पक्ष में जा सकता है डिसीजन, सो जो भी है एक्सपर्ट एडवाइस लेनी पड़े तो जरूर लें।
2: जेमिनी मिथुन राशि।
0: आर्थिक स्थिति मजबूत होती नजर आ रही है, आय बढ़ने के मौके मिलेंगे और भविष्य को लेकर आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। अब भाई परिवार की बातों को घर तक ही सीमित रखें, वरना छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले सकती हैं।
2: कैंसर कर्क राशि।
0: आज का दिन उन्नति प्रगति और सहयोग से भरा रहेगा। वरिष्ठ लोगों का साथ मिलने से काम तेजी से पूरे होंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत करने में आप बिल्कुल सफल होंगे। भाई कोई पुराना दोस्त अचानक से मिल जाए तो बहुत सारी बातें होती है ना, यादें ताजा होंगी और अच्छा समय भी बीतेगा।
2: लियो सिंह राशि।
0: लियो जो भी काम मिले उसको समय रहते कर दियो। वैसे तो कुछ काम है जो अटके रहते हैं लेकिन वो आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। अगर किसी काम में रुकावट थी तो अब रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। दूसरों के मामले में ज्यादा दखल देने से बचें क्योंकि आप अपनी एक्सपर्ट एडवाइस लेके जाएंगे और निराश होकर वापस आएंगे।
2: वर्गो कन्या राशि।
0: संतुलन और सावधानी ये आज के कीवर्ड्स होंगे। संतान की संगति पर नजर रखें और वाहन चलाते समय भी पूरी सतर्कता बरतें क्योंकि कभी कभी आप इधर से उधर देखने में बिजी हो जाएं और लेन तो कहीं और ही ले जा रही है। लेन की बात करें तो पुरानी लेन देन का जो बोझ है वो भी आप कम करने में खुश होंगे। आप शौक और पसंद की चीज़ों पर खर्च करने का जो मन बना चुके हैं वो भी ठीक है, लेकिन प्रेम जीवन में मिठास बनी रहेगी और साथ साथ में दूसरे को सरप्राइज करते रहें।
2: लिब्रा तुला राशि।

दिन सुकून और अपनापन लेकर आएगा, जीवन साथी का साथ आपको मानसिक मजबूती देगा और रिश्तों में प्यार बढ़ेगा। संतान आपकी उम्मीद पर खरी उतरने की कोशिश करेगी, वेरी गुड। छोटे बच्चों के लिए कुछ खास खरीदने का मन बनेगा, उनकी जो मुस्कान है

0: मजबूत रहेगी और नौकरी की तलाश कर रहे जो लोग हैं उनको अच्छी खबर मिल सकती है। बिजनेस से जुड़ा कोई काम आपको यात्रा पे ले जा सकता है। भाई गुस्से पर पूरा नियंत्रण, नहीं तो भटक जाएगा आपका मन।
1: सजिटेरियस धनु राशि।
0: व्यापार और करियर दोनों के लिए अच्छा रहने वाला दिन। सेहत में सुधार महसूस होगा लेकिन धन उधार लेने से बचना बेहतर रहेगा। कार्यस्थल पर आप अपनी बात को साफ साफ रखें क्योंकि कहना बहुत चाहते हैं, करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन सही तरह से उसको रखना, समझाना भाई ये भी जरूरी है। घूमने फिरने का प्लान बना सकते हैं और माता पिता का आशीर्वाद आपके लिए शुभ रहने वाला है।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
0: सेहत के मामले में राहत मिलेगी और माता पिता का आशीर्वाद आपके लिए सौभाग्य लेकर आएगा। रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है। जिम्मेदारियों को टालने से बचें भाई, जो काम है वो आज ही संभालें, कल पर ना टालें। संतान की भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे और इससे जो रिश्ते हैं ना, जो बीच में गैप्स थे वो पूरे होंगे, रिश्ते मजबूत होंगे।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि।
0: आज मेहनत का फल साफ नजर आने वाला है और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी जिससे बड़े फैसले लेने में आसानी होगी। नौकरी में कुछ नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। पार्टनरशिप से जुड़े काम में कागजी प्रक्रिया ध्यान से पूरी करें, जो भी डॉटेड लाइन पे साइन करें देख ले रूल्स एंड रेगुलेशंस कंडीशंस।
1: पाइसेस मीन राशि।
0: ओह यस, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये पाइसेस आज का दिन पॉजिटिव परिणाम रिजल्ट लेकर आने वाला दिन है। समझदारी से किया हुआ जो निवेश है अच्छा फायदा दे सकता है। बिजनेस में सफलता के संकेत है और रुका हुआ धन वापस मिलने से राहत मिलेगी। प्रेम जीवन में नई खुशियां आएंगी और साथी का साथ मन को सुकून देगा।
2: Your daily horoscope, RM2, Radio Musti. You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got... You're listening to Musti Mornings.
3: Musti Morning Show.
2: Stay tuned, stay musty. Radio Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: चलो थोड़ी सी बॉलीवुड की बात कर लेते हैं और शुक्रवार आने वाला है, बयास हज़े और कल फ्राइडे, और इसी के साथ हमारे सिनेमाघरों में आने वाली है बहुत सारी मूवीज। इम्तियाज अली की मैं वापस आऊंगा, कंगना रनौत की भारत भाग्य विधाता और मनोज बाजपेयी की गवर्नर, जहां पर तीन बड़ी हिंदी रिलीज होने वाली है, वहीं पर विक्रम भट्ट वो भी आ गए हॉन्टेड का नया पार्ट हॉन्टेड 3D के साथ। लेकिन बॉलीवुड के दीवाने यहां पर रुकने वाले क्योंकि कुछ और मूवीज हैं जैसे क्राइम थ्रिलर द नर्मदा स्टोरी और वहीं पर सहेलियां, दो सहेलियां साथ आती हैं हीर सारा। चलिए अगर बड़ी मूवीज की बात करें तो मैं वापस आऊंगा, एक पीरियड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसमें इम्तियाज अली ने उसने डायरेक्शन किया है। फिल्म बंटवारे के समय पंजाब पर आधारित है और इसमें दिलजीत दोसांझ है, वेदांग रैना और साथ साथ में है शर्वरी वाघ। अलग अलग पीढ़ियों के बीच प्यार, यादें और रिश्तों की कहानी है और वहीं पर गवर्नर मनोज बाजपेयी इसके अंदर आने वाले हैं और विपुल शाह इसके प्रोड्यूसर हैं, जबकि फिल्म में अदा शर्मा भी हैं। पॉलिटिकल फाइनेंशियल थ्रिलर फिल्म है, भारतीय इतिहास की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। वहीं पर आ गई है भारत भाग्य विधाता। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, इसलिए क्योंकि कंगना रनौत लेकर आ रही है एक हिम्मत और एकता को दिखाने वाली ऐतिहासिक हिंदी ड्रामा फिल्म। 26/11 में मुंबई आतंकी हमलों के दौरान स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ सर्विसेज से जुड़े कुछ नाम थे जिनको सम्मान दिया जाना चाहिए, लेकिन वो काफ़ी कम चर्चा हुई। उसी में वो दिखाई कि कैसे उन्होंने अपनी बहादुरी से बचाए 400 मरीज अपनी जान पर खेलकर। कहानी कुछ अलग ही है, अंदाज है बिल्कुल नया। लेकिन साहब अगर RM2 की बात करें तो गाने नए पुराने आए हैं यहाँ पे चलाने।
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

आइए जानते हैं एमबीसी प्ले पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका। स्टेप वन, सब्सक्राइबर को पहले एमबीसी प्ले ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर मिप्स पेमेंट पोर्टल। स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि

जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं, सो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि OTP SMS या ईमेल द्वारा। ये OTP आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या OTP के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द MBC प्ले एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा MBC प्ले होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: ये जो वर्ल्ड कप का फीवर है सबके ऊपर चढ़ी गया है। अपनी अपनी टीम्स होगी, जर्मनी से लेकर स्विट्जरलैंड से लेकर इंग्लिश फुटबॉल टीम तो है ही है, अर्जेंटीना और बहुत सारी ऐसी टीम्स। लेकिन आपको बताएं कि एनबीसी टीवी पर भी आपको मैचेस दिखाए जाएंगे और वहीं पर आप अगर सारे मैचेस देखना चाहते हैं तो एनबीसी प्ले 1.0 आपको बताई है। वैसे बहुत सारे प्लान्स भी बन रहे होंगे जहां पर दोस्त वोस्त प्लान करोगे, भाई ऐसा है शाम को देखते हैं मैच साथ में मिलकर, अच्छी बात है। लेकिन याद रखिए कि जब आप गाड़ी में जा रहे हैं तो फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, आपको बताइए, बी वेरी केयरफुल। हाँ, रेडियो ऑन रखिए, बाकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। जैसे मैंने कहा कि आज की रात होना है क्या, डू सेंड मी योर मैसेजेस, बताइए कि आपकी फेवरेट टीम क्या है और आपको क्या लगता है कितने चांसेस आपकी टीम के साथ दे रही है। कितने जाना हो फ्लैग से प्लीज अगला गाना जो सिल्विया यूवी कृषि सुसान फैमिली है फ्लैग से, गॉड ब्लेस आपको भी, थैंक यू। और वहीं पर कोमल मोहित, उनका बर्थडे है, सो बहुत सारा प्यार। और ये मामा लक्ष्मी की तरफ से पापा संजय से जानवी, थैंक यू सो मच अपनी खुशी यहाँ पर शेयर करने के लिए। और ये आलेश कहते हैं कि एमबीसी टीम, अरे म्यूजिक या स्पोर्ट्स, सही पहचाना। 24/7 आप ही के साथ, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेजेस।

0: This one goes out to Avina और ये है best friend रवि की तरफ से happy happy birthday and आपको बताएं कि अगले घंटे के अंदर बिल्कुल set बिल्कुल तैयार और बात करेंगे screen time की वो इसलिए क्योंकि दिमाग पर असर पड़ता है और साथ में क्या होता है सब बात करेंगे इसके बारे में बढ़िया ना कि जहाँ पर म्यूजिक की बात होती है वहीं पर हेल्थ से रिलेटेड कुछ और बातें हम शामिल करते हैं इस प्रोग्राम में वैसे क्या रखा नाम है लेकिन आप कहते तो बता ही देता हूँ मस्त मॉर्निंग शो कंटिन्यूज टिल 12 स्टे ट्यून्ड
1: RM2 रेडियो मस्ती

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: Welcome to RM2
0: Radio Masti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2 Radio Masti.
0: Radio Masti.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Masti.
4: 11th of June, now it's Thursday, then time check. It's at 10 a.m. स्टूडियो में आगे पूजा उनसे मिलते हैं जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार. नमस्कार.
5: नमस्कार विकास, सभी को मेरा नमस्कार. माओवा का जलाशय से पानी मिलने वाले परिवार अगले सप्ताह से कई घंटों तक पानी की कटौती का सामना कर सकते हैं. प्रभावित इलाके बुबासर रोजहिल कचोबोन वाक्वा क्यूपिप मुका सैंपिया रिबियानो हैं. जलाशय की स्थिति गंभीर है. वर्तमान जल स्तर 45% से थोड़ा अधिक, जबकि पूरे मॉरिशस में औसत 64% है. 2025 की तुलना में 20% कम. CWA में पंजीकृत 4,15,000 घरों में से लगभग 1,50,000 घर प्रभावित होंगे. कटौती की अवधि 1 से 4 घंटे या उससे अधिक. अंतिम निर्णय बहुत जल्द लिया जाएगा. इसका उद्देश्य है जल संकट को और गंभीर होने से रोकना. एमबीसी प्ले पर फुटबॉल प्रेमी फीफा विश्व कप 2026 के सभी मैच देख सकेंगे. सदस्यता लेने के लिए उपयोगकर्ता को ऐप में जाकर टीवी सेक्शन में न्यू वर्ल्ड टीवी चैनल चुनना होगा. इसके बाद 60 दिनों का पैकेज चुनकर सुरक्षित भुगतान प्रक्रिया पूरी करनी होगी. भुगतान के बाद चैनल ऐप में सक्रिय हो जाएंगे और दर्शक कुल 104 मैच मोबाइल फोन, टैबलेट, कंप्यूटर या स्मार्ट टीवी पर लाइव देख सकेंगे. अधिक जानकारी के लिए एमबीसी हेल्प डेस्क से संपर्क किया जा सकता है. फुटबॉल प्रेमी कहीं से भी और किसी भी समय विश्व कप 2026 के सभी मैच लाइव देख सकेंगे. कोलन कैंसर मॉरिशस में सबसे आम कैंसरों में से एक है. समय रहते पता चल जाए तो इसका उपचार और ठीक होने की संभावना बहुत अधिक होती है. पापीम और स्वास्थ्य विशेषज्ञ लोगों को रोकथाम और प्रारंभिक जांच यानी अर्ली स्क्रीनिंग के महत्व पर जोर दे रहे हैं. विदेश में ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में स्थित अमरीकी ठिकानों पर हमला किया है. ये कदम अमरीका द्वारा किए गए ताज़ा हमलों के जवाब में उठाया गया है, जो उस समय हुए जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वे देश पर कड़ा प्रहार करेंगे. अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उसने अपनी लगातार दूसरे दिन की आत्मरक्षा कार्रवाई पूरी कर ली है. तो इन्हीं खबरों के साथ है समाचार समाप्त हुए. कुछ ही समय में शोक समाचार. Rue Aleppo Street, Kangyulouf, Port Louis, में 70 साल की 70 years old, Mrs. Farida Bibi Chamrou, पैदाशी नाम पुरदिल, इंतकाल कर गई हैं. इनका जनाजा आज सपहर के तीन बजे इनके मकान Rue Aleppo Street, Kangyulouf, Port Louis से उठाकर दफनाने के लिए रिश्तिया का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा. Funeral today at 3 p.m. और डॉक्टर लोकनाथ लेन सिजिया मिल फॉरेस्ट साइड में, डॉक्टर लोकनाथ लेन सिजिया मिल फॉरेस्ट साइड में 60 साल के 60 इयर्स ओल्ड श्री सुमिंदत रामदास की मृत्यु हो गई है. इनके अर्थे आज दिन के 1 बजे इनके मकान डॉक्टर लोकनाथ लेन सिजिया मिल फॉरेस्ट साइड से उठाकर सिजिया मिल फॉरेस्ट साइड किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टूडे एट 1 PM. शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है.
0: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: वो गाना बहुत कमाल का है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, यानी कि जो भी मुश्किलें आती हैं वो चुन लो, सुन लो और उसके बाद आगे निकल लो एक सबक लेकर। वैसे ये कहते हैं कि आप अगर काम चुनते हैं तो थोड़ा मुश्किल ही चुने, इसलिए क्योंकि अगर काम ना भी हुआ तो सबक तो मिलेगा, कुछ सीखने का मौका तो मिलेगा, कुछ नया करने का, एक्साइटिंग करने का, हर दिन कुछ अलग, हर दिन कुछ नया। बस अपने आप से पूछे कि वो कब था जब आपने कुछ नया किया था, आज के दिन हो सकता है कुछ नया। एक ही चीज़ को करने के कुछ और भी तरीके होते हैं और अभी तो फिलहाल हमारी कोशिश यही रहती है कि नए गाने पुराने गाने सबको मिक्स करके आपके साथ जुड़ जाएं एंड कंटिन्यूस टिल 12 PM। उसके बाद रेट्रो रिदम, जहां पर पुराने गानों का एक कारवां चलने वाला है, लेकिन अभी इस घंटे के अंदर बात करेंगे कुछ हेल्थ से रिलेटेड बातों के बारे में। अच्छा, ऑनलाइन रहने की आदत दिमाग को बुरी तरह से थका सकती है, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं बता दूं थोड़ी देर में।
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: ब्यूटीफुल ट्रैक नहीं। वैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी वक्त हो लेकिन ऐसे गाने सुनकर दिल को चैन सुकून मिल जाता है। प्रीति, आई होप यू एंजॉयड दिस वन गोइंग ऑन एट द मोमेंट। 17 पास्ट 7 इन द मॉर्निंग, आरएम 2 पर।
1: वेलकम टू आरएम 2, मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।
0: जैसे आप कुछ टाइम पहले बात करते कि ऑनलाइन रहने की आदत दिमाग को बुरी तरह से थका सकती है, अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि सोशल मीडिया आज के समय में एक बहुत ही मजबूत हथियार बन चुका है, जहां पर टैलेंट को शो करना हो, नए स्किल्स को सीखना हो, दुनिया भर में चल रही चीज़ों के बारे में जानना हो, अवेयर रहना हो। लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ के पॉजिटिव तो नेगेटिव दोनों साइड्स होते हैं, वैसे ही इंटरनेट भी है, जहाँ पर एक तरफ आप खुद को सोशल मीडिया के जरिए बहुत कुछ सीखने का मौका दे रहे हैं, वहीं पर दूसरी ओर ज़्यादा इस्तेमाल आपके दिमाग को ओवरलोड करने का काम करता है। दिमाग इतना ओवरलोड हो जाता है कि आपको समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है, जिसके कारण इसकी फंक्शनिंग या फिर नेगेटिव जो उसके एस्पेक्ट्स हैं वो शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है चलिए जानते हैं। बड़ों से लेकर छोटे बच्चों तक स्क्रीन टाइम में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। लोग घंटों अपने फ़ोन, लैपटॉप या टैबलेट के सामने गुजार देते हैं बिना ये समझे कि उनका दिमाग बुरी तरह से थक रहा है। भाई, डॉक्टर का कहना है कि बीते कुछ सालों में स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ चुका है, उससे मेंटल और इमोशनल थकान की एक बड़ी वजह समस्या सामने आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आपका ब्रेन लंबे समय तक स्क्रीन के संपर्क में रहता है तो उसे लगातार बहुत अधिक मात्रा में जानकारी को प्रोसेस करना पड़ता है। ये लगातार लोड बढ़ाती जाती है और दिमाग आपका थक जाता है। ओहो भाई, ऐसा है कि दिमाग के अंदर इतनी सारी चीज़ें प्रोसेस हो रही हैं और कभी कभी लगता है जैसे फॉगिंग हो गई है ना, दिमाग की ब्रेन फॉगिंग। हाँ, तो क्या करें, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम सोच सकते हैं, इसको हम जारी रखने वाले हैं। अगर आप भी ये करते हैं कि 3-4 घंटे लगे तो लगे हुए हैं, तो अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का।
1: RM2 Radio Musti

0: hear me out now. I wanna tell you, baby, all that you mean to me. It ain't no small thing. Cause you're big in my heart, and that's where you always be. Forever girl, whenever girl. Just you, just me.
1: RM2
2: Radio Musti.
1: Fashion tips powered by Halkori Fashion, house of ready-made garments. Welcome to RM2
2: Musti Mornings Radio Musti.
3: Yes, talking about some fashion tips, so बहुत जरूरी है कि आप जहाँ पर comfortable दिखें वहीं पर protected भी रहें. मौसम change हो रहा है, then by then कहानी change होती जा रही है. Temperature कभी up, कभी down, और आप करते हैं गुस्सा, कभी करते हैं frown. तो भाई ऐसा ही कि जिंदगी के अंदर चीजों को काफी सिंपल रखें और एक मिरर चेक जरूर कर लें. इससे पहले कि घर से निकले एक मिरर चेक कर लें, देखें आपकी स्टाइलिंग बिल्कुल ठीक बैठ रही है, सब कुछ बैलेंस में ना. भाई ऐसा होता है कभी कभी आप सोच नहीं पाते कि आपने अपने स्टाइल को तो ज़रूर देख लिया, चाहे कलर्स की बात हो, लेकिन जाने से पहले ये देख लें कि ये ना हो कि आप लूज़ टॉप पहन रखें और बॉटम काफ़ी फिटेड या वाइस वर्सा. तो बस बैलेंस रखना बहुत ही स्टाइलिश हो जाता है. एक अम्ब्रेला बहुत काम आती है, छोटी सी बहुत ही कलरफुल अम्ब्रेला. ऐसा लगता है जैसे कोई छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं. बढ़िया जैसे अम्ब्रेला, चाहे धूप हो, बरसात हो, कैसे मौसम हालात हो, ये काम में आ ही जाती है. स्टाइलिश, ट्रेंडी और साथ साथ में फैशन सेंस को भी जोड़ती हुई.
1: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, house of ready-made garments. RM2
2: Radio Musti.

0: वैसे कितना आसान होता है ना एक अप्लायंस को लेकर उसको रीसेट करना, लेकिन गाने सुनकर जो अपने दिमाग की रीसेटिंग होती है वो बहुत ही कमाल। लेडीज एंड जेंटलमैन, लिसनिंग टू RM2 रेडियो मस्ती, और थोड़ी देर बात करने वाले हैं कि ऑन स्क्रीन आप जितना टाइम बिताते हैं अपने दिमाग को क्यों इतना सताते हैं। राइट डिटेल्स एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कमिंग अप राइट नेक्स्ट ऑन
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: अरे इसी की तो बात कर रहा हूँ, टच कभी ज्यादा हो जाता है, यानी कि टू मच।
1: वेलकम टू RM2
2: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।
0: कभी कभी ये जो सिचुएशन है कभी चेंज हो जाती है, यानी कि हम बात कर रहे हैं स्मार्टफोन्स की, टैबलेट्स की, लैपटॉप्स की और जाने क्या क्या है। लेकिन वो लोग जो सोशल मीडिया अकाउंट चलाते हैं, अब देखिए उनको भरपूर लाइक्स चाहिए, उनको व्यूज चाहिए, तो वो एक जैसे इन्फेक्शस ही कहानी बन जाती है, हर दिन चेक करना। लोग कहते हैं कि फोन ना हो गया जैसे बच्चे का डायपर हो गया, हर बारी चेक करना पड़ता है कि कुछ हुआ क्या। राइट, ब्रेन के अलावा बहुत सारे और आपके ऑर्गन्स हैं जिन पर फर्क पड़ता है। डिजिटली अगर आप सोचें तो बहुत समय आप बिता रहे हैं, ब्रेन को थका देने बल्कि शरीर के बाकी भागों को भी थका देते हैं। आंखों पर असर पड़ता है, गर्दन और आपकी

0: पाइन पर, बहुत ही असर। इसी क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग सर झुका के, वो गाना सुना आपने ना, सर झुका के जियो ना, अपने जो आत्मविश्वास को डगमगा के जियो। तो ज़रूरी है कि आप बहुत ध्यान से रहें और ये सोचें कि आपके जो सर का जो हेड का वेट होता है वो काफ़ी होता है, वो गर्दन को झेलना पड़ता है सर। इसे आपका जो आंखों का प्रभाव है वो ये होता है कि सूखापन, बहुत ब्लर्ड विजन होती है, जलन या सरदर्द, ये आपको सिम्टम्स दिखने लगते हैं और मांसपेशियों पर भी तनाव आता है। वहीं पर लगातार कीबोर्ड टच स्क्रीन का उपयोग करते हुए कंधों और कलाइयों की मांसपेशियों में तनाव, क्योंकि रेपिटेटिव वही चल रही ना, यानी कि आपकी फोकल लेंथ वही है, आप उसी को देखे जा रहे हैं और वही टच, वही आपका थंब चलता जा रहा है, बाकी सब रुका हुआ। तो अगली बारी आप सोचें कि किस एंगल पर आप अपने फ़ोन को रखकर बस लगे हुए हैं, कितने घंटे निकल गए हैं, और ये सोचिए कि ये सबसे फ़ायदा क्या हुआ। नहीं, थोड़ी सी एंटरटेनमेंट ठीक है, लेकिन कहीं बाहर जाकर घास पर भागो, थोड़ा बच्चों के साथ समय बिताओ, अनदर अल्टरनेटिव एंटरटेनमेंट का फैक्टर।
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings. Radio Musty.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: चलिए वक्त हो रहा है और बस थोड़ी देर में हम जाएंगे सीधा 11 बजे के समाचारों की ओर, उसके बाद 11 to 12 मस्त मॉर्निंग।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: 11th of June, Thursday, at the end, time check, 11 a.m. राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट्स के साथ संक्षिप्त समाचार के साथ स्टूडियो में आ गए पूजा, उनसे मिलते हैं। नमस्कार।
4: नमस्कार विकास, से सभी को मेरा नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आज 11 जून से फीफा विश्व कप 2026 शुरू हो रहा है। पहली बार 48 राष्ट्रीय टीमें की भागीदारी होगी। उद्घाटन मैच मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैक्सिको सिटी के प्रतिष्ठित अज़्टेका स्टेडियम में खेला जाएगा। मौसम समय अनुसार ये रात के 11 बजे से शुरू होगा। विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा। और एमबीसी प्ले पर फीफा विश्व कप 2026 का प्रसारण। फुटबॉल प्रेमी फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सभी मैच एमबीसी प्ले पर देख पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए उपयोगकर्ता एमबीसी हेल्प डेस्क से इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 4333135, 4332905, 4333145 या फिर 5944680000। सामाजिक फंड्स के सुशासन यानी गवर्नेंस के बारे में पूछे जाने पर सोशल इंटीग्रेशन मंत्री अशोक सुब्रो ने राष्ट्रीय सभा में इस विषय पर अपनी बात रखी। नेशनल सोशल इंक्लूजन फाउंडेशन ने लाभार्थी गैर सरकारी संगठनों के चयन की अपनी प्रक्रिया का बचाव किया है। इसकी अध्यक्षा कैरोलिन फिट्ज़जिबो के अनुसार प्रत्येक आवेदन पहले प्रशासनिक जांच से गुजरता है, उसके बाद परियोजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन किया जाता है, फिर इन प्रस्तावों की समीक्षा संबंधी शासन निकायों द्वारा की जाती है और बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्वीकृति के बाद ही उन्हें मंजूरी दी जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि पारदर्शिता को और मजबूत किया गया है, विशेष रूप

0: से वित्तीय सहायता की राशि और लाभार्थी के नाम सार्वजनिक करने के माध्यम से। और विदेश की खबरों में, ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में स्थित अमरीकी ठिकानों पर हमला किया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उसने अपनी लगातार दूसरे दिन की आत्मरक्षा कार्रवाई पूरी कर ली है। ये हमले रातों रात किए गए और ये उस बयान के बाद हुए जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि तेहरान ने युद्ध समाप्त करने के लिए समझौता करने में बहुत देर कर दी है। तो इन्हीं खबरों के साथ है समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार। लाकावियन नंबर एक वाकुआ में, लाकावियन नंबर एक वाकुआ में 80 साल की 80 years old बीबी सारा ओलीराम, बीबी सारा ओलीराम पैदाशी नाम कोदीर और जिन्हें लोग बीबी नाम से ज़्यादा जानते थे इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज दिन के सवा एक बजे इनके शौहर मोहम्मद तुलेब ओलीराम के मकान लकावेन नंबर एक बाकुआ से उठाकर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 1:15 PM। रिया लुपू स्ट्रीट कॉयुलुफ पोर्टलिस में 70 साल की 70 years old मोहतरमा फरीदा बीबी चामरू पैदाशी नाम पुरदिल इंतकाल कर गई है। इनका जनाजा आज सपहर के तीन बजे इनके मकान रिया लुपू स्ट्रीट कॉयुलुफ पोर्टलिस से उठाकर दफनाने के लिए रिश्ते का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 3 PM। और डॉक्टर लोकनाथ हेलेन सिजिया मिल फॉरेस्ट साइड में 60 साल की 60 years old श्री सुमिन दत्त रामदास जिन्हें लोग सुमिन दत्त नाम से अधिक जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के एक बजे इनके मकान डॉक्टर लोकनाथ हेलेन सिजिया मिल फॉरेस्ट साइड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिजिया मिल फॉरेस्ट साइड कृष्णशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: ओके सेफली लैंडेड इन द थर्ड आवर 11:08. अरे 11 बजे और साथ में तारीख भी 11 है 2026 छठा महीना. म्यूजिक के बिना भी क्या जीना. लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम.
1: RM2 Radio Musty. Feel the Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: All right, back with the music, ladies and gentlemen, और 5491294. वैसे कमाल की बात है ना कि कैसे हवा में उड़ते उड़ते इसी को तो कहते हैं रेडियो वेव्स, आप तक पहुंच जाते हैं घर में, आपके परिवार में, और सभी की सभी जुड़ जाते हैं गानों के साथ. अमेजिंग. बहुत सारा प्यार भेजती हुई टू द होल टीम. जीना जी इटली से हमारे साथ दे रही हैं और कहते हैं कि बस ऐसे ही दिन चलता रहे, बहुत सारी खुशियां आपको मिलती रहे, हैव अ ब्यूटीफुल डे अहेड, और बहुत सारे वो रीजन ढूंढो स्माइल करने के. नहीं साहब, मुस्कुराते हैं लेकिन ये जो फ्री की चीज़ है ना, आप चेहरे पर नहीं लगाते हैं. इसे ज़रूरी है कि कभी इसके बारे में सोचें. मिला जी, स्वागत आपका. और अनिता जी हैं फ्लैग से और कहते हैं हैप्पी जर्नी सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए जो जा रहे हैं बेलमा बीच. अरे वाह, बीच के बीचों बीच क्या मज़ा आएगा. नहीं वैसे हम भी अगर बच्चे होते तो निकल पड़ते अपने दादा दादी नाना नानी का हाथ पकड़ के. वैसे जितने भी बच्चे हैं अपना वक्त बिताते हैं ग्रैंड पेरेंट्स के साथ. इट्स सच अ लवली फीलिंग ये जाना कि उस टाइम पर सिचुएशन कैसे होती थी. बेटा

0: अरे टाइम पर हाई किसे सुनने में कितना मजा आता है ना। और मैं ज्योति शादो बनारस से कहते अगला गाना स्पेशली टू अश्नी रेखा सुरेखा एंड मदर फैमिली के नेम आल्सो टू द RM2 टीम थैंक यू सो मच।
1: वेलकम टू RM2 मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: चल म्यूजिक जहाँ पे चलता रहता है लेकिन वहीं पर कुछ बातें होती हैं जो आपके दिमाग को थोड़ा सा हिलाती हैं डुलाती हैं और फिर बताती हैं कि सोचना तो जारी रखना चाहिए। और सोचा क्या कि अभी हम कुछ टाइम पहले बात कर रहे थे स्क्रीन की बच्चों की और कभी कभी काफ़ी मुश्किल होता है उनके हाथ से फ़ोन ले लेना स्मार्टफोन या टैबलेट ले लेना, लेकिन उनको वजह बताइए। वजह ये कि बेटा क्या सीखा, इतना टाइम निकाला तो कुछ सीखा। और वहीं पर अगर बच्चे काफ़ी मुश्किल पैदा करते हैं कि नहीं उनके हाथ से फ़ोन नहीं जाना चाहिए, तो फिर आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होना पड़ेगा उनकी बेहतरी के लिए ना। पेरेंट्स का तो रोल ही ऐसा है। चलिए रोल निभाते रहो और गाने अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप भी गुनगुनाते रहो और आपको तो रहना पड़ेगा कभी ना कभी स्मार्ट स्क्रीन और ये अप्लायंसेस के बिना। फिर आप कह सकते हैं रह लूंगा मैं

आइए जानते हैं एमबीसी प्ले पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका। स्टेप वन, सब्सक्राइबर को पहले एमबीसी प्ले ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर मिप्स पेमेंट पोर्टल। स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं तो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि ओटीपी एसएमएस या ईमेल द्वारा। ये ओटीपी आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या ओटीपी के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द एमबीसी प्ले एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा एमबीसी प्ले होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145।

0: या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800।
1: You're listening to RM2, a Radio Masti.

0: to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: और अजी बहुत सारे लोग जो किचन में समय बिताते रहते हैं और यही कहते हैं कि काश ये काम जल्दी से ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर आप ये कोशिश करें कि एक रूल बना लीजिए, यानी कि आप जैसे अब जाते हैं सोने के लिए और उससे पहले जितने भी यूटेंसिल्स हैं, जितने भी बर्तन हैं, उनको सही जगह पर लगा दिया, थोड़ी साफ सफाई कर ली, सो नेक्स्ट मॉर्निंग वो जो खुशी मिलती है ना कि सब कुछ इन प्लेस है, वो कमाल। एक छोटा सा एफर्ट और लेकर आता है एक बड़ा रिवॉर्ड, राइट। वहीं पर अगर आप अपनी चीज़ों को इधर उधर रख देते हैं तो एक चीज़ बना लीजिए, जैसे आपकी कीज़ हो गए, रिमोट कंट्रोल हो गए, ये फिर से कहाँ गया भाई, पैर तो है नहीं रिमोट कंट्रोल के। तो ऐसा कि अपने पैर चलाकर उसको वहाँ रखिए जहाँ पर उसको होना चाहिए, सो हर बारी उसको वहीं मिलेगा। और बच्चों को भी ये सीखने को मिलेगा कि यही करें। तो कोशिश कीजिए कि आप जिस सोफे पर बैठते रहते हैं उसके कुशन्स को थोड़ा घुमा के देखिए साहब, थोड़ा साफ सफाई कीजिए, नहीं तो यू नो हाउ मेनी थिंग्स, कभी कभी बैठकर खाना पीना हो या फिर और बाकी चीज़ें, रूएं से लेकर आपके बाल, इसी पर रहना सवाल कि कैसे अटक जाते हैं। तो ऐसी थोड़ी साफ सफाई रोज, इट कैन मेक अ बिग बिग डिफरेंस। और बेड टाइम से पहले एक पानी की बॉटल साइड में, बेड साइड में, वो एक सिंपल सी हैबिट और बहुत चीज़ें आसान कर देती हैं, राइट। छोटी छोटी चीज़ें लेकिन फायदा मिलता है फुल। भाई आपका साथ रहे तो यूं ही चलता रहेगा प्रोग्राम, वंडरफुल। थैंक यू सो मच आर एम टू पर टिल 12।
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.

0: RM2
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
2: चाहे 90s गाने हो या फिर कुछ अलग स्टाइल के गाने हो।

पुराने गाने लेकिन शानदार गाने एवरग्रीन गोल्डन हिट्स थोड़ी देर में गिनीशा आपके साथ रेट्रो रिदम और अभी जा रहे हैं हम एक बार फिर से वापस लौट कर आएंगे डोंट फॉरगेट आपका साथ यहाँ पर 24/7 बाकी गाना जो कह रहा है वो तो

0: Right, ladies and gentlemen, अपनी कहानी में चलने वाले जैसे आपको बताया कि बस थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार उसके बाद रेट्रो रिदम सो स्टे ट्यून एंड कीप ऑन एंजॉयिंग द म्यूजिक राइट हियर
1: RM2 रेडियो मस्ती
0: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
0: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
4: North, South,
1: 103.5.
4: East, West,
1: 96.4.
4: Center,
1: 99.4.
3: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti. Feel the Musti.
5: Check your time studio ki ghadi mein exactly noon. Aaiye sunte hain samachar Pooja ke saath. Namaskar.
6: नमस्कार गिनीशा सभी को मेरा नमस्कार 52 मॉरिशस से तीर्थयात्री हिमालय की ओर रवाना हुए हैं कल बुधवार 10 जून को वे चार धाम यात्रा के लिए रवाना हुए जो सबसे पवित्र हिंदू तीर्थ यात्रा मानी जाती है ये आध्यात्मिक यात्रा मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल्स फेडरेशन कला एवं संस्कृति मंत्रालय एयरपोर्ट्स ऑफ मॉरिशस कंपनी लिमिटेड और प्रधानमंत्री कार्यालय के सहयोग से आयोजित की गई है एमबीसी प्ले पर फुटबॉल प्रेमी फीफा विश्व कप 2026 की सभी मैच देख पाएंगे सदस्यता के लिए उपयोगकर्ता को ऐप में जाकर टीवी सेक्शन में न्यू वर्ल्ड टीवी चैनल चुनना होगा इसके बाद 60 दिनों का पैकेज चुनकर सुरक्षित भुगतान प्रक्रिया पूरी करनी होगी किसी भी जानकारी के लिए एमबीसी हेल्प डेस्क से संपर्क किया जा सकता है इन नंबरों पर 4333135 4332905 4333145 या फिर 5944680 महोबा को जलाशय से पानी मिलने वाले परिवार अगले सप्ताह से कई घंटों तक पानी की कटौती का सामना करना पड़ सकते हैं प्रभावित इलाके बुबा से रोजहिल का ट्रिबून वाकुआ क्यूपिप मोका सैंपियर रिवियनुआ है जलाशय की स्थिति गंभीर है वर्तमान जल स्तर 45% से थोड़ा अधिक जबकि पूरे मॉरिशस में औसत 64% है 2025 की तुलना में ये 20% कम है CWA में पंजीकृत 415,000 घरों में से लगभग 150,000 घर प्रभावित होंगे विदेश में अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उसने अपनी लगातार दूसरे दिन की आत्मरक्षा कार्रवाई यानी सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक्स पूरी कर ली है ये हमले रातों रात किए गए हैं और ये उस बयान के बाद हुए जिस समय ट्रंप ने

0: कहा था कि तेहरान ने युद्ध समाप्त करने के लिए समझौता करने में बहुत देर कर दी है। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार। रॉयल रोड प्लेन दिवस में 90 साल के 90 years old श्री जय नारायण रामजतन, श्री जय नारायण रामजतन जिन्हें लोग जय नाम से अधिक जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 2:30 बजे इनके मकान रॉयल रोड प्लेन दिवस से उठाकर पीतों किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 2:30 PM। लकावेन नंबर एक वाक्वा में 80 साल की 80 years old बीबी सारा ओलीराम, बीबी सारा ओलीराम पैदाशी नाम कुदीर और जिन्हें लोग बीबी नाम से ज़्यादा जानते थे इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज दिन के सवा एक बजे इनके शौहर मोहम्मद तुलेब ओलीराम के मकान लाकावियन नंबर एक वाकवा से उठाकर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 1:15 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv. Retro Rhythm.
2: RM2, Radio Musty.

तो चले जी चेकी होता है 12:17 चुके हैं और फिलहाल के लिए हेगिनिश आ गई है आप लोगों का साथ देने के लिए इन दिस ब्यूटीफुल शो एंड दैट्स योर रेट्रो रिदम. सो गुड आफ्टरनून जी, क्या हाल है हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स का. वैसे आप सुन रही हैं रेडियो मस्ती और रेट्रो रिदम को लेके हम आ गई हैं, वो शो जहां वक्त की सुई थोड़ी सी पीछे घूमती है और दिल के तार पुराने सुरों से जुड़ जाते हैं. वैसे लंच ब्रेक हो, ऑफिस का काम हो या घर की रसोई की खुशबू, हम आपके साथ हैं. लेकर आई है बॉलीवुड के वो अनमोल नगमे जो आज भी दिल को वही सुकून देते हैं. रेट्रो रिदम, जी हाँ, ये एक ऐसा शो है दोस्तों जहाँ फिल्मी कहानियों और आपकी यादों को बिल्कुल एवरग्रीन मेलोडीज को साथ लेकर चलते हैं. और आज का सफर भी कुछ ऐसा ही रहेगा आपके और हमारे बीच में. तो तैयार हो जाइए क्योंकि अगले ये दो घंटे तक हम बात करेंगे उन गीतों की जो कभी पुराने नहीं होते हैं. और शुरुआत हमने तो कर लिया है खूबसूरत गीतों के साथ और साथ साथ में आप सभी लोगों को विश करना चाहेंगे शुभाहार यानी कि बोन अपेटी टू यू माय डियर. इफ यू आर हैविंग योर लवली लवली लंच राइट नाउ, यम्मी यम्मी खाना खाते समय अगर आप हमें सुन रहे हो तो एक मैसेज ड्रॉप कर लीजिए 5499 1294 पर 5499 1294 पर.

आइए जानते हैं एमबीसी प्ले पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका। स्टेप वन, सब्सक्राइबर को पहले एमबीसी प्ले ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर मिप्स पेमेंट पोर्टल। स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं तो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि ओटीपी एसएमएस या ईमेल द्वारा। ये ओटीपी आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या ओटीपी के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द एमबीसी प्ले एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा एमबीसी प्ले होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800।

0: रेट्रो रिदम।
1: ऐसे गाने जब बजते हैं ना तो वाकई में दिल बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ठीक है मेरी जान, मुझे पता है ये गाने आपको दिल से अच्छा लग रहा है। आप अब इंतज़ार कर रही है, और भी बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत गाने तराने हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। वैसे ऐसे गीत सिर्फ गाने नहीं होते हैं, वो एक जज्बात होते हैं, यादों का खजाना होता है, जो हर रोज़ दोपहर को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक खुल जाते हैं आपके और हमारे बीच में ऑन ऑन टू रेडियो मस्ती। फिलहाल के लिए चलिए जी, लेट्स चेक आउट कौन हमें याद कर रहा है, कौन साथ दे रहा है और कहाँ से। रमेश सिंह फ्रॉम पंजाब इंडिया, वो बोलते हैं हम आपको सुन रहे हैं ऑनलाइन रेडियो, थैंक यू सो मच, साथ यू ही देते रहिए। एंड फ्रॉम द सिटी ऑफ लव वी हैव फ्रॉम पेरिस, हेलो मॉरिस, पेरिस से आप हमें सुन रहे हैं, अच्छी बात है। एक गाने की फरमाइश है आपकी वाइफ के लिए, थैंक यू सो मच मिस्टर डे फ्रॉम द सिटी ऑफ लव, कैसे हो आप, ये अगला गाना आपके लिए भी है। एंड वी हैव जाना, जाना है फ्लैग से, जाना मेरी जाना इतना लंबा मैसेजेस क्यों भेजते हो, मुझे पता आप कहाँ पे हो, अच्छी बात है जो हम कर रहे हैं आप सुन रहे हैं। अगला देखा आपका मैसेज में मुझे बाय हार्ट याद आ गया, सीमा जो अभी ये दिल उदास होता है, अच्छा मूवी सीमा से ये गाना आप सुनना पसंद करोगे। आपकी बेटी के लिए जनीता शिष्टाश्विनी सिल्विया और यूवी कृषि से उस परिवार के लिए जो

फ्लैग से हैं, साथ दे रहे हैं और आप काम पे हो, सुबह को आज टू यू एंड टू एवरीवन हु इज वर्किंग राइट नाउ. 90s का कोई खूबसूरत गाना हो जाए हमारे दोस्त प्रिया के लिए. शी इज ऑल्सो लिसनिंग राइट नाउ एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम सचिन. सचिन, ये रहा आपकी ख्वाहिश फरमाइश सराखों पर.

0: आइए जानते हैं MBC Play पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका। स्टेप वन, सब्सक्राइबर को पहले MBC Play ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर MIPS पेमेंट पोर्टल। स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं, सो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि OTP SMS या ईमेल द्वारा। ये OTP आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या OTP के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द MBC Play एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा MBC Play होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800।
1: रेट्रो रिदम,
2: बिल्कुल जी, दैट्स वन ऑफ योर मोस्ट फेवरेट शो जहाँ पे आप हाथ जाते हैं हमारा साथ देने के लिए विद दिस ब्यूटीफुल पुराने गाने। जी हाँ दोस्तों, किनिशा इज हियर जस्ट टू ब्रिंग यू बैक टू योर लवली सुविनियर्स, यानी कि दिल के कोने में जो आपने छुपा के रखा है वो यादें, गुस्ताखी माफ, हम उसको जरूर छेड़ेंगे अगले गाने के साथ। और अगला गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे टुंग टुंग के लिए। व्हाट अ ब्यूटीफुल निकनेम, पता है ना, मैं हमेशा बोलती हूँ जो दिल के करीब होते हैं, जो दिल के अंदर बस जाते हैं ना, उन्हीं को हम एक प्यारा सा निकनेम दे सकते हैं, टुंग टुंग। एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम अंजलि। अंजलि, आपने तो अपना निकनेम नहीं लिख के भेजा, ये क्या बात हुई, आप भी अपना निकनेम लिख के भेजो ना। एंड ऑल दोस्त जो साथ दे रहे हैं, जैसे कि हमारा एक लिसनर, उन्होंने बोला है ये अगला गाना चांद आनंद चंगाडू के लिए एंड आनी के लिए, थैंक यू सो मच। एंड वी हैव तनवीर आयशा।

0: Thank you so much साथ देने के लिए on RM2 Radio Masti. Check your time. It's sharp 1 p.m.
1: Welcome to RM2
2: Radio Masti.
1: North, South,
2: 103.5.
1: East, West,
2: 96.4.
1: Center,
2: 99.4.
1: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti. Feel the Musti. The Musti.
0: आइए सुनते हैं समाचार आस्था के साथ. नमस्कार.
3: नमस्कार. 1 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का. अब यदि कोई चालक वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन हाथ में इस्तेमाल करता है या मोटरसाइकिल चलाते समय फ़ोन का उपयोग करता है तो उस पर 5 अंक लगाए जाएंगे. यदि वो अदालत में मामले को चुनौती देता है और बाद में दोषी पाया जाता है तो अंक बढ़कर 10 हो जाएंगे. हालांकि हैंड्स फ्री किट और कुछ ब्लूटूथ डिवाइस की अनुमति बनी रहेगी लेकिन नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना लग सकता है. अब्सा ग्रुप ने मॉरिशस को अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के बीच एक महत्वपूर्ण वित्तीय केंद्र बताया है. प्रधानमंत्री से हुई मुलाकात के दौरान बैंकिंग ग्रुप ने निवेश व्यापार और कॉरपोरेट बैंकिंग के लिए मॉरिशस की रणनीतिक भूमिका को रेखांकित किया. ग्रुप वर्तमान में 12 अफ्रीकी देशों में सक्रिय है और 12 मिलियन से अधिक ग्राहकों को सेवाएँ प्रदान कर रहा है. अगले सप्ताह से मोवाक्वा जलाशय से पानी प्राप्त करने वाले कई इलाकों में जल आपूर्ति पर प्रतिबंध लागू किए जाएंगे. बोबासैन रुजिल का ट्रिबून वाक्वा क्यूपिप मुका सैंपियर और ब्लैक रिवर इससे प्रभावित होंगे. देश के बड़े जलाशय का जल स्तर घटकर 45% से कुछ अधिक रह गया है. मॉरिशस मडागास्कर सेशल्स और कोमोरोस ने यूरोपीय संघ के साथ उन्नत आर्थिक साझेदारी समझौते पर वार्ता पूरी कर ली है. इस समझौते से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. साथ ही मॉरिशस को यूरोप के विशाल बाजार तक विशेष पहुंच बनाए रखने में मदद मिलेगी. फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज आज मेक्सिको में होगा. उद्घाटन मुकाबले में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका के आज़टेका स्टेडियम में होगा. पहली बार वर्ल्ड कप में 48 राष्ट्रीय टीमें हिस्सा ले रही हैं. वर्ल्ड कप के साथ पानिनी एल्बम का उत्साह भी मॉरिशस में बढ़ गया है. फुटबॉल प्रेमी और संग्रहकर्ता अपने एल्बम पूरे करने के लिए स्टिकर्स का आदान प्रदान कर रहे हैं. कई लोगों के लिए ये शौक बचपन की यादों और वर्ल्ड कप के जुनून से जुड़ा हुआ है. तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सभी 104 मुकाबले एमबीसी प्ले पर सीधे देखे जा सकेंगे. सदस्यता के लिए दर्शकों को एमबीसी प्ले ऐप पर न्यू वर्ल्ड टीवी पैकेज सक्रिय करना होगा. अधिक जानकारी के लिए एमबीसी हेल्प डेस्क से संपर्क किया जा सकता है. विदेश स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है.

0: अमरीका ने ईरान पर नए हवाई हमले किए हैं। जवाब में ईरान ने हुर्मुज जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाने की चेतावनी दी। अमरीकी सेना के अनुसार ये कार्रवाई आत्मरक्षा के तहत की गई है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। साई बाबा रोड बिलेरविया सेश में 60 साल के 60 ईयर्स ओल्ड के देवदत्त रामखलावन की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें शफा टैक्सी के नाम से अधिक जानती थी। उनके अर्थी कल सुबह के 9 बजे उन्हीं के मकान बिलेरविया सेश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बूशों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9 AM। ट्रियो रोड ट्रियोली में 65 साल की 65 ईयर्स ओल्ड की जयंती गुप घनश्याम की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम राम रचिया, लोग उन्हें सकुन के नाम से अधिक जानती थी। उनके अर्थी कल दिन की 11 बजे उन्हें के मकान खियोली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: Retro Rhythm. RM2.

0: Retro Rhythm.
1: तरोज़ इन द लवली वॉइस ऑफ लता मंगेशकर जी की आवाज में खासकर आप लोगों के लिए। जी हाँ, इन योर रेट्रो रिदम आज फिर जीने की तमन्ना है और मरने का इरादा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपका साथ जो निभाना है ऑन ऑरेंज रेडियो मस्ती। जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, पुराने बॉलीवुड गीतों के एक खास बात थी, उनमें शायरी थी, सिंप्लिसिटी थी और दिल से निकली हुई आवाज थी। चाहे बात हो लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर्स की या उन फिल्मों की जिनमें ये गाने फिल्माए गए थे और हर गीत के पीछे कहानी हुआ करती थी। वैसे क्लासिक बॉलीवुड म्यूजिक आज भी रेडियो पर सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली टाइप होती है और उसमें हम भी हैं जो पुराने गाने के शौकीन हों। और अब वक्त है एक ऐसे गीत का जो शायद आपके आपके उन पुराने दिनों को आप याद करोगे, 90s के ज़माने का कॉलेज या पहली मोहब्बत की याद ताज़ा कर देते हैं, क्या बोलते हैं? ठीक है, 1:09 हो चुके हैं। वेलकम बैक इन द सेकंड आवर ऑफ दिस ब्यूटीफुल शो एंड दैट्स योर रेट्रो रिदम ऑन आवर एंड टू रेडियो मस्ती विद मी किनिशा। 5499-1294 पर सेंड मी योर डेडिकेशंस, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर देम।

0: रेट्रो रिदम।
1: कैसा लगा आपको ये खूबसूरत ऐसा डुएट किशोर दा और लता जी की आवाजों में आसमान के नीचे। जी हाँ दोस्त, जो ज्वेल थीफ मूवी से लिया गया था स्पेशली आपके लिए। बिल्कुल रेडियो मस्ती पल चल रहा है रेट्रो रिदम और मैसेजेस आ रहे हैं बिल्कुल मॉरिशस के चारों ओर से। एंड एक मैसेज आया है नेहा जी, वो बोलती हैं ये गाने सुनते ही मम्मी और पापा की कैसेट कलेक्शन की याद आ गया गणेशा, थैंक यू सो मच। या एग्जैक्टली, एक्चुअली वी डू ड्रैग यू बैक टू योर लवली मेमोरीज, योर सुविनियर्स। बिल्कुल सही कहा नेहा जी, पुराने गीत सिर्फ सुर नहीं परिवार की यादें हैं। और अगला मैसेज हम पढ़ेंगे और जाता है बाबू के धनेश्वर जी के लिए, उनकी पत्नी सुनीता, संजीवनी, शामी, नारविशी और देवदास परिवार, सनीचर परिवार के लिए जो साथ दे रहे हैं बड़ी शिद्दत से हैं। जब ऐसे मैसेजेस आते हैं ना मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ क्योंकि इतना प्यार आप लोग लिख के भेजते हैं। अनीता जी फ्रॉम फिकाउ फ्लैग, हाँ जी हमेशा की तरह अच्छे अच्छे गाने हम लेकर आए हैं और स्पेशली आपके पति राज, बेटे अंतेश, अंकुश, बहू मनीषा, आशिमा, पति हिमेशा, आडिया, पति अंश और हमारे लिए सभी मस्ती टीम के लिए हैप्पी थर्सडे टू you and enjoy the show my dear and have a blessed afternoon my dear hanji aapko bhi from the city of love so nice selection ganesha belgium se mausam mein 15 degrees aur abhi the sun is shining bright prakashwati ji and we are bringing the sunshine music for you on radio masti and hey program is rocking agla gana agar ho sake koshish karenge aapke liye hema jo saath de rahi hai sadhna mukesh of lalmati बिल्कुल ये अगला गाना हम आपके लिए भी डेडिकेट करना चाहेंगे। एंड चलिए वी डू हैव बहुत सारे लोग जो फिलहाल काम पे हैं साथ दे रहे हैं, बो कुराज टू यू इफ यू आर वर्किंग, टू ऑल दोस हु आर ड्राइविंग ड्राइव केयरफुली। चलिए जी रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा ऊंचा कर लीजिए क्योंकि कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में हम पेश करने वाले हैं आँखों में तुम हो।

0: आइए जानते हैं एमबीसी प्ले पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका। स्टेप वन, सब्सक्राइबर को पहले एमबीसी प्ले ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर मिप्स पेमेंट पोर्टल। स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं, सो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि ओटीपी एसएमएस या ईमेल द्वारा। ये ओटीपी आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या ओटीपी के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द एमबीसी प्ले एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा एमबीसी प्ले होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800।
1: Retro Rhythm RM2 Radio Musti

रेट्रो रिदम स्टूडियो की घड़ी में 1:33 हो चुके हैं। यू एंजॉयिंग दिस ब्यूटीफुल एंड एवरग्रीन गाने। जी हाँ, वैसे पुराने गीतों की महक कुछ ऐसी होती है जैसे ये बंद किताब में रखा हुआ गुलाब। सोचो तो ज़रा, सालों बाद भी खुशबू वही रहती है और यादें फिर से हो जाती हैं लाजवाब। और अगर शायरी के स्टाइल में बोले तो ये गाने तो दिल को बस भा जाते हैं। हाँ जी, ऐसे गाने जब हम लेकर आते हैं तो बस आपका दिल खुश हो जाता है। इट्स अ गुड टू

0: क्योंकि आपके मैसेजेस के जरिए पता चल ही जाता है कि आप कितना एंजॉय कर रहे हो. जैसे कि वी हैव दिस ब्यूटीफुल मैसेज, बोलते हैं कि हैविंग अ ग्रेट लवली टाइम एंजॉयिंग लवली गाने. वी नो द ट्रुथ नॉट ओनली बाय द रीजन बाय बट बाय हार्ट. ओके माय मीठा दिल, बिल्कुल. गॉड ब्लेस यू गायत्री जी एंड ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. एंड अगला गाना जो है हम डेडिकेट करना चाहेंगे पूजा के लिए. वो बोलते हैं हम गाँव पे से साथ दे रहे हैं एंड आई एम जस्ट एंजॉइंग दिस ब्यूटीफुल मिसमराइजिंग गाने. दैट्स स्वीट एंड टू ऑल मॉरिशियंस अक्रॉस द ग्लोब. कहीं से भी अगर आप हमारा साथ दे रहे हो, यहाँ भी कोई अगला गाना किनिशा की तरफ से आपके नाम 5 4 9 9 12 94. दैट्स द ओनली नंबर यू शुड ऑलवेज रिमेंबर टू सेंड मी योर डेडिकेशंस.
1: You're listening to a Radio Masti.

लेटर पंकज उदास की आवाज में ही ये खास कर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। नाम मूवी से लिया गया, चिट्ठी आई है। बिल्कुल रोज कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते हैं, महसूस किए जाते हैं, और ये गाना वाकई दिल को इतना छू जाता है कि आंखें नम हो जाती हैं। आपने कभी सोचा है कि कभी एक वक्त था जब घर से दूर रहने वाले अपनों की खबर सिर्फ एक छोटी सी चिट्ठी लेकर आती थी। हर लफ्ज में इंतजार होता था, हर पंक्ति में ये प्यार और हर कागज़ के ये टुकड़े में घर की खुशबू बसी होती थी। आज मोबाइल फोन्स और वीडियो कॉल्स के ज़माने में शायद वो इंतज़ार नहीं रहा, लेकिन माँ बाप की याद, अपने वतन की मिट्टी की खुशबू और घर लौटने की तमन्ना कभी पुरानी नहीं होती है। अगर आप भी कभी अपनों से दूर रहे हैं या किसी अपने ही को याद कर रहे हैं तो आम प्रीटी मचो आपने इस गाने को दिल से महसूस किया होगा। रेडियो मस्ती के रेट्रो रिदम में दिल को छू लेने वाले ये अमर नगमे हम हमेशा हमेशा पेश करते रहेंगे।

0: आप लोगों के लिए। तो चलिए जी, अगला गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे उन तमाम सुनने वालों के नाम जो साथ दे रहे हैं बड़े प्यार से और अपनी खूबसूरत मीठी मीठी प्यारी प्यारी यादों में खो चुके हैं। और अगला गाना स्पेशली फॉर यू दागन श्वेता रविश प्रीशा लवेशा एंड अपा डू फैमिलीज फ्रॉम रोशनवा।
1: You're listening to Radio Masti.

तो चलिए जी इसी खूबसूरत गाने के साथ इस टाइम फॉर गनीशात से गुड बाय टू यू आने वाली है थोड़ी देर में परी जो साथ टेक यू विद सम लेटेस्ट बॉलीवुड न्यूज एंड गानों के साथ. तो चलिए जस्ट कीप ऑन लिसनिंग टू योर नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो मस्ती.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by McDonald's.
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
0: Radio Masti.
3: North. South.
0: 103.5.
3: East. West.
0: 96.4.
3: Center.
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: Time check, 2 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है आस्था, आपको नमस्कार।
6: नमस्कार, 2 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। 4 वर्षों के इंतजार के बाद फीफा वर्ल्ड कप का रोमांच आज से शुरू हो रहा है। यूएस, कनाडा और मेक्सिको की संयुक्त मेजबानी में आयोजित इस प्रतियोगिता का पहला मुकाबला आज रात मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। ये ऐतिहासिक मुकाबला मेक्सिको सिटी के प्रतिष्ठित आस्तेगा स्टेडियम में होगा, जहां मौसम समयानुसार रात्रि के 11 बजे किक ऑफ होगा। फुटबॉल प्रेमियों के लिए खास बात यह है कि ये मुकाबला एमबीसी 11 पर सीधा प्रसारित किया जाएगा। इससे पहले स्पोर्ट्स डेस्क की ओर से एक विशेष कार्यक्रम रात्रि के 8:30 बजे प्रसारित होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैचों को एमबीसी प्ले पर देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक सदस्यता ले रहे हैं। इसी बढ़ती मांग को देखते हुए एमबीसी ने अपनी सहायता सेवाओं को और मजबूत किया है। टेलीफोन असिस्टेंस, जनसंपर्क सेवाओं और तकनीकी सहायता के लिए विशेष टीमें तैनात की गई हैं, ताकि दर्शकों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि फुटबॉल प्रेमी वर्ल्ड कप के रोमांच का पूरा आनंद बिना किसी रुकावट के उठा सके। फीफा वर्ल्ड कप इस समय पूरी दुनिया इस की नजरें इस पर टिकी हुई हैं, लेकिन मैदान पर होने वाले मैचों के साथ साथ अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में इसके आर्थिक प्रभावों पर भी करीब नजर रखी जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि इस प्रतियोगिता से पर्यटन, व्यापार, होटल उद्योग, रेस्टोरेंट और परिवहन क्षेत्र को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। करोड़ों दर्शकों और लाखों पर्यटकों के आगमन से स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में नई गतिविधियां पैदा होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इन आर्थिक लाभों की वास्तविक तस्वीर प्रतियोगिता के बाद ही सामने आएगी। आस्था, श्रद्धा और आध्यात्मिक साधना की एक विशेष यात्रा पर 52 मर्शन श्रद्धालु हिमालय की ओर रवाना हो गए हैं। वे भारत में आयोजित होने वाली पवित्र 4 धाम यात्रा में भाग ले रहे हैं, जिसे सनातन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ यात्राओं में से एक माना जाता है। ये यात्रा श्रद्धालुओं के लिए केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मिक शांति, ईश्वर भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति का भी अवसर है। मर्श सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन, कला एवं संस्कृति मंत्रालय, एयरपोर्ट्स ऑफ मॉरिशस और प्रधानमंत्री दफ्तर के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के माध्यम से श्रद्धालु उत्तराखंड के 4 पवित्र धामों के दर्शन करेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका ने ईरान पर कई हवाई हमले किए। जवाब में ईरान ने हुर्मुज जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाने की चेतावनी दी है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए।
0: Your news on NBC Play, NBC Radio.

0: music in the mix.
1: आज आजादी है.
2: बॉम्बे टॉकीज़ रेडियो मस्ती.
3: रेडियो मस्ती.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

So well friends, it's afternoon time. 2:24 हो गए हैं और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं. जानते ही हैं आप, मंडे से लेकर फ्राइडे तक इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज, जहां पर मुंबई नगरिया से लेकर आते हैं हम बी टाउन की लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए. सो मैं हूं परी आपके साथ एंड यहां पर कोशिश यही है दैट जो भी खबरें हैं, गर्मा गर्म खबरें, वो हम आप तक पहुंचाए. एंड आई डू होप दैट यू आर एंजॉयिंग योर थर्सडे इज 11th ऑफ जून. जैसे हमने बोला कि वर्ल्ड कप का फीवर इट्स ऑलरेडी ऑन और सब कुछ आपको मिल सकता है MBC प्ले 1.0 पर. सो फटाफट इसे डाउनलोड करें और इन मैचेस का मजा उठाएं. चलिए दोस्तों, बात करते हैं अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म वेलकम टू दी जंगल, जो काफी चर्चाओं में है और फैंस को इस फिल्म के रिलीज का बेसब्री से इंतजार है. इससे पहले मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया है और ट्रेलर काफी शानदार है और इसने फैंस की उत्सुकता और भी बढ़ा दी है. 4:10 का ये ट्रेलर कॉमेडी से भरपूर है और इसमें फिल्म की झलक देखी जा सकती है. ट्रेलर की शुरुआत जैकलिन फर्नांडिस और परेश रावल को देखने से होती है और इसके बाद एक एक करके फिल्म की पूरी स्टार कास्ट नजर आती है. एक वॉइस ओवर सभी कलाकारों के नाम बताता है और इसके बाद परेश रावल एक फिल्म बनाने का प्लान बनाते हैं और इसमें वो सभी कलाकारों को कास्ट करना चाहते हैं. यानी कि कहानी कुछ ऐसी है कि 4 करोड़ की ये फिल्म बनने वाली है, लेकिन फिल्म में नजर आने वाले हैं सारे फ्लॉप स्टार्स. ये है फिल्म की कहानी जो वेलकम टू दी जंगल में नजर आने वाली है. लेकिन यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि एक से बढ़कर एक नाम शामिल हो रहे हैं इस फिल्म की स्टार कास्ट में. सो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि भाई ये जब सारे स्टार्स बड़े पर्दे पर नजर आएंगे तो क्या ही मस्ती होने वाली है. सो वेल फ्रेंड्स, अभी के लिए तो वेलकम टू दी जंगल की बात की है हमने और जैसे हमने कहा कि फिल्म का ट्रेलर अभी के लिए हो रहा है वेरी वेरी पॉपुलर. सो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बी टाउन की गर्मा गर्म खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं. सो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए. वेलकम टू दी जंगल की बात की है. सो यहाँ पर भोजपुरी तड़के वाला एक गाना जो बन रहा है काफी पॉपुलर, डेडिकेटेड है आप सभी के नाम. एंजॉय दिस वन.

0: RM2
1: Radio Musty Feels a Musty.

0: आइए जानते हैं NBC Play पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका। स्टेप वन, सब्सक्राइबर को पहले NBC Play ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर MIPS पेमेंट पोर्टल। स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं तो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि OTP SMS या ईमेल द्वारा। ये OTP आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या OTP के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द NBC Play एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा NBC Play होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 4333135 या 4332871 या 4333145 या 4332905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800।
1: More music in the mix.
2: आज आजादी है बॉम्बे टॉकीज रेडियो मस्ती
3: रेडियो मस्ती।
4: So well friends, taking you down memory lane, mood ko thoda sa change karte hain. We have this beautiful song and this one goes out especially for Avina Ram Tohal. Aaj apna birthday celebrate kar

रही हैं, सो वी हैव स्पेशल विशेस आपके लिए, दैट्स कमिंग फ्रॉम योर बेस्ट बेस्ट फ्रेंड रवि. उनकी ओर से बहुत सारा प्यार, स्पेशल विशेस ऑन योर स्पेशल डे. वी हैव दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग आपके नाम अवीना, इट्स योर बर्थडे, सो वेल लेट्स मेक इट स्पेशल विद दिस वंडरफुल सॉन्ग. और इसी गाने के साथ रवि आपको विश कर रहे हैं अ वेरी हैप्पी बर्थडे. एंजॉय दिस वन एंड एंजॉय योर डे.

0: तो चलिए दोस्तों, इट्स 2:51 इम्तियाज अली की फिल्म मैं वापस आऊंगा आपको याद दिलाती है उस पुराने प्यार की जिसकी तड़प उम्र भर बनी रहती है और जमीन बट जाती है लेकिन दिल जो है वो कभी नहीं बटते हैं। फिल्म में एहसास है, इश्क है, बिछड़ने का गम है और एक्टिंग के रंग है, मगर कहीं कहीं कहानी के जो कैमरे हैं वो थोड़ा सा दम तोड़ देते हैं यहाँ, यानी कि जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस है उस पर खरी उतरने के लिए फिल्म थोड़ी सी कम पड़ जाती है। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें ये फिल्म मैं वापस आऊँगा इम्तियाज़ अली की कहानी है जो दर्शकों को उम्मीद से बांध रही है। और आपको बता दें दैट जब इम्तियाज़ अली की फिल्म की बात होती है तो एक्सपेक्टेशंस लोगों की और भी बढ़ जाती है और फिल्म की कहानी उतनी ही है जो आपने ट्रेलर में देखी होगी। एक लव स्टोरी है जो 78 साल से एक 94 इयर्स के बुजुर्ग कीनू जो है वो अपने दिमाग में रख रहे हैं और बंटवारे की त्रासदी के चलते उनकी मोहब्बत जो है वो अधूरी रह जाती है और वो अपनी अंतिम यात्रा पर जाने से पहले चाहते हैं कि एक बार उनकी लेडी लव उन्हें अलविदा कहने की इजाज़त दे दे। वो जिससे प्यार करते हैं वो पाकिस्तान में है जहाँ जाना उनके लिए लगभग नामुमकिन सा है। अब उनके पोते जिनका किरदार निभाया है दलजीत दोसांझ ने, ये उनकी अधूरी इच्छा को अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य बना लेते हैं और इसी वजह से वो पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। और अब क्या जिया उर्फ अफसाना, यानी कि जिसका रोल निभाया है शर्वरी ने, वहां उन्हें मिलेगी और क्या होगा इस लव स्टोरी का एंड, इसे जानने के लिए तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। और यस, फिल्म की बात कर रहे हैं हम, मैं वापस आऊंगा। फिल्म में नजर आ रहे हैं नसीरुद्दीन शाह, दलजीत दोसांझ, शर्वरी वाघ, वेदांग रैना, जिन्होंने नसीरुद्दीन शाह के जवानी में जो किरदार था वो निभाया है। दानिश पांडोर है, मनीष चौधरी है, रजत कपूर एंड अंजना सुखानी। और फिल्म की कहानी लिखी है इम्तियाज अली और नैनिका महतानी ने। फिल्म को डायरेक्ट किया है इम्तियाज अली ने, द वन एंड ओनली इम्तियाज अली। और ये जो फिल्म है उसकी रिलीज डेट है 12th of June, यानी कि कल ऑन फ्राइडे ये फिल्म रिलीज हो रही है और हम बात कर रहे हैं फिल्म मैं वापस आऊंगा। सो अभी के लिए जैसे हमने कहा कि जब हम जानते हैं कि फिल्म इम्तियाज अली ने बनाई है सो फिल्म से जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो कई गुना बढ़ जाती है। और अभी के लिए तो जैसे हमने कहा कि यहाँ पर कुछ शानदार स्टारकास्ट देखने को मिल रही है, दलजीत दोसांझ, उसके साथ साथ नसीरुद्दीन शाह जिनकी एक्टिंग का लोहा हर कोई मानता है। और उसके बाद फिल्म में नजर आएंगे वेदांग रैना, जिन्होंने बॉलीवुड में बहुत ही कम टाइम लिया है लेकिन उनकी एक्टिंग को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया है, तो ये भी इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। सो लेट्स वेट एंड वॉच कि ये फिल्म क्या कमाल दिखाती है। और अभी के लिए तो बी टाउन की खबरें आप तक पहुंचा रही हैं, मैं हूं परी आपके साथ एंड यू आर लिसनिंग टू बॉम्बे टॉकीज ऑन RM2 रेडियो मस्ती।
1: Radio Musti.
2: Your life is not complete until you have a little musty in your life. Radio Musti. All the way. The latest news and the greatest

0: mix of music. Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: तो चलिए दोस्तों, बात की है हमने फिल्म में वापस आऊंगा और उसी फिल्म का ये गाना जो आजकल हो रहा है वेरी वेरी पॉपुलर. सो इसी गाने को डेडिकेट कर रहे हैं आप सभी के नाम. कनेक्टेड हैं आप रेडियो मस्ती के साथ. एंजॉय दिस वन.

0: जो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कभी वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती
3: RM2 रेडियो मस्ती।
4: The time is brought to you by McDonald's.
5: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
4: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
2: Radio Musti.
6: North. South.
7: 103.5.
6: East. West.
7: 96.4.
6: Center.
7: 99.4.
1: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
0: Time check 3 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है आस्था, आपको नमस्कार।
8: नमस्कार, सुबह 3 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। 4 वर्षों के इंतजार के बाद फीफा वर्ल्ड कप का रोमांच आज से शुरू हो रहा है। यूएस, कनाडा और मेक्सिको की संयुक्त मेजबानी में आयोजित इस प्रतियोगिता का पहला मैच आज रात मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। ये ऐतिहासिक मुकाबला मेक्सिको सिटी के प्रतिष्ठित आस्तेका स्टेडियम में लगेगा, जहां मर्श समयानुसार 11 बजे किक ऑफ होगा। फुटबॉल प्रेमियों के लिए खास बात यह है कि ये मुकाबला MBC 11 पर सीधा प्रसारित किया जाएगा। इससे पहले स्पोर्ट्स डेस्क की ओर से एक विशेष कार्यक्रम रात्रि के 8:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबलों को MBC प्ले पर देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक सदस्यता ले रहे हैं। इस बढ़ती मांग को देखते हुए MBC ने अपनी सहायता सेवाओं को और मजबूत किया है। टेलीफोन असिस्टेंस, जनसंपर्क सेवाओं और तकनीकी सहायता के लिए विशेष टीमें तैनात की गई हैं, ताकि दर्शकों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि फुटबॉल प्रेमी वर्ल्ड कप के रोमांच का पूरा आनंद बिना किसी रुकावट के उठा सके। किसी शहरी इलाके में तेजी से कार्रवाई करना, खतरे को काबू में करना और घायलों को बचाना तथा पूरे इलाके को सुरक्षित बनाना, ऐसी ही कई परिस्थितियों का अभ्यास आज वकवा स्थित पुलिस बेंस हेड क्वार्टर्स में किया गया। ये अभ्यास कार्रवाई मॉरिशस की विशेष पुलिस इकाइयों और फ्रांसीसी सैन्य प्रशिक्षकों के बीच आयोजित तुरंत और संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा था। इसका उद्देश्य चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कार्रवाई, तालमेल और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को और मजबूत बनाना है। आस्था, श्रद्धा और आध्यात्मिक साधना की एक विशेष यात्रा पर 52 मॉरिशस श्रद्धालु हिमालय की ओर रवाना हुए हैं। वे भारत में आयोजित होने वाली पवित्र चार धाम यात्रा में भाग लेंगे, जिसे सनातन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ यात्राओं में से एक माना जाता है। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन, कला एवं संस्कृति मंत्रालय, एयरपोर्ट्स ऑफ मॉरिशस और प्रधानमंत्री दफ्तर के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के माध्यम से श्रद्धालु उत्तराखंड के 4 पवित्र धामों के दर्शन करेंगे। एयर इंडिया फ्लाइट 171 दुर्घटना की जाँच को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। प्रारंभिक जाँच रिपोर्ट में बताया गया है कि उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद विमान के दोनों इंजनों तक ईंधन की आपूर्ति रुक गई थी। हालांकि जांच एजेंसी ने अभी तक दुर्घटना के कारणों पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है, लेकिन रिपोर्ट के कुछ हिस्सों के सामने आने के बाद पायलटों की भूमिका को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। दूसरी ओर पायलट संगठन, कुछ विशेषज्ञों और मृतकों के परिजनों का कहना है कि अंतिम जाँच रिपोर्ट आने से पहले किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। जुक्रे रोड नोत्रदाम में 77 साल की 77 years old की जगदीप देवीदीन की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें परमानंद के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी कल सुबह के 10 बजे उनकी पत्नी भानुमती देवीदीन के मकान जुक्रे रोड नोत्रदाम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्रियोले की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
3: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
1: More music in the mix.

0: Bombay Talkies. Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: So well friends, warm welcome. 3:07 हो गए हैं, connected हैं आप RM2 Radio मस्ती के साथ. It's 11th of June, Thursday afternoon. मैं हूँ परी आपके साथ and it's time for your Bombay Talkies. चलिए दोस्तों, सिनेमा घरों में साउथ की फिल्म पेदी जो है वो काफी कमाल कर रही है. सातवें दिन भी इस फिल्म ने अच्छी कमाई की है. बॉलीवुड फिल्म है जवानी तो इश्क होना है कि बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार अब धीमी हो गई है. और बॉलीवुड की दूसरी फिल्म बंदर की बात करें तो ये फिल्म शुरू से ही बहुत कम कलेक्शन कर रही है. और बुधवार यानी कि कल तक इन फिल्मों ने कितना कलेक्शन किया है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं. सो आप कहीं मत जाइए, स्टे वेल कनेक्टेड, स्टे वेल ट्यून्ड. कुछ लेटेस्ट सॉन्ग्स लेकर आए हैं आपके लिए. एंड द नेक्स्ट वन जो आजकल काफी चर्चाओं में है. वैसे तो ये गाना हमने सुना था काफी टाइम पहले और इसमें जो केमिस्ट्री थी अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की, दैट वॉज माइंड ब्लोइंग. और अब ये गाना एक बार फिर नजर आ रहा है इन द फिल्म वेलकम टू द जंगल. लेकिन अब इसमें कैटरीना कैफ की जगह नजर आ रही है दिशा पाटनी और वही केमिस्ट्री उन्होंने बनाने की कोशिश की है विद अक्षय कुमार. लेकिन लगता है कुछ तो मिसिंग है भाई. कैटरीना वॉज कैटरीना, उनका चार्म तो अलग ही था. लेकिन चलिए अभी के लिए लेटेस्ट ऑन द ट्रैक का ये गाना लेकर आए हैं आपके लिए. लेटेस्ट ऑन द ब्लॉक हमारे सभी लिसनर्स जो हमारा साथ दे रहे हैं. एंजॉय दिस वन.
3: यू आर लिसनिंग टू रेडियो मस्ती.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: What?

0: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: वेल फ्रेंड्स, 3:26 हो गए हैं और यस इस आवर में आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस भी होंगे ऑन 5499124। सो फटाफट आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस मुझ तक पहुंचा दीजिए ऑन आ मैजिकल नंबर जहां पर मैं कर रही हूं आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस का इंतजार। चलिए दोस्तों, बात की थी दैट ये जवानी है, जवानी तो इश्क होना है पेडी और बंदर, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा काम कर रही है, कैसा प्रदर्शन कर रही है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सो वरुण धवन, मृणाल ठाकुर, पूजा हेगड़े की अदाकारी वाली फिल्म है जवानी तो इश्क होना है, छठे दिन बॉक्स ऑफिस पर 2.80 करोड़ रुपए कमा रही है और पांचवे दिन इसने 3.50 करोड़ की कमाई की थी और फिल्म का कुल कलेक्शन अब तक के लिए 34.15 करोड़ हो चुका है। जवानी तो इश्क होना है का डायरेक्शन डेविड धवन ने किया है। फिल्म में मनीष पॉल, मोनी रॉय, जॉनी लीवर, राजपाल यादव जैसे कलाकार नजर आए हैं। वहीं अगर बंदर फिल्म की बात करें तो बॉबी दियोल और अनुराग कश्यप की फिल्म बंदर ने रिलीज के छठे दिन बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 25 लाख रुपए की कमाई की है। पांचवे दिन इस फिल्म ने 40 लाख कमाए थे और फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन 3.40 करोड़ का बना हुआ है और ये फिल्म शुरू से ही बहुत कम कलेक्शन कर रही है। इसमें सबा आजाद, सपना पब्बी और सानिया मल्होत्रा जैसी एक्ट्रेसेस नजर आई हैं। वहीं अगर हम पैदी फिल्म की बात करें तो इन दिनों सिनेमा घरों में बॉलीवुड के अलावा एक साउथ इंडियन फिल्म है जो काफ़ी धमाल मचा रही है और यस हम बात कर रहे हैं फिल्म पैदी की। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है, इसने रिलीज के सातवें दिन 7.55 करोड़ का कलेक्शन किया है, छठे दिन इस फिल्म ने 9.70 करोड़ का कलेक्शन किया और इस फिल्म का कुल कलेक्शन अभी तक का 187.25 करोड़ तक पहुंच चुका है। इसमें रामचरण के साथ जानवी कपूर नजर आए हैं और यही फिल्म है जहां पर कहा जा रहा है, यानी कि जो बॉलीवुड सिनेमा लवर्स हैं उनका मानना है दैट जानवी कपूर को ऑब्जेक्टिफाई किया गया है और उन्हें एज ऑब्जेक्ट पेश किया गया है रामचरण के सामने। लेकिन इसके चलते ये एक बात काफी वायरल हो रही है और जैसे हम कहते हैं भाई, एनी पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी जब फिल्मों की बात होती है, तो इसी के चलते बहुत सारे लोग अब इस फिल्म को देखने जा रहे हैं कि क्या सच में इस फिल्म में जानवी कपूर को ऑब्जेक्टिफाई किया गया है। अब देखिए भाई, जैसे हम कहते हैं कि भाई जो भी बॉलीवुड से रिलेटेड खबरें होती है, गुड या बैड, ये फिल्मों का कहीं ना कहीं प्रमोशन ही बन जाती है। सो दैट्स पेडी की खबर जहां पर सुनने में आ रहा है दैट फिल्म कर रही है अच्छा खासा कलेक्शन। तो चलिए दोस्तों, बी राउंड की गर्मा गर्म खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं, साथ ही साथ आप भी हमारा साथ दे रहे हैं। तो जैसे हमने कहा, थोड़ी ही देर में आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस 5499124 पर मैं हूं परी आपके साथ टिल 4 PM ऑन RM2 रेडियो मस्ती।
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: तो चलिए दोस्तों 3:51 हो चुके हैं एंड घड़ी की टिक टिक इशारा कर रही है दैट इट्स टाइम फॉर परी टू से गुड बाय क्योंकि स्टूडियो में आ गई है रिया आपको एंटरटेन करने विद सम गुड म्यूजिक इन हर शो जिसका नाम है रफ्तार वाइब्स जो आप सुन पाएंगे एज फ्रॉम 4 PM जाते जाते आपके कुछ लवली मैसेजेस डेडिकेशंस जो आ गए हैं ऑन 5499124 डीजे डेविसन साथ दे रहे हैं आप लाल माती से हाउ आर यू डेविसन आई डू होप सब कुछ ठीक ठाक ऑन योर साइड सेंडिंग लोड्स ऑफ गुड विशेस टू यू डियर चलिए अगला गाना होगा आपके नाम एंड कहते हैं हेलो हेलो जी अगला गाना हो जाए फॉर माय फ्रेंड प्रिया हु इज श्योरली लिसनिंग नाउ बिल्कुल जी बिल्कुल सचिन जी आपने डेडिकेट किया है गाना उनके नाम सो वी हैव अ ब्यूटीफुल गाना जो हमने बचा के रखा है कि इसे हम आखिर में जाते जाते जरूर चलाएंगे सो दैट वन गोज आउट फॉर प्रिया एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम सचिन साथ ही यहाँ पर कुमार देव बच्चन एंजॉय कर रहे हैं अपना पियानो और फुल वॉल्यूम पर लगाया हुआ है RM2 रेडियो मस्ती ये हुई ना बात कहते हैं घर पर हूँ एंजॉयिंग द सॉन्ग्स एंड डेडिकेटिंग रॉकिंग गाना होगा फॉर पापा श्याम देव बच्चन ऑफ पेबे लव यू पापा उनके लिए प्यार एंड स्पेशल विशेज साथ ही यहाँ पर भगवत बिरदेसी साथ दे रही हैं आप और कहते हैं एक प्यारा सा स्वीट सा गाना हो जाए अनुषा के नाम बिल्कुल जी होगा एक ब्यूटीफुल गाना होगा आपकी अनुषा के लिए एंड साथ ही यहाँ पर ललिता जीतन कहती हैं आ गई हूँ काम से वापस एंड enjoying the show thank you so much dedicate kar rahi hai gana sabhi apne colleagues ke naam mimi reena sony jia sinika pinky ravi ashley and sabhi jo aapke dost hain jo aapke sath kaam karte hain unke liye special wishes और कहते हैं प्यार भरा नमस्कार करिश्मा है आप हमारा साथ दे रही हैं और कहते हैं प्लीज़ एक प्यारा सा गाना बजा दीजिए होगा फॉर ममा बबीता पापा विनय भाई कुशाल पति कुणाल और आपकी छोटी सी बेटी सिद्धि के नाम उनके लिए प्यार एंड स्पेशल विशेज बिल्कुल जी नेक्स्ट गाना कमिंग अप होगा आपकी स्वीट फैमिली के नाम साथ ही यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर रघुबिन हमारे साथ कनेक्टेड हैं आप और डेडिकेट कर रहे हैं गाना सभी परिवार के नाम बिल्कुल जी गाना होगा आपके लिए भी ऑल्सो डेडिकेट गाना फॉर करिश्मा आपके लिए भी गुड विशेस दैट्स कमिंग फ्रॉम समवन वेरी स्पेशल और चलिए दोस्तों अगले गाने के साथ इट्स टाइम फॉर परी टू से गुड बाय और ऐसे ही कुछ ब्यूटीफुल ट्रैक्स आपके लिए चलते रहेंगे ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती वादा रहा मुलाकात होगी आपसे कल सेम प्लेस सेम टाइम 2 से लेकर 4 बजे तक इन योर बॉम्बे टॉकीज तब तक के लिए छोड़े जा रहे हैं आपको विद दिस ब्यूटीफुल रोमांटिक गाना एंजॉय दिस वन
0: You're listening to Radio Mastery.

0: Musty.
1: Radio Musty.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
2: अपनी घड़ी मिलाते चलिए, शाम के ठीक 4 बज रहे हैं। समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम आस्था के साथ सुनते हैं। नमस्कार आपको आस्था।
3: नमस्कार, 4 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। 4 वर्षों के इंतजार के बाद फीफा वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच आज से शुरू हो रहा है। उद्घाटन मुकाबले में मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। ये मैच मेक्सिको सिटी के अज़्टेका स्टेडियम में खेला जाएगा और मर्श समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबलों को एमबीसी प्ले पर देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक सदस्यता ले रहे हैं। बढ़ती मांग को देखते हुए एमबीसी ने सहायता और तकनीकी सेवाओं को मजबूत किया है ताकि दर्शकों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। अगले सप्ताह से प्रिन विलियम्स और रिवियनवा के कई इलाकों में जल कटौती लागू की जाएगी। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के अनुसार लगभग 1,50,000 घर प्रभावित होंगे। मोवाक्वा जलाशय का जल स्तर घटकर 45% रह गया है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका ने ईरान पर नए हवाई हमले किए हैं, जबकि ईरान ने हुर्मुज जल मार्ग से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाने की चेतावनी दी है। दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में एक बस्ती पर हुए सामूहिक गोलीकांड में 12 लोगों की मौत हो गई है और 9 अन्य घायल हुए हैं। पुलिस का मानना है कि घटना का संबंध अवैध खनन से जुड़े गिरोहों के बीच विवाद से हो सकता है। इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए। इन समाचारों को हम बेशक विस्तार देंगे 6 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
4: Raftar Vibes, Filmy Rides,
1: RM2,
5: Radio Musty.

0: नमस्ते सभी को, रेडियो मस्ती पर शुरू हो चुका है रफ्तार वाइब्स रिया के साथ और आज है थर्सडे। घड़ी अभी हमारी बता रही है कि 4:08, ऑफिस का रश शुरू हो गया है। कुछ लोग फाइल्स क्लोज कर रहे हैं, कुछ मीटिंग्स में बिजी है और कुछ लोगों का मन तो पहले ही वीकेंड मोड में चला गया है। क्या है कि कल फ्राइडे है तो एक्साइटमेंट तो बनती है ना, एंड अभी तो रोड्स पर ट्रैफिक बढ़ेगा शायद, ऑलरेडी है, सिग्नल्स थोड़े लंबे लगेंगे, लेकिन मूड को स्लो नहीं होने देंगे हम। इस पहले घंटे में बस खुशियों के गाने, पॉजिटिव एनर्जी और वो वाइब्स जो आपकी ड्राइव, आपका काम और आपकी शाम को और भी खूबसूरत बना दे। मैं हूँ आपके साथ और 7 बजे तक मैं हूँ ही होने वाली हूँ आप लोगों के साथ, विद सम गुड वाइब्स, फील गुड म्यूजिक और मुस्कुराहट के साथ। तो वॉल्यूम आप थोड़ा सा बढ़ा ही दीजिए और चलिए शुरू करते हैं हम रफ्तार वाइब्स का ये हैप्पी वाला एडिशन। टू फॉरगेट आपकी डेडिकेशंस, आपके मैसेजेस आप हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं। नंबर है 5499-1294।
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
2: RM2,
1: रेडियो मस्ती।

0: चलिए जी, यहाँ पर हम क्या लेकर आए हैं आपके नाम, वी हैव अ गेम। क्या है कि हम हमेशा आपके लिए कुछ लेकर आते हैं, कभी अच्छे अच्छे गाने तो कभी एक बढ़िया सा गेम। तो चलिए, यहाँ पर हम आप के साथ खेलेंगे एक गेम, एंड दैट्स फ्रॉम मिस्टिक वर्ल्ड डॉट एम यू। अगर आप किसी के लिए कुछ परफेक्ट गिफ्ट आइडिया ढूंढ रहे हैं तो लेट मी टेल यू दैट मिस्टिक वर्ल्ड डॉट एम यू यही पर है। वहां पर आप डिस्कवर कर सकते हैं उनकी एक्सक्लूसिव गिफ्ट कार्ड्स, गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी, ऑथेंटिक क्रिस्टल्स और स्टनिंग होम डेकोर। मिस्टिक वर्ल्ड डॉट एम यू हैज एग्जैक्टली व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। और आप भी सोचिए, आप किसी को गिफ्ट देंगे, मिस्टिक वर्ल्ड का कोई भी गिफ्ट दे सकते हैं और उनका तो घर चमक ही जाएगा। सो यस, यहाँ पर हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर आए हैं, एंड दैट्स अ बॉलीवुड क्वेश्चन एज यूजुअल। एज यू नो दैट फिल्म धमाल 4 जल्द ही रिलीज होने वाली है। फिल्म धमाल 4 जल्द ही रिलीज होने वाली है। किस डेट पर रिलीज होगी ये मूवी, किस डेट पर रिलीज होने वाली है ये मूवी, सही जवाब आप हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पूरे नाम और पूरे पते के साथ ऑन 5499-1294। एंड यस, आपको हम विश करते हैं गुड लक।
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो मस्ती।

राइट यहाँ पर आपके मैसेजेस के मध्य हम थोड़े से फंस गए थे, लेकिन वी आर बैक विद अ लकी विनर. जी हाँ, हमने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, यानी कि एक गेम आपसे आप लोगों के साथ हमने खेला था, एंड दैट इज बाय mysticworld.mu. जी हाँ, हमने आपसे पूछा था दैट द मूवी थमाल चार किस डेट को रिलीज होने वाली है, मूवी किस डेट को रिलीज होने वाली है, क्योंकि कई लोगों ने ट्रेलर रिलीज डेट के बारे में बताया, लेकिन हम मूवी के बारे में बात कर रहे थे. एंड सही जवाब है 10 जुलाई 2026. यहाँ पर बहुतों ने सही जवाब दिए. एज यूजुअल हमें पता है कि आप बॉलीवुड के बहुत बड़े फैन हैं और आप अपडेट रखते हैं. सो यहाँ पर लकी विनर हमारी बन चुकी है आशना जुआया. आप है नोवेल फ्रांसी. So congratulations आपको आशना. एंड let me tell you that ये voucher यानी कि 500 रुपीज का voucher आप जीत चुकी है, एंड ये voucher आप तक by post पहुंच जाएगा. So once again हम आपको congratulate करते हैं. जो लोग नहीं जीत पाए आप दिल छोटा कतई ना करें, क्योंकि बारी तो आपकी भी ज़रूर आएगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन बारी सबकी आती है. एंड अगर कोई भी किसी भी इवेंट के लिए किसी के लिए परफेक्ट गिफ्ट आइडिया ढूंढ रहा है, वी हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू mysticworld.mu. वहाँ पर आप डिस्कवर कर सकते हैं बहुत सारी गुडीज, बहुत सारी ब्यूटीफुल चीज़, जैसे गिफ्ट कार्ड्स, गोल्ड, सिल्वर ज्वेलरी, ऑथेंटिक क्रिस्टल्स और बहुत सारे स्टनिंग होम डेकोर भी अवेलेबल है वहाँ पर. एंड आप शायद जाएंगे और आपको मिल सकता है जो आप ढूंढ रहे हैं वहाँ पर, तो आप उनकी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं. एंड

ऑल्सो आप उनको एक कॉल भी कर सकते हैं ऑन 5880 7652 5880 7652. सो माई डियर आशना, आपको वंस अगेन कंग्रेचुलेशन और शायद कुछ और गेम बहुत ही जल्द आप तक हम जरूर लेकर आएंगे. सो स्टे राइट ट्यून टू RM2 रेडियो मस्ती. दिस इज मी रिया इन योर रफ्तार वाइब्स.

0: सब्सक्राइबर को पहले एमबीसी प्ले ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर मिप्स पेमेंट पोर्टल। स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं, सो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि ओटीपी एसएमएस या ईमेल द्वारा। ये ओटीपी आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या ओटीपी के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द एमबीसी प्ले एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा एमबीसी प्ले होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 4333135 या 4332871 या 4333145 या 4332905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800।
1: You're listening to a Radio Masti. Bera ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba

0: to Radio
1: Musty. Traffic update. Traffic update.
2: राइट, इस समय हम सब रोड पर ट्रैफिक का असर महसूस कर रहे हैं। कुछ लोग घर पहुंच चुके हैं, कुछ अभी भी सफर में हैं। ऐसे में सही ट्रैफिक की जानकारी आपके सफर को आसान और सुरक्षित बना सकती है, और इसलिए अब हम सीधा रुख करते हैं ट्रैफिक ब्रांच की तरफ। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांस्टेबल सुखाई, जो लेकर आए हैं मुर्शिदाबाद भर के रोड की ताजा ट्रैफिक सिचुएशन। नमस्कार कांस्टेबल सुखाई, रेडियो मस्ती पर आपका स्वागत है। एंड बताएं हमें दैट इस समय या मुर्शिद की सड़कों पर ट्रैफिक की क्या स्थिति है, व्हाट्स द सिचुएशन। हेलो,
3: बन अप्रीमिडी रिया ए बन अप्रीमिडी आ टू लेस ऑडिटर। अलो, ओ निवो डे ला सर्कुलेशन, लेटा डू ट्रैफिक रूटियर पोर सेट फिन अप्रीमिडी, पा डे प्रॉब्लेम आ सिग्नालर सर ने रूट, पा डैक्सीडेंट ओ ऑब्स्ट्रक्शन सर लेस एक्स प्रिंसिपो की पे जेन व्रेमेंट ले फ्लो डू ट्रैफिक। ए अ लर एक्चुअल की मो पे कॉज अवेक जेट, से ला सोर्टी डे बिरो et un bon nombre de véhicules qui quittent la capitale, et ça peut créer un léger ralentissement à la sortie sud à la hauteur du rond-point de Coudan et à la sortie nord à la hauteur du rond-point de Rochebois et Ristère vers le nord. Ensuite, nous remarquons un temps d'arrêt à la hauteur du rond-point de Réduit et Highlands vers le sud, mais le trafic reprend le flot après le pont de Witton. Sinon, dans d'autres secteurs de l'île, pour le moment, ça roule continuellement. Voilà un peu au niveau de la circulation en état du trafic routier. Monsieur Zoutou, bonne route, bonne rentrée, merci de votre écoute et surtout, soyez prudents, évitez l'alcool au volant et respectez les limitations de vitesse. La police pousse sur le terrain, pour sévir contre ben ceux qui pas respecter la loi. Sur ce, à très bientôt pour d'autres infos.
2: थैंक यू सो मच कांस्टेबल सुखाई इन महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। तो चलिए अभी हम गाड़ी चलाते समय धैर्य आपको कहेंगे कि बनाए रखिए, स्पीड लिमिट्स का पालन कीजिए और सुरक्षित दूरी जरूर रखिए। याद रखिए कि घर पहुंचना जरूरी है, लेकिन सुरक्षित पहुंचना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब रफ्तार वाइब्स पर वापस आपको हम ले चलते हैं, जहां शाम का माहौल बहुत ही रोमांचक है हमारे इन खूबसूरत गानों के साथ। यू आर लिसनिंग टू RM2 रेडियो मस्ती, रफ्तार वाइब्स रिया के साथ।
0: यू आर लिसनिंग टू RM2 रेडियो मस्ती।

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the Flow Expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: चलिए अभी स्टूडियो में आ गए हैं अरविंद लेकर आए हैं चटपटी स्पोर्ट्स खबरें सुनते हैं कि आजकल स्पोर्ट्स जगत में क्या कुछ हो रहा है उनसे. हेलो, गुड आफ्टरनून आपको अरविंद.
4: गुड आफ्टरनून आपको. सो इट्स फाइनली देयर, जिसका इंतजार था, चार सालों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. इट्स द डीडे. आज 11 जून मैच शुरू और चारों तरफ फेस्टिविटीज, एक ट्रिलोजी ऑफ ओपनिंग सेरेमनीज हो रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम. और इसमें वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट भाग लेंगे. नोरा फतेही विल बी देयर, शकीरा विल बी देयर. तो इसके अलावा साथ साथ में मैच भी, मेक्सिको की टीम अपना पहला मैच खेलेगी, ये होगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ. इस पर डिटेल्स देंगे आपको, लेकिन ये बता दें अभी मैं आ रहा था तो स्पोर्ट्स डेस्क जो है हमारे सहयोगी वहाँ पर गया कुछ डिटेल्स लेने के लिए. तो एक तरह से फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं. क्यों आ रहे हैं? क्योंकि लोग इस हमारे एमबीसी ऐप के बारे में जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं. सो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस, आप फ़ोन कर सकते हैं एमबीसी यहां पर और आपको डायरेक्ट किया जाएगा. यहां पर हमारे कलीग्स जो हैं आपको डिटेल्स देंगे पेमेंट को लेकर ये सब. और अभी एमबीसी वन अगर आप लोग देख रहे होंगे तो वहां पर स्क्रॉल किया जा रहा है कि आपको कैसे जानकारियां, कहां पर आप लोग फ़ोन कर सकते हैं, कौन कौन से नंबर हैं. सो बी देयर. द एक्शन 104 मैचेस आप लोगों को दिए जाएंगे फॉर ओनली 300 पीस. और एक के बाद एक मैच देखने के लिए तैयार हो जाएं. थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है रिगार्डिंग द टाइम. ये इसलिए क्योंकि अगर आप लोग वेबसाइट में जाएंगे, किसी वेबसाइट में भी, बीबीसी, स्काई स्पोर्ट्स, जो भी हो, वहां पर जो टाइम दिया जाएगा आपको, दैट्स जीएमटी, यानी जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड टाइम होता है, तो उसमें अभी डिफरेंस 3 हो जाता है. तो आज का जो मैच है वो 11 बजे खेला जाएगा, 11 बजे. जबकि अगर आप वेबसाइट में जाएंगे तो वहां पर लिखा होगा 8 PM, 8, 9, 10, 11, ये 11 बजे ये मैच होगा. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस. और ये भी मैं देखकर आ रहा हूँ अभी कि जो आने वाले लाइव मैच दिखाए जाएंगे एमबीसी टीवी पर, आई

0: MBC TV पर 17 मैच होंगे फॉर द ग्रुप स्टेज. तो आज 11 जून को 11 बजे तो ये होगा मेक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच. फिर 12 जून को कनाडा वर्सेस बोस्निया हर्जेगोविना, ये 11 बजे ही. फिर ब्राज़ील मोरक्को, ये मैच भी लाइव होगा, ये आप देख पाएंगे संडे 2 बजे सुबह. रिमेंबर वेल, ब्राज़ील के बहुत फैंस हैं मॉरिशस में. सो भले ही एक स्केड्यूल है सैटरडे के लिए, सैटरडे ये होगा वहाँ का टाइम, लेकिन क्योंकि टाइम डिफरेंस है तो मैच मॉरिशस में खेला जाएगा, दिखाया जाएगा एट 2 AM. मतलब संडे का दिन अर्ली सुबह मैच देखने के बाद आप लोग बाजार जा सकते हैं सब्जी खरीदने. ऐसे ही बहुत से मैच आएंगे, सो समय समय पर आपको इन सब पर डिटेल्स देते रहेंगे कि कब कौन से मैच खेले जा रहे हैं. और वहां मेक्सिको सिटी में अभी तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं फॉर द फर्स्ट मैच, और इसमें बहुत से नामी हस्ती आएंगे फुटबॉल को लेकर, और मेसी, माराडोना, इन पर खास वीडियोस दिखाए जाएंगे, सम्मानित किए जाएंगे कई खिलाड़ी. सो आज का ये मैच लाइव एमबीसी टीवी पर, और हम भी आपको इन पर जानकारियां देते रहेंगे, आप हमारा साथ देते रहिएगा. वैसे वर्ल्ड कप के बारे में और जानकारियां अभी थोड़ी देर बाद आपको हम देंगे इन द स्पेशल वर्ल्ड कप सेगमेंट, और थोड़ी देर बाद विल इवन ट्राई टू गेट हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट, जो हमारे स्पोर्ट्स गुरु जिन्हें मानते हैं फुटबॉल के, सर जुगाड़ू शंकर, कल हमने उनसे बात की, और विल ट्राई टू टेक हीज ओपिनियन अबाउट दिस वर्ल्ड कप और आज का जो मैच है. फिलहाल अभी के लिए क्रिकेट के बारे में आपको बता दें, अभी ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच मैच चल रहा है, और बांग्लादेश की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 187 पर ऑल आउट किया. बांग्लादेश की टीम अभी खेल रही है 101 रन बनाकर. बांग्लादेश नीड्स 91 रन फ्रॉम 21 ओवर्स. इधर अफगानिस्तान की टीम ने आज इंडिया ए को हराया. ये कैसा रहा, इट्स द अफगानिस्तान की टीम, ओके, 25 ओवर्स में 177 रन बना पाई, ओके, 2 विकेट के नुकसान पर. इंडिया की टीम ने 349 का टोटल रखा था, और इसमें लेट मी चेक, इंडिया ए, प्रभी सिमरन सिंह 84, वैभव सूर्यवंशी 44, प्रियुष अर्या 8, ऋतुराज गायकवाड़ जिसने सेंचुरी बनाई थी पहले मैच में 66, तिलक वर्मा 66, और इस तरह से टोटल 349. फिर भी भारतीय टीम की हार हुई इस मैच में. सो अभी के लिए इतना, विल कम बैक विद द वर्ल्ड कप स्पेशल.
1: थैंक यू सो मच अरविंद.
2: दिस मैगजीन वाज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको, द फ्लो एक्सपर्ट.
3: Get ready for the biggest World Cup ever!
4: 2026 FIFA World Cup.
3: Pehli baar hongi 48 teams, 104 matches. Radio Masti ki team ke saath
4: chaliye
3: United States, Canada, aur

सज चुका है क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप 2026 शुरू हो रहा है। मेला फुटबॉल का आता है, आके जाता है, पर जाते जाते फुटबॉल के इतिहास में अपना छाप छोड़ जाता है। 48 टीमें, एक अल्टीमेट ड्रीम्स। दिलों की धड़कन तेज कर लीजिए, नॉर्थ अमेरिका के मैदानों में आग उगलने के लिए तैयार है, सज हैं, तैनात हैं फुटबॉल के एक से एक दिग्गज। कहीं कनाडा की ठंड में जोश उबलेगा, कहीं यूएसए और मेक्सिको की गर्मी में आग उगलेंगे। ना कोई भाषा का बंधन, ना कोई दीवार, सिर्फ फुटबॉल का जुनून और जीत की पुकार। वेलकम फीफा वर्ल्ड कप 2026। 23वां फीफा वर्ल्ड कप आज से शुरू। मोस्ट आइकॉनिक ट्रॉफी इन द वर्ल्ड, फुटबॉल की सबसे बड़ी टूर्नामेंट जिसे जीतना हर एक टीम, हर एक खिलाड़ी का सपना होता है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 खास है, ज्यादा टीमें, ज्यादा मैच और पहली बार के लिए तीन होस्ट नेशन। पहला मैच मेक्सिको सिटी के आइकॉनिक अज़्टेका स्टेडियम में होने वाला है। फीफा के प्रेसिडेंट इन्फांटिनो ने कहा कि ये स्टेडियम

0: कैथेड्रल ऑफ फुटबॉल है। इसी स्टेडियम में आज पहला मैच खेला जाएगा मेक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच। वर्ल्ड कप 2026 का कर्टन रेजर ये मैच 2010 वर्ल्ड कप के पहले मैच की याद दिलाती है। योहानेसबर्ग में मैच ड्रॉ गया था 1-1। इस बार मेक्सिको होम टीम है, इस ग्रुप का हैवी फेवरेट। मेक्सिको की टीम इंजुरी फ्री है, गोलकीपर राउल रेंगेल होगा, मिडफील्ड लीडर है एडसन अल्वारेज, जबकि स्ट्राइकर फुलहाम का राउल यिमेनेज। साउथ अफ्रीका में ज्यादातर लोकल लीग के खिलाड़ी हैं, अफगान स्टार रोनवेल विलियम्स और लाइल फोस्टर डेंजर होंगे। मेक्सिको अपने 80,000 फैंस के सामने खेलेगा और मेक्सिको सिटी के अल्टीट्यूड से मेक्सिको फेवरेट है। उपता सुपर कंप्यूटर के अनुसार मेक्सिको 66.3% विन चांस, 2-0 या 2-1 प्रेडिक्शन है मेक्सिको के हक में। तीसरी बार के लिए मेक्सिको में वर्ल्ड कप लग रहा है, इससे पहले 1970 और 1986 में पहला देश जो वर्ल्ड कप हैट्रिक पूरा कर रहा है। मेक्सिको कोंकाकाफ नेशंस लीग और गोल्ड कप विनर है, पर 2025 में 6 मैचों में 4 ड्रॉ 2 हार पर इस साल एल्ट्री मेक्सिको की टीम पोर्टुगल और बेल्जियम के खिलाफ ड्रॉ कर पाए, फिर 3 मैचों में जीत गाना ऑस्ट्रेलिया और सर्बिया के खिलाफ। साउथ अफ्रीका के लिए चौथा वर्ल्ड कप, 16 साल बाद दी बाफाना बाफाना वर्ल्ड कप में खेलेंगे। अफ्रीका में रैंक्ड नंबर 11, फीफा में रैंक्ड 60। वर्ल्ड कप 2026 कौन जीतेगा, प्रेडिक्शंस चारों तरफ हैं। बीबीसी स्पोर्ट्स के फुटबॉल पंडित के प्रेडिक्शंस पर नजर डालते हैं। अलन शीरर ने फ्रांस को चुना है, पर इस शर्त पर कि टीम में हाउस फाइटिंग न हो। डैनी मर्फी ने भी फ्रांस को अपना फेवरेट बनाया, हार्ड टू लुक पास्ट फ्रांस विथ द फायर पावर दे हैव। ओलिविये जीरू के अनुसार वर्ल्ड कप फ्रांस या स्पेन के बीच, पर वो चाहता है उसकी टीम फ्रांस की जीत हो। वेन रूने ने प्रेडिक्ट किया है फाइनल इंग्लैंड और स्पेन के बीच, और इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीतेगा। टोमास फ्रैंक के लिए फ्रांस क्लियर फेवरेट है, पर पीछे स्पेन भी है। मिका रिचर्ड्स के लिए एक साउथ अमेरिकन टीम वर्ल्ड कप जीतेगी। गैल क्लिशी के लिए फ्रांस, स्पेन या इंग्लैंड, पर फ्रांस का है फ्रांस को चुनेगा। जो हार्ट के लिए इंग्लैंड, मार्टिन क्यून ने भी इंग्लैंड को चुना है। पॉल रॉबिन्सन ने फ्रांस को फेवरेट बनाया है, क्रिस सटन के लिए फ्रांस। टोटल 9 वोट फ्रांस के लिए, 7 वोट इंग्लैंड के लिए, स्पेन के लिए 1 वोट। ह्यूमन एक्सपर्ट्स की राय तो ले ली, अब एआई के ओक्टा सुपर कंप्यूटर के अनुसार स्पेन 16.1%, फ्रांस 13%, इंग्लैंड 11.2%, अर्जेंटीना 10.4%। एआई को पायलट ने भी स्पेन को अपना फेवरेट बनाया है। अलन शीरर ने फ्रांस की टीम को उसमें हाउस फाइटिंग की बात की। फ्रांस की टीम में किलियान एम्बापे को लेकर कुछ गड़बड़ है। नॉर्दर्न आयरलैंड वाली फ्रेंडली मैच के बाद कप्तान एम्बापे नेशनल कैंप छोड़ गया। अप्रूवल ली थी पर पर्सनल रीजन पर बाद में उसे मैड्रिड में अपने पार्टनर के साथ देखा गया। इसको लेकर लिब्लू के फैंस नाराज हैं, कह रहे हैं एम्बापे नेशनल टीम से ज्यादा अपने पर्सनल कमिटमेंट की ओर ध्यान दे रहा है। अफेयर आसवीव। सो सभी लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं। विदिता आप भी चुन लीजिए किसको सपोर्ट करेंगे। अगर हमसे पूछे तो फेसबुक पर मैंने एक पोस्ट भी डाला सुबह सुबह कि दिल कहता है ब्राजील या इंग्लैंड, और दिमाग कहता है फ्रांस या स्पेन। डार्क होर्स नॉर्वे। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। एंजॉय द वर्ल्ड कप, आज से शुरू हो रहा है विद मेक्सिको वर्सेस साउथ अफ्रीका। हैव ए वंडरफुल वर्ल्ड कप 2026 अहेड।
1: FIFA World Cup 2026, 11 June se 19 July. Catch all the news, views, previews and latest updates.

0: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
1: रफ्तार वाइब फिल्मी राइट्स
2: RM2
3: रेडियो मस्ती
4: हाय सजन मैनू लुट ले गया
2: रेडियो मस्ती.
5: Your life is not complete until you have a little musty in your life. Radio Musty. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musty.
2: Radio Musty.
6: Get ready for the biggest World Cup ever!
7: 2026 FIFA World Cup.
6: पहली बार होंगी 48 teams, 104 matches. Radio Masti की टीम के साथ
7: चलिए
6: United States, Canada और Mexico.
7: Radio Masti के साथ
6: World Cup Magazine.
8: All right, we are back. It's the special day. It's the D-Day. इसीलिए आज के इस प्रोग्राम को खास बना रहे हैं. और आप लोग जानते हैं जब NBC रेडियो पर खासतौर पर हमारे यहाँ कोई खास इवेंट होता है तो हमारे फुटबॉल स्पेशलिस्ट मॉरिशस के क्लब एम के खिलाड़ी, सनराइज स्पोर्टिंग क्लब के खिलाड़ी और क्लब एम के मैनेजर रह चुके हैं अभी ISPL देमिल के कोच सरजू गारुशंकर से हमने बात की और इस वर्ल्ड कप के बारे में और आज के इस मैच के बारे में हमें ज़्यादा जानकारियाँ देंगे. तो सरजू भाई के हमने स्वागत करे थे जा हमने के ई वर्ल्ड कप के बारे में जानकारी दिए और आज के मैच के बारे में.
9: कप टूर्नामेंट रहेला अरे अभी है बरी. नमस्कार अरविंद. हर चार बरिस के देखा सा कि वर्ल्ड कप टूर्नामेंट रहेला अरे अभी है बरिस टूर्नामेंट रही तीन देश में कनाडा अमेरिका और मेक्सिक में. ऐसे बोला सा कि मेक्सिक से उतर ज़्यादा एक फुटबॉल कल्चर कंट्री है और अमेरिक लोग और कनाडा अब फुटबॉल डेवलप करते और यही कहते हैं कि वर्ल्ड कप अमेरिका और कनाडा वो हुई है. बरिश के टूर्नामेंट में देखा सा कि खिलाड़ी लोग ज़्यादा अपन देश के झंडा के खिलियन सा हाँ और लोग अपन टी शर्ट के कहाँ आगे में लोग के झंडा प्रिंट रहेला और वो खातिन खिलियन सा अपन देश के झंडा आगे आने के. और यही बरिस के टूर्नामेंट में देखते थे कि 32 टीम्स से 48 टीम्स हो गल बा और देखा सा कि ये अभी एक बिट पॉलिटिक्स है हाँ कहाँ ज्यादा लेकिन उतना एलिट फुटबॉल नहीं माजिने कर सक सबसे कांचिते ज्यादा बाकी कालिते रही हैं. ऐसे हम ही बोला सा टूर्नामेंट में और ये टूर्नामेंट में देखने सा कि दिसंबर में प्रेसिडेंट इन्फांटिनो फीफा के प्रेसिडेंट एगो प्राइज पीस प्राइज दे डोनाल्ड ट्रंप के. हम ही देखा सा कि हम ही स्पोर्ट्समैन लोग देखे कि सब चीज नहीं जाहला रहे कि फुटबॉल वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है फातिनी को ट्रंप के वो पुतिन के. ये गो ब्यूटीफुल गेम है जहाँ फैंस के लोग के बिलोंग होला कहाँ भी देखा सा स्टार्ट में फैंस लोग भर रही कि अमेरिक में कनाडा में कि मेक्सिक में फुटबॉल उन लोग की है वो सब आदमी पॉलिटिक्स के नहीं जाने आने के ये सब टूर्नामेंट में. और ये बोला कि टूर्नामेंट में हर चार बरिस कुछ हमें रिमेम्बर कर अब सा है ज़्यादा कि कुछ पासे होला तेरह में नहीं कुछ पासे हो ऑडियो तेरह में है. ये सब चीज़ देखबा कि आदमी लोग फैंस लोग देर चर्चा करिए सब मैच के आगे आप रहे है. ये ब्यूटीफुल फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ और ये देखा सा कि ये बरिस में कोनो देश रही कैसे कप वेदे कुसाओ जोर्डन और उज़्बेकिस्तान ये सब देश पहला पहला दिन पहला कंपटीशन कर वर्ल्ड कप कंपटीशन करा था और ये कंपटीशन

0: मैं देखा सा एलिट प्लेयर्स लोग जैसे कि एलिन हालन, माइकल ओलिजे, लामिन यामाल, ये सब प्लेयर्स की जगह सा देखे कैसे लोग सकेला की नुवो प्लेयर्स हो रही यंग प्लेयर्स नवान विजेट लोग सकेला हो ये सब टूर्नामेंट में और ये टूर्नामेंट के तनिस बोला सा कि लियो मेसी, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लुका मॉड्रिच के दर्नियर वर्ल्ड कप रही हाँ वर्ल्ड कप में सके लाकी लोग के दर्नियर वर्ल्ड कप और किसी अर्जेंटीना मेसी के टीम, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पोर्चुगल और लुका मॉड्रिच क्रोएशिया के टीम, ये सब टीम में सके लाकी पोर्चुगल और अर्जेंटीना सेमीफाइनल इसके साथ कि ब्राज़ील रही थी मन ब्राज़ील को उन अंतरने और बांसे लोची से और इधर कब तक कि ला फ्रांस रही हाँ ला फ्रांस सी ला फ्रांस और लंगलेटिया वो सब लेडी फुटबॉल के उनसा सब टीम इधर के लाके लोग क्वार्टर वो सेमीफाइनल तब इसके साथ चलाई और ये कौन मास रही मेक्सिक और साउथ अफ्रीका हम बोले कि मेक्सिक अपन सके कि मेजी वेरी एक्सपीरियंस टीम रही हैं लोग के ज़्यादा प्रोनोस्टिक में लोग के ज़्यादा फेवरेट कौन सा और दूसरा मैच रही कोरिया दू सुद कॉन्ट चेकोस्लोवाकी हम जब कोरिया दू सुद के विक्टोर में कहे कि वो लोग ज़्यादा नीमन विटेस फुटबॉल वेरी वर्टिकल फुटबॉल खेले लन सा और ये हो मेक्सिक जीती साउथ अफ्रीका से कहे कि मेक्सिक अपन फ्रांस के आगे फुटबॉल खेली बहुत मेसी अरविंद
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर जो गौरीशंकर को तो इस वर्ल्ड कप में कौन सा नयापन होगा एक फुटबॉल पर्सपेक्टिव से इन्होंने देखा और आज के मैच के बारे में भी तो ऐसे ही आपको अपडेट्स देते रहेंगे इनके न्यूज व्यूज और रिव्यूज लेकर आएंगे खास तौर पर एक्सपर्ट एनालिसिस
2: थैंक यू सो मच RM2 रेडियो मस्ती

0: टीम नमस्ते और एक बार फिर आपका स्वागत है यहाँ पर ऑन RM2 रेडियो मस्ती. आप सुन रहे हैं रफ्तार वाइब्स, द सेकंड आवर ऑफ रफ्तार वाइब्स रिया के साथ है. आज की शाम में एक खूबसूरत सा शिफ्ट महसूस हो रहा है. दिन की भाग दौड़ अब धीरे धीरे शाम के सुकून में बदल रही है. बाहर आसमान पर अभी तक तो नारंगी रंग नहीं छाई है, बट वी लव द कलर. और ये थोड़ी देर में शायद 6 बजे तक हो जाएगा और हम आप सब इसका आप भरपूर आनंद ले पाएंगे. बट अभी तो शायद अभी आप ट्रैफिक में फंसे हो, घर की ताक में होगी कब हम घर पहुंचेंगे, लेकिन पहुंच जाएंगे, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे. बट मीनवाइल राही हम हैं आपके और ब्यूटीफुल गानों के साथ आपका मनोरंजन करते रहेंगे. वेल, इस घंटे में हम मूड को भी थोड़ा सा बदलने वाले हैं. अब एनर्जी के साथ साथ होगा प्यार, सुकून और वो गाने जो दिल को आराम देते हैं. जो लोग चाय के साथ बालकनी में ऐसे किचन में डाइनिंग में बैठे हैं और जो लोग किचन में डिनर की तैयारी में लगे हुए हैं, जी हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो घर पहुंचते ही किचन की ओर चल दी और ये देखना शुरू कर देते हैं कि आज डिनर में क्या बनाएंगे. बट आपसे कहेंगे कि थोड़ा सा तो आराम आप कर लो, एंड ये शायद 10-20 मिनट का भी हो सकता है, बट थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए खुद के लिए, निकालना चाहिए थोड़ा सा टाइम. और हम आपके नाम ही डेडिकेट करते जाएंगे ये खूबसूरत गाने. वी हैव गॉट ब्यूटीफुल ट्रैक्स. यहाँ पर एक दो रोमांटिक गाने भी है जो आपको बहुत ही पसंद आएंगे. तो चलिए, आज किसी बात की टेंशन नहीं, जो काम रह गया है वो कल भी हो सकता है. फिलहाल आप बस म्यूजिक को अपना काम करने दीजिए. रफ्तार वाइब्स पर अगले कुछ पल होंगे खूबसूरत गानों, ये प्यारी याद और दिल से निकले एहसासों के नाम. दिस इज मी आपके साथ, आपके रिया, एंड आप सुन रहे हैं रफ्तार वाइब्स. आपकी डेडिकेशंस मैसेजेस ऑन 5499-1294.
1: RM2 Radio Masti.

0: राइट, अगर आप इस समय यह गाड़ी चला रहे हैं और घर की तरफ बढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। दिन भर की मीटिंग्स, फोन कॉल्स, डेडलाइंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब धीरे धीरे पीछे रहने दीजिए। कभी आपने नोटिस किया है कि घर जाते समय या जब फेवरेट गाने बजती है तो ट्रैफिक भी इतना बुरा नहीं लगता, सफ़र थोड़ा आसान लगने लगता है और दिल भी हल्का सा मुस्कुराने लगता है। वल आज की शाम भी कुछ ऐसी ही है, बाहर रोशनी शायद धीरे धीरे कम हो रही है, मौसम भी साथ दे रहा है और रेडियो मस्ती पर बज रहे हैं प्यार और आप ही के पसंद के गाने। तो स्टीयरिंग आप संभालिए, स्ट्रेस को साइड रखिए और इस सफर को आप एंजॉय करते रहिए। घर पहुंचने की खुशी भी तो एक अलग ही एहसास होती है, सो चलिए हमारे साथ आप एंजॉय कीजिए ये नेक्स्ट गाना इन दैट फ्रॉम द मूवी युवराज। हमारे लिसनर्स को बहुत ही पसंद है, हमें भी बहुत पसंद है, आई एम श्योर कि सभी को बहुत ही पसंद आएगा ये गाना एंड इससे आप शायद थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सको।
1: RM2 Radio Musty Feel

0: Fashion tips powered by Halkuri Fashion, House of Ready-Made Garments.
1: और अक्सर हम सोचते हैं कि स्टाइलिश दिखने के लिए बहुत महंगा आउटफिट या लेटेस्ट ट्रेंड फॉलो करना ज़रूरी है, लेकिन सच ये है कि फैशन की असली पहचान डिटेल्स में छुपी होती है। वेल, आज एक टिप, फैशन टिप हम लेकर आए हैं एंड इट्स स्पॉन्सर्ड बाय अल्कोई फैशन। आपसे कहेंगे कि अपने आउटफिट के कलर्स को आप बैलेंस करना सीखिए। अगर आप ब्राइट या प्रिंटेड आउटफिट पहन रही है तो एक्सेसरीज और फुटवेयर को थोड़ा सिंपल रखिए, और अगर आउटफिट सिंपल है तो एक स्टेटमेंट हैंडबैग, एलिगेंट ज्वेलरी या स्टाइलिश शूज आपके लुक को इंस्टेंटली एलिवेट कर सकता है। फैशन में हर चीज़ को एक साथ हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं होती है, कभी कभी सिंप्लिसिटी ही सबसे बड़ा स्टाइल स्टेटमेंट बन जाती है। और एक और छोटी सी बात, जो भी पहनिए उसे कॉन्फिडेंस के साथ कैरी कीजिए, क्योंकि सबसे खूबसूरत एक्सेसरी कोई नेकलेस या वॉच नहीं बल्कि आपकी मुस्कान और सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। ये था आज का फैशन टिप स्पॉन्सर्ड बाय अल्कोई फैशन, जहां हर स्टाइल को मिलता है एलिगेंस का टच।
0: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय अल्कोई फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
2: RM2 Radio Musti.

0: राइट हमारे लिसनर्स हमारे साथ है जुड़े हैं और आपके मैसेजेस बहुत सारे हैं। कब से कह रहे थे कि हम आपके मैसेजेस की ओर बढ़ेंगे। चलिए थोड़ा सा टाइम हम निकालते हैं और यहाँ पर पहले हम व्हाट्सएप की ओर बढ़ते हैं और हमारे साथ रेबिका आप के नाम नेक्स्ट ट्रैक कर जाता है और अरशद की ओर से ये मैसेज आया है। सो दोनों के नाम, दोनों लव बर्ड्स के नाम ज़रूर नेक्स्ट ट्रैक हम डेडिकेट करेंगे। एंड वी ऑल्सो हैव रोशनी आप है कैथ बोन से और कॉकटेल 2 मूवी का गाना आप रिक्वेस्ट कर रही है। और राइट अगर हो सके तो हम ज़रूर चलाएंगे, बट थोड़ी देर में समाचार बुलेटिन शुरू हो जाएगा, बट हो सके तो हम तीसरे घंटे में ज़रूर चलाएंगे आपके नाम। यहाँ पर ऑल्सो हमारे साथ डैरन स्वीटर रवीश प्रीशा लोवेश राना पाटी परिवार है रोशनवा से जुड़े हुए। एंड यहाँ पर ऑल्सो कृति हमारे साथ कनेक्टेड है। हेलो कृति, आप है मदाबे से और ये गाने आप एंजॉय कर रही है। राइट अभी घर पहुंची है। आई होप यू हैविंग अ गुड टाइम चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ, जो भी आपको पसंद है बस गाने आप एंजॉय करते रहिए। इट्स योर अफ्तार वाइब्स रिया के साथ और चलिए नेक्स्ट गाने की ओर हम बढ़ते हैं और लेट मी टेल यू दैट इसी के साथ आप सुन पाएंगे समाचार बुलेटिन।
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो मस्ती

0: You're listening to a Radio Masti.
1: राइटर की आवाज में ये खूबसूरत गाना फ्रॉम द मूवी जन्नत, ये हम डेडिकेट करते हैं वशिष के नाम जो हमारे साथ कनेक्टेड है. सो हियर यू गो, ये ब्यूटीफुल गाना आपके नाम एंड हमारे सभी लिसनर्स के नाम.

0: welcome to Radio Masti. The time is brought to you by McDonald's.
1: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
0: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
2: Radio Masti.
3: North. South.
4: 103.5.
3: East. West.
4: 96.4.
3: Center.
4: 99.4.
5: RM2 Radio Musty.
2: Radio Musty.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
6: शाम के ठीक 6 बज रहे हैं, समाचार सुनिए। नमस्कार, शाम 6 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। नजर सबसे पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चार वर्षों के इंतजार के बाद फीफा वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच आज से शुरू हो रहा है। उद्घाटन मुकाबले में मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। ये मैच मेक्सिको सिटी में खेला जाएगा और मर्श समयानुसार रात्रि 11 बजे शुरू होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैचों को एमबीसी प्ले पर देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक सदस्यता ले रहे हैं। बढ़ती मांग को देखते हुए एमबीसी ने सहायता और तकनीकी सेवाओं को मजबूत किया है ताकि दर्शकों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। अगले सप्ताह से प्रेन विलियम्स और

0: ब्लैक रिवर के कई इलाकों में जल कटौती लाई जाएगी। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के अनुसार लगभग 150,000 घर प्रभावित होंगे। मौवाक्वा जलाशय का जल स्तर घटकर 45% रह गया है। बावन मोशन श्रद्धालु चार धाम यात्रा के लिए भारत के लिए रवाना हुए। मोशन सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन तथा विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के दौरान श्रद्धालु उत्तराखंड के चार पवित्र धामों के दर्शन करेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका ने ईरान पर नए हवाई हमले किए, जबकि ईरान ने हुर्मुज जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाने की चेतावनी दी। चार वर्षों के इंतजार के बाद फीफा वर्ल्ड कप का रोमांच आज फिर से शुरू। यूएस, कनाडा, मेक्सिको की संयुक्त मेजबानी में आयोजित इस प्रतियोगिता का पहला मुकाबला आज रात मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। यह ऐतिहासिक मुकाबला मेक्सिको सिटी के प्रतिष्ठित स्टेडियम में लगेगा, जहां मर्श समयानुसार रात्रि 11 बजे किक ऑफ होगा। फुटबॉल प्रेमियों के लिए खास बात यह है कि यह मुकाबला NBC 11 पर सीधा प्रसारित किया जाएगा। इससे पहले खेल विभाग यानी स्पोर्ट्स डेस्क की ओर से एक विशेष कार्यक्रम राति के 8:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। करुणा लालू।
1: फीफा वर्ल्ड कप के सह मेजबान मेक्सिको का सामना आज रात 11 बजे दक्षिण अफ्रीका से होगा, जो 2010 यानी 16 साल बाद पहली बार विश्व कप में वापसी कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि 2010 विश्व कप के उद्घाटन मैच में मेजबान दक्षिण अफ्रीका और मेक्सिको के बीच मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। ग्रुप ए में शामिल और दर्शकों के जबरदस्त समर्थन से उत्साहित विश्व रैंकिंग में 14वें स्थान पर मौजूद मेक्सिको इस बार शानदार प्रदर्शन करने और 2022 विश्व कप की पहली ही दौर में हुई ऐतिहासिक निराशाजनक विदाई को पीछे छोड़ने के इरादे से मैदान में उतरेगा। मेक्सिको दुनिया का पहला देश बन गया जो तीसरी बार फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले 1970 और 1986 में इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी उसने की थी। वहीं बाफाना बाफाना यानी दक्षिण अफ्रीका अपनी चौथी विश्व कप प्रतियोगिता खेल रहा है और 2010 के बाद पहली बार इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहा है। नाइजीरिया को पीछे छोड़ते हुए 30 में से 18 अंक हासिल कर उसने अपनी जगह पक्की की है। 48 टीमों वाले इस फीफा वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला आज रात 11 बजे NBC 11 पर प्रसारित होगा, साथ ही उद्घाटन समारोह लाइव दिखाया जाएगा। मेक्सिको सिटी के ऐतिहासिक अस्टेका स्टेडियम में आयोजित यह समारोह मौसम समय अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा और इसका सीधा प्रसारण भी NBC 11 पर होगा। इस रंगारंग कार्यक्रम में मैक्सिकन संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी, जिसमें जे बाल्विन और टाइला जैसे अंतर्राष्ट्रीय सितारे मंच पर उतरेंगे। तो आइए फुटबॉल का जश्न शुरू करें, फीफा वर्ल्ड कप का आनंद उठाएं।
0: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबलों को एमबीसी प्ले पर देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक का सदस्यता ले रहे हैं। इसी बढ़ती मांग को देखते हुए एमबीसी ने अपनी सहायता सेवाओं को और मजबूत किया है। टेलीफोन असिस्टेंस, जनसंपर्क सेवाओं और तकनीकी सहायता के लिए विशेष टीमें तैनात की गई हैं, ताकि दर्शकों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि फुटबॉल प्रेमी वर्ल्ड कप के रोमांच का पूरा आनंद बिना किसी रुकावट के उठा सके।
1: एप्लीकेशन डाउनलोड करना, अकाउंट बनाना, भुगतान करना या भूला हुआ पासवर्ड फिर से प्राप्त करना, पिछले कुछ दिनों से एमबीसी प्ले एप्लीकेशन को लेकर अनुरोधों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका जवाब देने के लिए एक विशेष कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। कई लोग सोच रहे हैं कि 300 रुपए मात्र एक मैच के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पूरे वर्ल्ड कप यानी एमबीसी प्ले पर 104 मैच के लिए है। हम लोगों की मदद कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि क्या करना है। कुछ लोग फोन करके जानकारी मांग रहे हैं और कई लोग एमबीसी भी आ रहे हैं।
2: J'ai entendu les publicités à la radio.
1: रेडियो पर मैंने इसके बारे में सुना, मैं संतुष्ट हूँ, उन्होंने मेरी मदद की और इस एप्लीकेशन

0: टेलीविजन को मोबाइल में इंस्टॉल किया।
1: Avec le téléphone portable, je suis très satisfait. L'accueil a été chaleureux et on m'a aidé aussi pour mettre l'application sur mon téléphone.
2: Je trouve cela très intéressant. Donc,
0: मैं ज्यादा जानकारी हासिल करने आया हूँ. हर चार साल में वर्ल्ड कप आता है, इतना करना तो बनता है. इस बीच तकनीकी टीमें प्लेटफॉर्म के सुचारू संचालन को सुनिश्चित कर रही हैं ताकि प्रतियोगिता की शुरुआत तक के साथ अपेक्षित उपयोगकर्ताओं की भारी भीड़ को संभाला जा सके. टेक्नीशियन यह भी याद दिलाते हैं कि जिन लोगों के पास एंड्रॉइड टेलीविजन नहीं है, वे एक एंड्रॉइड बॉक्स की मदद से इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं, जिससे वे एप्लीकेशन डाउनलोड कर अपने टीवी पर मैच देख पाएंगे.
3: L'application MBC Play ne lie en deux versions, une en version pour mobile et une version pour télévision.
0: MBC Play दो वर्शंस में उपलब्ध है, मोबाइल और टीवी. मात्र एंड्रॉइड टीवी के लिए फोन को भी टीवी पर कनेक्ट कर सकते हैं.
3: Et pour connecter notre téléphone avec télévision, pour nous sign in, pour nous faire la connexion, pour être capable de regarder la télévision.
0: इस मजबूत सहायता व्यवस्था के साथ एमबीसी का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को एमबीसी प्ले प्लेटफॉर्म पर एक सरल, सुलभ और सहज अनुभव प्रदान करना है.
4: फीफा वर्ल्ड कप पर इस समय पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन मैदान पर होने वाले मुकाबलों के साथ साथ अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको में इसके आर्थिक प्रभावों पर भी करीब से नजर रखी जा रही है. उम्मीद की जा रही है कि इस प्रतियोगिता से पर्यटन, व्यापार, होटल उद्योग, रेस्टोरेंट और परिवहन सेक्टर को बड़ा बढ़ावा मिलेगा. करोड़ों दर्शकों और लाखों पर्यटकों के आगमन से स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में नई गतिविधियां पैदा होने की संभावना जताई जा रही है. और फुटबॉल के सबसे बड़े महोत्सव फीफा वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका और मॉरिशस में भी इसका उत्साह साफ दिखाई दे रहा है. घरों, कार्यस्थलों और खेल प्रेमियों के बीच पसंदीदा टीमों और संभावित विजेताओं को लेकर चर्चाएं तेज हैं. कौन सी टीम ट्रॉफी उठाएगी, किस खिलाड़ी से हैं सबसे ज्यादा उम्मीदें और इस वर्ल्ड कप को लेकर मॉरिशन कितने उत्साहित हैं, जानते हैं मॉरिशनों से और सुनते हैं उनकी राय.
5: फीफा विश्व कप आखिरकार शुरू हो रहा है और मॉरिशस के फुटबॉल प्रेमियों में उत्साह चरम पर है. उत्तरी अमेरिका में आयोजित ये 2026 विश्व कप प्रशंसकों के बीच भारी उत्साह पैदा कर रहा है.
6: Ouais, mon cas c'est une pause, mon bois un peu d'été, c'est pas qu'il me vient virer, on voit là.
7: Même si mon cas, je suis bien que bleu là, bloqué. Ah, moi je suis sûrement de commenter, puis passer le bon téléphone.
8: Bon, gété, côté Namanzo, nous pouvons dire, ben, les Arsons, nous gété, nous avons gété. C'est moi, côté Naman, plus beaucoup, ben, le football intéressant là, que nous vous en suivre.
5: Sham ke shuruati ya der, sham wali mukablon ko dekhna apekshakrit aasan hoga.
9: Bon, gété, parce qu'il y a 11 ans, il ne faut pas trop tard ça.
10: Mon recher, vous pensez qu'on osait? Le possible sur football sera commencement jusqu'à finition finale.
5: लेकिन आधी रात, सुबह 2 बजे, 4 बजे या 6 बजे होने वाले मैचों के लिए खास इंतजाम करना होगा.
11: Tous les jours, on lève 5 heures, mais normalement 5 heures aussi. Mais nous qu'a guetté 5 heures là, 5 heures du matin.
12: Mais là, moi, bien sélectif. Moi, bien guetté un coup qui ban match qui dans la portée. Par exemple, un match commence à 4 heures du matin, un peu difficile. À moi qui moi l'équipe, juste salaire là, peut-être m'en va guetter.
13: Bon, sont contents de nous guetter, nous faire un petit gâteau, un petit dîner, nous guetter le football.
14: Nous vous avons très bien, à moi. Il y a là qu'on arrive bien, nous guetter le football là.
5: इन चुनौतियों के बावजूद उत्साह में कोई कमी नहीं आई है. ब्राज़ील, अर्जेंटीना, फ्रांस, इंग्लैंड और पुर्तगाल जैसी टीमों को लेकर चर्चाएं और बहसें पहले ही शुरू हो चुकी हैं.
15: गए पे आजी ला फ्रांस
16: और अर्जेंटीना में और अर्जेंटीना
17: और मैं भी फैन बो फास्ट से सा कप जुमोन
18: मां मैं सपोर्ट पुर्तगाल क्रिस्टियानो रोनाल्डो
19: Je supporte la France.
7: Moi, je supporte le Brésil.
11: Portugal, à cause de mon garçon, je suis fan de Cristiano Ronaldo.
5: Mexico et Dakshin Africa ke beech, shuruati mukable se kuch hi ghante pehle, Mauritius ke football prashansak apne TV aur smartphone screen ke samne romanch ka anubhav karne ke liye तैयार हैं. ऐसा जुनून जो न सीमाएं जानता है न ही समय की पाबंदी. अगले 6 सप्ताह तक फुटबॉल ही चर्चा का केंद्र में रहेगा और हर प्रशंसक को उम्मीद होगी की उसकी पसंद

0: पसंदीदा टीम 19 जुलाई को न्यूयॉर्क में विश्व कप ट्रॉफी उठाए।
1: अगले सप्ताह से प्रिंस विलियम्स और रिवियनवा के कई इलाकों में रहने वाले हजारों परिवारों को रोजाना जल कटौती का सामना करना पड़ेगा। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के अनुसार लगभग 150,000 घर प्रभावित होंगे, जहां प्रतिदिन 2 से 3 घंटे तक पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी। ये फैसला मोवाक्वा जलाशय में उपलब्ध जल भंडार को सुरक्षित रखने के लिए लिया गया है, जो इन क्षेत्रों को पानी उपलब्ध कराता है। वर्तमान में इस जलाशय का जल स्तर केवल 45% हैं, जबकि आने वाले महीनों में पर्याप्त वर्षा की संभावना भी कम बताई जा रही है। आस्था, श्रद्धा और आध्यात्मिक साधना की विशेष यात्रा पर 52 मर्शन श्रद्धालु हिमालय की ओर रवाना हुए। वे भारत में आयोजित होने वाली पवित्र चार धाम यात्रा में भाग लेंगे, जिसे सनातन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ यात्राओं में से एक माना जाता है। ये यात्रा श्रद्धालुओं के लिए केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मिक शांति, ईश्वर भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति का भी अवसर है। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन, कला एवं संस्कृति मंत्रालय, एयरपोर्ट्स ऑफ मॉरिशस और प्रधानमंत्री दफ्तर के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के माध्यम से श्रद्धालु उत्तराखंड के चार पवित्र धामों के दर्शन करेंगे।
2: बुधवार 10 जून की शाम सचिव सागर रामगुलाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लोग अपनी भावनाएं समेटे नजर आए। 52 मॉरिशन हिमालय में चार धाम की यात्रा के लिए देश से रवाना होने वाले थे।
3: बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग भारत जा रहे हैं उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के लिए, और ये सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के आयोजन है, और इसमें हम 50 लोग जा रहे हैं, और ये महादेव जी की कृपा है, केदारनाथ भगवान के आशीर्वाद और बद्री विशाल जी के आशीर्वाद से। और ये यात्रा हम जब करेंगे तो एक हमारे देश के लिए, हमारे जाति के लिए और विश्व के कल्याण के लिए, क्योंकि महादेव जो हैं पूरे विश्व के हमारे रक्षक हैं, और उनकी सेवा पूजा करने से सबका कल्याण होगा, ये हम यही भगवान शिव जी से प्रार्थना करने जा रहे हैं।
4: हम पहली बार यात्रा करने जा रहे हैं, हम बहुत खुश हैं। हमको ऐसा अवसर मिला मॉरिशस सनातन धर्म के द्वारा, उसे मेंबर और उसे द्वारा हमको ऐसा अवसर मिला, हम उनको धन्यवाद करते हैं।
5: पुमा फ्रांचमेंट सेट एन ग्रैंड अफेयर कम एट एन केदारनाथ मैं एक्स्ट्रा कंटेंट
6: हूं। यान ग्रैंड फियर थी पुमा कि मैं पिक अप फिर ऐसा यात्रा ला दन जन लाइज कम सा।
2: ये मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल्स फेडरेशन, कला एवं संस्कृति मंत्रालय, एयरपोर्ट्स ऑफ मॉरिशस कंपनी लिमिटेड तथा प्रधानमंत्री दफ्तर की मिलीजुली पहल हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए प्राथमिकता भी दी गई ताकि यात्रियों को आसानी हो। सभी मॉरिशनों को हम सुविधाएं देते हैं ताकि सब सही से चले। मौसम के कारण चार धाम की यात्रा साल में मात्र 6 महीने तक ही संपन्न की जा सकती है। हर साल मॉरिशनों की चार टोलियां वहां जाती हैं। जीवन में एक बार तो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के दर्शन करने चाहिए, हम यही संदेश दे रहे हैं। अगली चार धाम यात्रा सितंबर अक्टूबर महीने के लिए निर्धारित है।
1: किसी शहरी इलाके में तेजी से कार्रवाई करना, खतरे को काबू में करना, घायलों को बचाना और पूरे इलाके को सुरक्षित बनाना, ऐसी ही कई परिस्थितियों के अभ्यास आज वाक्वा स्थित पोर्टली बैंस हेडक्वार्टर्स में किया गया। यह अभ्यास कार्रवाई मॉरिशस की विभिन्न विशेष पुलिस इकाइयों, फ्रांसीसी अन्य सैनिकों, जो प्रशिक्षकों के बीच आयोजित संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा रही थी। इसका उद्देश्य चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कार्रवाई, तालमेल और त्वरित कार्रवाई क्षमता को और मजबूत बनाना है। लिस्टेड कंपनीज माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स एसोसिएशन और एमोशस रिटायरीज सेल ने मांग की है कि फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन एमोशस के शेयरों की अनिवार्य खरीद और 2021 से 2022 के बीच पेंशन फंड को नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में स्थानांतरित किए जाने के मामलों की स्वतंत्र और विस्तृत जांच करे। ये मांग आज पोर्टल में आयोजित एक प्रेस सम्मेलन के दौरान की गई। देश के उत्तरी क्षेत्र में मवेशियों के प्रजनन में अपेक्षाकृत प्रगति नहीं हो रही है, जिसका असर दूध उत्पादन पर भी देखने को मिल रहा है। खियोली के कुछ पशुपालकों का कहना है कि पशुओं के प्रजनन से जुड़े सरकारी कार्यक्रम में कुछ समस्याएं सामने आ रही हैं। वहीं कृषि उद्योग मंत्रालय ने भी माना है कि इस सेक्टर में कुछ चुनौतियां मौजूद हैं। और अब बढ़ते हैं विदेश की खबरों की ओर। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका ने ईरान पर नए हवाई हमले किए हैं। जवाब में ईरान ने हुर्मुज जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाने की चेतावनी दी है। अमेरिकी सेना के अनुसार ये कार्रवाई आत्मरक्षा के तहत की गई। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में एक बस्ती पर हुए सामूहिक गोलीकांड में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है और 9 अन्य घायल हैं। पुलिस के अनुसार 10 से अधिक हथियारबंद हमलावर इलाके में घुसे और अंधाधुंध गोलीबारी करने के बाद फरार हो गए। हमले के कारणों की जांच जारी है। हालांकि पुलिस को संदेह है कि इसका संबंध अवैध खनन से जुड़े गिरोहों के बीच विवाद से हो सकता है।
2: दक्षिण अफ्रीका एक और घातक गोलीबारी के बाद सदमे में है, जो जोहान्सबर्ग में हुई। कम से कम 12 लोगों की मौत हुई और कई अन्य लोग घायल हो गए जब हथियारबंद लोगों के एक समूह ने क्लीवलैंड इलाके में गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार हमलावर ने अचानक एक ऐसे घर में घुसकर गोलियां चलाई जो अनौपचारिक आवास के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। हमले की सही परिस्थितियां अभी स्पष्ट नहीं और अभी तक किसी भी मकसद की पुष्टि भी नहीं की गई है। आरोपियों को पकड़ने के लिए तलाशी जारी है। जांचकर्ता कई पहलुओं पर काम कर रहे हैं, जिनमें आपराधिक गतिविधियां और गिरोहों के बीच विवाद शामिल हैं। इस हमले ने दक्षिण अफ्रीका में हथियारबंद हिंसा पर बहस को फिर से तेज कर दिया है, जो दुनिया के सबसे अधिक अपराध दर वाले देशों में से एक है। अधिकारियों ने दावा किया है कि वे जिम्मेदार लोगों की पहचान करने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।
1: और अब चली जानती हैं कि मौसम का हाल कैसा रहेगा। मस्करविंस के दक्षिण में पाए जाने वाले एक जोरदार एंटीसाइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर ठंडी और तेज हवाओं का असर जारी रहेगा। आज रात को देश के पूर्व सेंट्रल प्लाटो पर भी रह रहकर बरसात होगी और बादल घिरे रहेंगे। कल सुबह के दौरान देश भर में धूप खिली रहेगी और मौसम सुहाना रहेगा। दोपहर के मौसम की बात करें तो दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और सेंट्रल प्लाटो पर बरसात हो सकती है और मौसम कुछ खराब ही रहेगा। हवा उत्तर पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा। 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में नहर निकलने की मांग की जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटो पर 17 से 19 और अधिकतम तापमान रहेगा 23 से 25 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम साहली इलाकों पर 20 से 23, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्यास्त 5:37 पर हो गया है। सूर्योदय कल सवेरे होगा 6:41 पर।

0: तो देश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। तकनीकी सहायक हमारे साथ रहे शिव, उनको हम धन्यवाद देते हैं। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। जुखे रोड नोत्रदाम में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड के जगदीप देवी दिन की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें परमानंद के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल सुबह के 10 बजे उनकी पत्नी भानुमती देवी दिन के मकान नोत्रदाम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्रियोले की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। थ्रियोले में 65 साल की 65 ईयर्स ओल्ड की जयंती गोप घनश्याम की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम राम रचिया, लोग उन्हें साकुन के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल दिन के 11 बजे उन्हीं के मकान थ्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यामिनी थ्रियोले की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। साई बाबा रोड बिले रिवे सेश में 60 साल की 60 ईयर्स ओल्ड के श्री देवदत्त राम खलावन की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें बॉय शोफेर टैक्सी के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल सुबह के 9 बजे उन्हीं के मकान बिलेर व्यासर्ष से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9 AM। रॉयल रोड प्लेंदी रोश में 90 साल के 90 ईयर्स ओल्ड के श्री जयनारायण रामजतन की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें जय के नाम से जानते थे। आपको बता दें कि उनके अर्थी आज दिन के दौरान 2:30 बजे उठाई गई। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: You're listening to a Radio Mastery.

0: जी आप घर मिलाते चलिए 6:26 रफ्तार वाइब्स का तीसरा घंटा शुरू हो रहा है। थर्सडे की शाम है, वीकेंड अब दूर नहीं, बस एक कदम और। दिन भर की जिम्मेदारियां, मीटिंग्स, ट्रैफिक और काम के बाद अब समय है थोड़ा सा खुद के लिए जीने का। बाहर रात धीरे धीरे अपनी चादर बिछा रही है, घरों में रोशनियां जगमगाने लगी है और कई लोग अपने परिवार के साथ शाम की खूबसूरत पल बिता रहे हैं। कुछ लोग डिनर की तैयारी में लगे हुए हैं। जो कुछ भी आप कर रहे हैं बस एंजॉय कीजिए रेडियो मस्ती के गाने। आराम से बैठिए, एक गहरी सांस लीजिए और रेडियो मस्ती के साथ इस थर्सडे इवनिंग को आप और भी हसीन बनाइए।
1: मुझे

0: शाम का ये समय अक्सर दिल को थोड़ा ज़्यादा महसूस करना सिखा ही देता है। दिन भर हम दिमाग से काम लेते हैं, लेकिन शाम हमें दिल की बात सुनने का मौका देती है। अगर आज कोई खास इंसान आपके साथ है तो उनके साथ कुछ पल बिताइए, और अगर दूर है तो एक प्यारा सा मैसेज आप ज़रूर भेज सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि दो लफ्ज भी किसी का पूरा दिन बना देती है, और अगर आप खुद को अकेले पाते हैं तो भी फिक्र की कोई बात नहीं। अच्छी बात ये है कि हमारे पास अच्छे अच्छे गाने हैं, अच्छी म्यूज़िक है, और बस आप लोगों का साथ मिल जाए तो बात ही बन जाएगी। एंड इस थर्सडे इवनिंग बस प्यार, पॉजिटिविटी और सुकून को हम अपने दिल में जगह देंगे, बाकी सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो ही जाता है। बस आप टाइम को टाइम दीजिए। हाल ही में किसी ने हमें बताया था कि टाइम को टाइम देना बहुत ही ज़रूरी है, सो आप चिल कीजिए, रिलैक्स कीजिए एंड रफ्तार वाइब्स की गाने एंजॉय करते रहिए। वी हैव गॉट द नेक्स्ट वन, बहुत ही खूबसूरत गाना है, हमारे सभी लिसनर्स के नाम जाता है, और इसी के साथ हम नेक्स्ट बढ़ेंगे आपके मैसेजेस की ओर थोड़ी देर में।
1: You're listening to Radio Masti.

0: पर ये टाइम बहुत ही जल्दी जल्दी कट रहा है और पता ही नहीं चला कि कब 6:54 हो चला. और इसी के साथ इट्स टाइम फॉर मी टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू. सो वो बाय, टेक केयर, और हमेशा आप स्माइल करते रहिए. इस गुरुवार को हम अच्छे तरीके से एंड करते हैं, यानी कि मेरी ओर से, और मेरी बात आपको मिलेगा दिव्या का साथ इन योर इवनिंग लाउंजर, जहाँ पर आप और भी बहुत खूबसूरत गाने एंजॉय कर पाएंगे. सो टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड टू आरएमटी रेडियो मस्ती.
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो मस्ती.

जाने दिल में कब से है तू, जब से मैं हूँ तब से है तू। इसलिए कहते हैं ना कि एक वजह होती है जिसके कारण आप धरती पे आए हैं, और कहा जाता है कि शायद आप उन्हीं के लिए आए हैं जिनके

0: ये आप बने हुए हैं। और वैसे कहते हैं ना कि शादी और जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती हैं, तो चलिए अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल सही सोचते हैं। एंड यहाँ पर बिल्कुल हम प्यार की बातों के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, इस खूबसूरत म्यूज़िकल कारवां को नॉनस्टॉप ऐसे ही चलाते रहेंगे आपके दिल को थोड़ा और बहलाने के लिए चिल 9 PM। तो चलिए यहाँ पर शुरू हो चुका है आपका इवनिंग लाउंज टिल 9 PM, जहाँ पर दिव्या का साथ है ना। एज़ यूजुअल आपके मैसेजेस का तो हम बिल्कुल इंतज़ार करेंगे। ऑन 5499-1294 जानना चाहते हैं कि हमारे गीतों को सुनने के बाद आप कैसा महसूस कर रही हैं, किसी को याद कर रही हैं, या फिर ऐसे ही किसी के लिए कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो बेशक दिल की बात जुबान तक लाने की कोशिश कीजिए। एंड जस्ट सेंड योर मैसेजेस ऑन द मैजिकल नंबर दैट इज़ 5499-1294। या फिर अगर आप हमसे कुछ बातें करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स से हम ऑन एयर बात करेंगे, लाइन खुली हुई है, तो आप हमें फोन कर सकते हैं ऑन 4028035 पर। आपका हम इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए इस शाम को हम थोड़ा जादू भरा बनाएंगे, एंड ऑफ कोर्स इस मैजिकल इवनिंग में आपका साथ तो चाहिए ही चाहिए। एंड डू लेट अस नो कि किस तरीके से यू आर स्पेंडिंग योर थर्सडे इवनिंग।
1: इवनिंग लाउंज,
2: इवनिंग लाउंज,
3: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: Well, 7:20 हो चुके हैं एंड ये खूबसूरत सा गाना वाज टेकन फ्रॉम द मूवी रोग उदित नारायण की आवाज़ में. खूबसूरत है वो इतना कि रहा नहीं जाता, आपसे कहा नहीं जाता, लेकिन अगर आपके मन में ये है कि जताना भी नहीं आता, दिखाना भी नहीं आता, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि आपके इस मुश्किल काम को हम आसान बिल्कुल करेंगे आपके मैसेजेस को पढ़ के. तो चलिए, यहाँ पर लाइन पर कोई है एंड हम देख रहे हैं लाइन टू पर भी किसी का फ़ोन आ रहा है, तो लाइन टू पर जो है उनसे हम थोड़ी देर में बात करेंगे. एंड फिलहाल के लिए चलिए, उर्वशी जी कनेक्टेड हैं हमारे साथ. हेलो उर्वशी जी.
1: हेलो,
0: कैसी हैं आप?
1: ठीक हूँ, ठीक हूँ.
0: आपका खाना हो गया?
1: जी जी हाँ.
0: ओहो, आज तो आपने कमाल ही कर दिया. चलिए उर्वशी जी, बताइए आपके यहाँ मौसम कैसा है? आपके यहाँ ठंड है, गर्मी है, क्या है?
1: ना, नहीं गर्मी नहीं,
0: इतनी गर्मी नहीं है.
1: नहीं.
0: ओके, और आप बताइए उर्वशी जी, आज आपको कौन सा गाना सुनना है?
1: फिल्म है.
0: याद नहीं, भूल गया ये गाना. हाँ, एक्चुअली आपको भूल ही गए.

0: लेकिन कोई बात नहीं, हमें गाना याद रहा. सो उर्वशी जी, ये गाना खास तौर से आपके नाम, राइट?
1: आपके लिए.
0: थैंक यू सो मच.
1: सब सुनने वाले के लिए.
0: थैंक यू सो मच उर्वशी जी, आपसे बात करके बहुत ही खुशी हुई. थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय. और चलिए एक और कॉलर हैं हमारे बीच, चलिए उनसे हम बात करते हैं. हेलो जी. हेलो. हेलो जी, आपका नाम?
2: हेलो, नमस्कार.
0: नमस्कार, आपका नाम?
2: रचेश.
0: ओह माय गॉड.
2: ओह माय गॉड.
0: हाँ, आप वही वाले हैं, ओह माय गॉड वाले.
2: जी.
0: हाँ जी, बताइए. बिल्कुल ठीक ठाक, कैसे हैं आप राजेश जी?
2: हम ठीक हैं जी.
0: ओके, और बताइए, आज अलग ही मूड के साथ आपने हमें फोन किया है, तो शायद गाना भी अलग ही मूड वाला होगा. आपको कौन सा
2: मूड वाला ही है
0: बताइए?
2: बिकॉज मेरे नवासा के जन्मदिन है आज.
0: ओ, आपका नवासा भी है? आपकी आवाज से तो पता नहीं चलता, मुझे तो लगा कि आप के बच्चे बहुत ही छोटे होंगे.
2: नहीं, नेक्स्ट टाइम आपने बोला था कि आप क्यों लड़की से बात करते हैं, लड़का से क्यों नहीं? क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ. आई एम 65 ईयर ओल्ड.
0: नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, दिल से हर कोई जवान होता है. और वैसे कहते हैं ना राजेश जी,
2: मेरा बात जवान है मगर दिल से मैं जवान हूँ, मगर देखोगे तो देखोगे बूढ़ा आया है आपके सामने.
0: अब बहुत ही फनी है, बहुत ही मजाक किया हुआ.
2: मेरे एक नवासा के आज जन्मदिन है, उसका नाम है कार्तिक झुमक.
0: ओके.
2: उसके 9 ईयर ओल्ड.
0: ओ कार्तिक को वेरी हैप्पी बर्थडे हमारी तरफ से.
2: एक गीत मांगना चाहता हूँ उसके लिए.
0: बताइए बताइए, कौन सा गाना?
2: पापा कहते हैं बड़ा काम करेगा सो प्लीज.
0: ओके, ये गाना उनके लिए जरूर हम चलाएंगे, पापा कहते हैं. और चलिए राजेश जी, आपके नवासे को हमारी तरफ से बहुत बहुत सारा प्यार, एंड वी जस्ट होप कि एक दिन बिल्कुल मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी सबका नाम रोशन जरूर करेगा.
2: सो प्लीज, मैं आपसे वन मोर टाइम बोल रहा हूँ कि मैं बात करता हूँ, अच्छा लगता है आप लोग से बात करने को. मैं जवान नहीं हूँ.
0: नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए.
2: यहाँ एमबीसी में लड़के भी हैं, उससे बात करो. आप ही बोला था. मैं तो आपसे बात करता हूँ, जब से बात करता हूँ, मगर मेरी आवाज जो है जवान है. आई मैं क्या करूँ?
0: और ये आवाज को आपको ऐसे ही बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि ये आवाज सब लोगों को बहुत ही पसंद है. सो थैंक यू सो मच राजेश जी.
2: आप कहते हैं कि मैं कुछ निगेटिव नहीं बोलता हूँ, मैं अच्छा बोलता हूँ.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
2: आप सोचते हैं कि ये जवान है अगर कोई लाइन मारता है. नहीं बेटी, मैं तो बूढ़ा हूँ.
0: ओके जी, ये आपको बार बार नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि दिल से सब कोई जवान है, जैसे मैं कह रही हूँ. सो थैंक यू सो मच राजेश जी, आपका थैंक यू सो मच, आपने हमें फोन किया, और आपका गाना हम जरूर चलाएंगे. और एक बार फिर से कार्तिक को वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे
2: मेरे नवासे के लिए.
0: बिल्कुल,
2: सो हैप्पी. ओके,
0: थैंक यू सो मच राजेश जी, बाय. और चलिए, ये थे राजेश साहब, और बार बार कह रहे हैं कि वो बुजुर्ग इंसान है, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे हम कह रहे हैं कि दिल से सब कोई जवान होता है. और साथ में वैसे एक कहावत है ना कि आपका जो इनर चाइल्ड है, वो आपका जो बचपना होता है, वो कभी छूटना नहीं चाहिए, चाहे आपकी उम्र कितनी क्यों ना हो, लेकिन हमेशा आपका इनर चाइल्ड, अगर आप इसको ज़िंदा रखेंगे तो हमेशा आप उम्र भर मैजिक को एक्सपीरियंस करते रहेंगे. तो चलिए, इसी खूबसूरत गीत के साथ हम बढ़ेंगे, एंड इट्स टेकन फ्रॉम द मूवी लम्हे, और इसके बाद हम चलाएंगे राजेश जी का गाना. फिलहाल के लिए उर्वशी जी का ये खूबसूरत सा गाना फ्रॉम द मूवी लम्हे.
3: इवनिंग लाउंज,
4: इवनिंग लाउंज,
5: RM2
6: रेडियो मस्ती.

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: 7:42 already and चलिए बढ़ते हैं आपके कुछ messages की ओर and यहाँ पर next गाना हम dedicate करेंगे as usual for Rishi Bidesi would like to dedicate the next गाना to all RM2 listeners आपकी moody girlfriend के लिए और सभी football lovers के लिए kick off tonight और इसको लेकर आप काफी excited हैं और football जितने भी सारे lovers हैं ना आज तो आप शायद इतने खुश हो रहे होंगे कि क्या कहें चलिए इस excitement में इस खुशी में और it's going to be a फुल सस्पेंस भरी रात तो चलिए आपको गुड लक जो भी टीम आप सपोर्ट कर रहे हैं आई जस्ट होप द बेस्ट विंस तो चलिए साथ में यहाँ पर आप कहते हैं हाय दिव्या नमस्ते हाउ आर यू गिरीश अरलोल साथ देने के लिए थैंक यू वैसे आपने गाना मांगा है फ्रॉम द मूवी शोहरत अगर पॉसिबल हुआ तो हम चलाने की कोशिश करेंगे क्योंकि और भी मैसेजेस हैं और भी गाने के रिक्वेस्ट आ चुके हैं हमारे पास नमस्ते दिव्या जी राधा जी कैसे हैं आप All the way from Canada, as usual, thank you for liking the show. And aapko gana sunna hai, maine pyar kiya, title song for your family in Canada, Mauritius. Sabhi RM2 listeners ke liye aur sabhi football fans ko aap wish kar rahi hai. Happy World Cup. Enjoy. Thank you so much. Aap bhi enjoy kariye agar aapko football pasand hai. Aur waise iski excitement to alag hi hai. Aur jitne bhi sare log aaj is match ko dekhne wale hai, aapko bas yehi kahenge. Jitna ho sake, try to make the most of it because... It's a wonderful moment जो आप इसको family time भी बना सकते हैं and चलिए यहाँ पर अगला गाना खास तौर से हम dedicate करेंगे as usual ज्ञान बिहारी जी के लिए wife सबीता आपकी sister in law हैं गीता संजीव सुनील सभी RM2 listeners के नाम भी and आपको गाना सुनना है विजयपथ movie से राह में उनसे मुलाकात हो गई चलिए अगर possible हुआ तो आपसे इस गाने से मुलाकात जरूर करवाएंगे फिलहाल के लिए कुछ खूबसूरत गीतों के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे
1: Evening Lounge
2: RM2
1: Radio Musti

0: किसी को पाने के बाद किसी को खोना इसको प्यार नहीं कहते हैं, शायद किसी को पाने के बाद खुद को पाना इसको प्यार कहते हैं. इसलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दैट वी डोंट फॉल इन लव, वी राइज इन लव. प्यार में हमेशा आपको ऐसे ऐसे चेंजेस लेकर आना चाहिए, और वैसे ये चेंजेस हम लेकर नहीं आते हैं, प्यार ऑटोमेटिकली हमारी जिंदगी को अच्छे के लिए ही बदल देता है. चलिए, यहाँ पर प्यार की बातें कर रहे हैं तो इस म्यूजिकल कारवां को बहुत ही प्यार से आगे बढ़ाते रहेंगे टिल 9 पीएम इन योर इवनिंग लाउंज, जहाँ पर दिव्या का साथ है. यहाँ पर किसी का मैसेज आया है, हेलो दिव्या जी, थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग दिस सॉन्ग फ्रॉम लव, डेडिकेटिंग दिस सॉन्ग फॉर माय वाइफ शर्मिला. और आप कहते हैं कि एवरी सिंगल लिरिक ऑफ दिस ट्रैक फील्स लाइक इट वॉज रिटन जस्ट फॉर अस, इट्स नॉट जस्ट अ सॉन्ग वी बोथ लव, इट्स द परफेक्ट साउंड ट्रैक टू आवर स्टोरी, लव यू सो मच फ्रॉम रवि ऑफ खुशबुइनर. तो चलिए रवि जी, आपने प्यार का इजहार वाइफ और शर्मिला के लिए तो कर ही दिया है, एंड आई जस्ट होप कि अभी आपकी वाइफ आपको ज़रूर एक प्यारी सी हंसी दे रही होगी, एंड आई एम जस्ट श्योर कि इसके बाद आपको टाइट वाला हक ज़रूर मिलेगा आफ्टर एक्सप्रेसिंग योर लव. और वैसे कहते हैं ना कि इतने सालों के बाद जब आप अपने प्यार को एक्सप्रेस करते हैं तो इट लुक्स वेरी वेरी फ्रेश, और ये प्यार हमेशा ऐसे ही आप दोनों के बीच में बरकरार रहे और आपके प्यार को किसी की नज़र ना लगे. तो रवि जी, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज, और ये अगला गाना गुजार स्पेशली फॉर यू एंड योर वाइफ शर्मिला.
1: Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Musti.

8:07 हो चुके हैं. इट्स अ वंडरफुल थर्सडे इवनिंग और कल सुबह सब लोग राहत की सांस लेने वाले हैं क्योंकि नोइंग दैट आपको शायद सैटरडे संडे को काम पर नहीं जाना होगा तो

0: इससे आपको बहुत ही खुशी होती है और आपकी खुशी में शामिल होने के लिए कल भी ये सेम टाइम मुलाकात होगी एक अलग ही मूड के साथ। लेकिन फिलहाल के लिए तो ऑफकोर्स आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है क्योंकि कल फिर से काम पर जाना है। माइंड को एक बार फिर से रीसेट कीजिए, रिफ्रेश कीजिए और कल आपको एनर्जी को एक बार फिर से बटोर कर काम पर जाना होगा। तो चलिए टू ऑल दोज वर्किंग राइट नाउ, आपको भी बों कुहाज। बहुत सारे लोग हैं जो नाइट शिफ्ट कर रहे होंगे, हॉस्पिटल में हैं या फिर कहीं पर भी आप काम कर रहे होंगे, बस हमारा साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। चलिए दिव्या का साथ है टिल 9 PM इन योर इवनिंग लाउंज एंड उम्मीद करते हैं कि बस आप आराम से इत्मीनान से हमारे गीतों को सुन रहे हैं और बिल्कुल किसी को याद ज़रूर कर रही है। जैसे रवि जी ने मैसेज भेज के कहा कि उनकी खूबसूरत यादें एक गाने पर ज़रूर उनको एहसास हुआ कि सच में कुछ गाने होते हैं यादों को ताज़ा करने के लिए। अगर आपको भी ऐसा लगता है या फिर किसी को आप याद कर रहे हैं ज़रूर डू सेंड योर मैजिकल मैसेजेस ऑन द मैजिकल नंबर दैट इज़ 5499-1294 या फिर आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं ऑन 4028235 पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं।
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Masti.

0: सच अ ब्यूटीफुल स्वीट गाना इश्की की रात है, बरसात है, तन्हाई है, लेकिन रात तो है बट बरसात तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो रही है। आपके यहाँ मौसम कैसा है, आप हमें अपडेटेड रख सकते हैं ज़रूर, ताकि हम बाकी लिसनर्स को भी बता पाएं कि अलग अलग दिशाओं में कैसा मौसम चल रहा है। और रात है, बरसात है और साथ में तन्हाई है। तन्हाई बिल्कुल नहीं है क्योंकि यहाँ पर आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं। वेल थैंक यू सो मच हमारा हम सफ़र बनने के लिए टिल 9 PM। चलिए कुछ खूबसूरत गीतों के साथ इस म्यूजिकल कारवां को आगे बढ़ाते रहेंगे। 8:20 हो चुके हैं। टू ऑल दोज लिसनिंग राइट नाउ हैविंग अ रिलैक्सिंग मोमेंट, आपको हम कहेंगे थैंक यू सो मच कि आप लोग इतने प्यार से हमारा साथ दे रहे हैं। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे कुछ और खूबसूरत गीतों की ओर।
1: इवनिंग लाउंज
2: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: वैसे कहा जाता है ना कि जब प्यार होता है तो इतना भी सोच समझ कर प्यार किया नहीं जाता है, इसलिए जब आपको प्यार हो जाता है तो खुद से इतना भी सवाल ना करें कि आप खुद कंफ्यूज हो जाए कि ये प्यार है या फिर क्या है। बस जस्ट गो विद द फ्लो, एंड अगर आपको लग रहा है कि प्यार है तो बस ये प्यार ही है, वरना आपको लगता ही नहीं। चलिए यहाँ पर आपके कुछ और खूबसूरत मैसेजेस जो आपने बहुत ही प्यार से हमें भेजे हैं। नमस्ते दिव्या जी, प्लीज प्ले द नेक्स्ट सॉन्ग फॉर मेधा, मनीष, श्रेया, अरियान, नील, शीतल, विकी, रितिना, नितिन, संगीता और मोटा ब्लॉश, आपको भी धन्यवाद और शुभरात्रि। एंड यहाँ पर किसी ने कहा है नमस्ते सिस्टर, हेलो जी, नेक्स्ट गाना गोज आउट टू योर बेबी अरशद, आप बहुत ही हैप्पी हैं कि आपको उनकी तरह कोई मिला है आपकी ज़िंदगी में, और आप कहते हैं यू माई एवरी थिंग, लव यू सो सो मच फ्रॉम रेबेका, सो थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए। ऑलरेडी 8:32 एंड चलिए अगर आप इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ तो साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। कुछ और खूबसूरत गीतों की ओर हम बढ़ेंगे और चलिए हमारा और आपका ये साथ 9 बजे तक है, तब तक के लिए जितना हो सके हम खूबसूरत गीतों को समेटने की पूरी पूरी कोशिश कर रही हैं।
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

बेताब दिल हैं धड़कनों की सदा एंड आपके धड़कनों की आवाज़ हम तक पहुंच रही है क्योंकि आपके मैसेजेस भी हम तक पहुंच रहे हैं और आपके दिलों को ज़ोर से धड़काने के लिए हम शायद थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग ऑल द सॉन्ग सिलेक्शंस। यहां पर आप कहते हैं हाय दिव्या प्रणाम नमस्कार हैव अ ग्रेट इवनिंग टू एन्जॉय योर ब्यूटिफुल सॉन्ग्स एंड आप कहती हैं कि लव इज़ सो पावरफुल दैट इट कैन टर्न फ्राउन्स इनटू स्माइल्स इट कैन हेल्प मेंड द most broken heart it can even turn all of the ugliness in the world into the most beautiful portrait we could ever have the pleasure to behold ye aapne ekdam sahi baat kahi hai thank you so much aur pyar se to pyar hi janam leta hai bas ummeed karte hain ki is pyar ko aap panapne denge aur pyar ki jo khushboo hai aap charo aur isko bikherne mein हमारी ज़रूर मदद करेंगे गॉड ब्लेस यू एज़ वेल गायत्री जी आपके इस खूबसूरत मैसेज के लिए थैंक यू सो मच यहाँ पर राजश्री जी आप हैं मिलानो से ऑल द वे फ्रॉम इटली कनेक्टेड विद अस आप स्पेशल डिनर तैयार कर रही हैं म्यूज़िक मस्ती अलोंग एंड चलिए रेडियो मस्ती का साथ देने के लिए थैंक यू सो मच एंड आप कहते हैं कि आपने उनसे प्यार किया था व्हेन ही वाज ओनली 16 टुडे ही इज 56 तो मिस्टर सतीश इसुरी को आप विश करना चाहती हैं अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे बिल्कुल उनके लिए तो ज़रूर हम एक गाना चलाएंगे एंड चलिए सतीश जी आपको मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे एंड बहुत ही प्यार से आपकी वाइफ ने आपको ये रोमांटिक सा मैसेज भेजा है एंड आई जस्ट होप दैट इट विल मेक योर स्पेशल मोमेंट इवन मोर स्पेशल तो चलिए राजश्री जी साथ देने के लिए थैंक यू सो मच हेलो दिव्या ऑल गुड बिल्कुल ठीक ठाक थैंक यू सो मच रोशनी जी हमारा साथ देने के लिए इन प्यारे गानों के लिए शुक्रिया स्टिल मच वर्क इन द किचन अकॉम्पनीड बाय लवली सॉन्ग्स इट मींस अ लॉट तो चलिए आपको किचन में भूख हाज मुझे पता है खाना खा लेने के बाद अभी बर्तन मांजना बाकी होता है किचन को साफ करना बाकी होता है मे बी झाड़ू पहुँचा ऑल्सो ड्यूरिंग द नाइट तो चलिए इन सब चीज़ों के लिए आपको एक बार फिर से भूख हाज किसने कहा है हाय दिव्या होप यू डूइंग वेल एवरी टाइम आई लिसन टू योर सॉन्ग्स यू मेक मी फॉल इन लव again and again that's a really wonderful feeling hai na aapne apna naam nahi bataya hai lekin for sure next track is especially for you as well to chaliye hamari

गीतों से प्यार करते रहिएगा और दिलों को और जोर से धड़काने के लिए वी हैव द नेक्स्ट गाना स्पेशली फॉर यू हाय प्लीज डेडिकेट द नेक्स्ट गाना टू डियरेस्ट जानवी और भविया जुगांपा फ्रॉम प्रवेश ऑफ रोजिल सो प्रवेश एंड जानवी द नेक्स्ट राग इज आउट स्पेशली फॉर यू वी ऑल्सो हैव गीता बोलूराम जी कनेक्टेड फ्रॉम शातु बनारस नेक्स्ट गाना जाएगा फॉर मॉम भगवंती और आपकी पूरी फैमिली के नाम तो चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले गाने की ओर एंड इससे पहले हम मिस्टर सतीश को मिलकर साथ में विश करेंगे

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti. वेल फ्रेंड्स, चलिए इसी खूबसूरत गीत के साथ इट्स अ टाइम फॉर मी टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू. हमारी और आपकी मुलाकात कल होगी. तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड बाय.

वेल आज दिल कहता है नीतू और भी बातें हो जाए, मोहब्बत की बातें तो हम करते रहते हैं, प्यार भरे नगमे भी चलाते रहते हैं, आज क्या सुनना चाहेंगे, मोहब्बत की कुछ मीठी मीठी और बातें। मोहब्बत की सबसे खूबसूरत बात ये है कि ये दिल से शुरू होती है और पूरी जिंदगी एक हसीन एहसास बनकर साथ चलती है, जैसे कि आप इस वक्त हमारे साथ चल रहे हैं।

0: Late Night Grooves.
1: RM2 Radio Musti.
2: अक्कन की फरमाइश बिल्लू मुन्नी और शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से. संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के. पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना, कैसा ये इश्क है

रात का समा है और रात की इस खामोशी में जब किसी खास की याद दिल को छू जाती है तो चांद भी कुछ ज्यादा ही रोशन नजर आता है। बाहर देखो तो चांद नजर आ रहा है या फिर बादल छाए हुए हैं। इज इट रेनिंग? नहीं तो गीतों की बारिश में हम तो भीगते रहते हैं भाई, आपको मजा आ रहा है ना?

सो मच हमारे हम सफर बनने के लिए इन योर लेट नाइट ग्रूव्स। जैसे बहुत सारे गाने होते हैं कि जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर पल गुनगुनाना होता है। जी हाँ, प्यार वो गीत है जो दो दिल मिलकर गाते हैं। एक दिल गाता है तो अच्छा लगता है, लेकिन जब दो दिल मिल जाते हैं गाते हैं तो इसका मधुर धुन उम्र भर कानों में गूंजती रहती है।

What a lovely gana. Thank you so much. किसी ने क्या खूब कहा है कि सच्चा इश्क कभी लफ्जों का मोहताज नहीं होता. वाह वाह, सच्चा इश्क कभी लफ्जों का मोहताज नहीं होता. ये तो आँखों की खामोशी में भी अपनी दास्तां बयां कर देता है. वाह वाह वाह, जिसने भी कहा खूब कहा. इसको चले हम भी आजमाते हैं. प्यार कीजिए, प्यार बांटिए. हम तो हमेशा प्यार बांटते ही रहते हैं. वैसे हमारी कोशिश रहती है इन गानों के जरिए.

आपके पास आपके साथ बैठे हुए हैं या फिर गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, तो किसी की मुस्कान अगर आपके दिन की वजह बन जाए तो समझ लीजिए मोहब्बत ने आपके दिल में नोक नोक दस्तक दे दी है। यस, प्यार सबसे खूबसूरत एहसास होता है। पत्थर पिघल जाता है भाई, दिल क्या चीज है, प्यार करके देखिए ना।

प्यार की बातें चल पड़ी हैं ऑलरेडी इन द सेकंड आवर ऑफ योर लेट नाइट ग्रूव्स। नीतू आपके साथ। वैसे प्यार में दूरियां मायने रखती है, रखती है नो, क्योंकि दिलों की नजदीकियां हर फासले को छोटा कर देती हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम इतने दूर हैं अपने प्यार से, अपने बिलव्ड वन से। वैसे कहते हैं कि आंखों से दूर लेकिन दिल के करीब। आप भले ही सात समुद्र पार क्यों ना हो, लेकिन जब तक दिल के करीब हो, दिल का रिश्ता हो, ये जो दिल की पुकार है वो अगर आप सुन ले तो बल्ले बल्ले हो जाए।

प्यार कभी कम ना करना हाँ क्योंकि मोहब्बत एक ऐसी खुशबू है जो नजर नहीं आती लेकिन जिसकी महक पूरी जिंदगी को महका देती है यस कहते हैं कि प्यार एक ही पल में हो जाता है लेकिन सच्ची मोहब्बत हमेशा दिल में बसी रहती है That's why अपने प्यार करने वालों को हमेशा प्यार दीजिए एंड जितना हो सके प्यार बांट

to all those at work and bas pyar mohabbat ki thodi bahut baatein chal rahi hain, you know, guftagu ho rahe hain hum. और जब किसी का नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाए, अभी देखा आपके चेहरे पर मुस्कान आ गया, तो समझ लीजिए कि दिल ने अपना हम सफर चुन लिया है।

आपको भी आपका हम सफर मिल गया. Are you happy? Are you more than happy? ये हुई ना बात. जब तक आप खुद खुश ना हो तो आप दूसरों को खुशी कैसे देंगे. तो आप हमेशा एक ऐसे लाइफ पार्टनर को चुनिए जो आपकी खुशी आपके गम में आपके हम सफर बने रहे.

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

इश्क की राहों में चलने वाले कभी तन्हा नहीं होते। इश्क की राहों में चलने वाले कभी तन्हा नहीं होते, क्योंकि उनके साथ हमेशा किसी की यादों का कारवां चलता रहता है। That's true। जब कोई आपका अपना आपसे दूर हो जाता है कभी कभी हमेशा के लिए, तो वो जो यादें होती हैं वो सताती हैं, लेकिन जो हंसी पल, जो अच्छे पल आपने बिताए हैं उनको याद कीजिएगा। आपका प्यार आपके पास और करीब आ जाएगा, उनको आप महसूस कर पाएंगे। That's for sure।

अक्सर हम जब प्यार में पढ़ते हैं तो चांद सितारों की बात होती है, इसने गवाह दिया है, उसने गवाह दिया है, तो चांद सितारों से भरी रात भी अधूरी लगती है अगर उसमें अपने महबूब की यादों का नूर ना हो। वही तो हम कह रहे थे ना, चाहे वो मौसम कैसा भी हो, चाहे दिन हो रात हो, समय हो सिचुएशन चाहे जैसा भी हो, अगर यादों में आपका प्यार ना हो तो जिंदगी बेस्वाद लगती है।

हमारे लिए तो सबसे बड़ा तोहफा जिंदगी में आप हैं, आपका प्यार, आपका अपनापन है। लाइकवाइज मोहब्बत में भी सबसे बड़ा तोहफा वक्त होता है, क्योंकि जो अपना वक्त देता है वो अपना दिल भी

प्यार कभी कम न करना वो गाना तो आपने सुना ही होगा ना बप्पी लहरी और आशा भोसले की आवाजों में। प्यार की कोई उम्र नहीं होती, ये तो हर दौर में दिल को नई धड़कन और नई उम्मीद दे जाता है। जहाँ प्यार होता है वहाँ लाइफ, जहाँ लाइफ वही उम्मीद। तो प्यार कीजिए, लाइफ की उम्मीद और बढ़ जाती है।

थैंक यू सो मच वंस अगेन इन योर लेट नाइट ग्रूव्स एंड यानी कि लास्ट आवर में पहुंच गए हैं। बस चलते चलते यही कहना चाहेंगे कि कभी कभी एक छोटी सी मुलाकात भी दिल पर ऐसा असर कर जाती है कि उसकी याद सालों तक रह जाती है। दैट्स ट्रू, जैसे ये गाने होते हैं ना, कभी कभी ओल्ड इज गोल्ड जैसे कहते हैं, जो नए गाने होते हैं ओके अच्छे हैं, लेकिन जो 90s, 60s, 70s, 80s के गाने हैं वो आज भी अमर हैं। वैसे ही हमारा प्यार, हमारी दोस्ती बिल्कुल पक्की एकदम अमर है।

बाद के इस हसीन सफर में अगर किसी की याद आपके साथ हो तो तन्हाई भी एक खूबसूरत साथ बन जाती है। बस हमारा और आपका साथ यही तक था, साथ निभाया, थैंक यू सो मच। चलते चलते यही कहना चाहेंगे आपसे कि मोहब्बत वो रोशनी है जो अंधेरों में भी रास्ता दिखा देती है और जिंदगी को एक नया मतलब दे जाती है। वैसे प्यार जिंदगी का वो एहसास है जो दिल को जीने की वजह देता है। That's why, मोहब्बत बांटिए, मुस्कान बांटिए और हर रात को यादों और खुशियों से रोशन बनाएं। टेक केयर, बाय बाय, शुभ रात्रि।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: Radio Musti, all the way.
3: जब तक टाइगर मरा नहीं, तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कुछ होता है राहुल तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
1: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
0: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: ऑडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।